0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस यात्रा के अंतिम चरण में पेरिस पहुंच गए हैं। होटल पहुंचने पर प्रवासी भारतीय समुदाय ने श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ वीवा टेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ये प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप के क्षेत्र में यूरोप का सबसे बड़ा आयोजन है। श्री मोदी विशेष रूप से विशेष कार्यक्रम में भारतीय समुदाय के लोगों से भी बातचीत करेंगे। इससे पहले फ्रांस के एवियों में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान श्री मोदी ने विभिन्न सत्रों में हिस्सा लिया तथा कई विश्व नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि सम्मेलन में वैश्विक शासन, आर्थिक विकास और ग्लोबल साउथ के देशों से जुड़े मुद्दों पर भारत का पक्ष रखा गया। उन्होंने विकासशील देशों की आर्थिक मजबूती और वैश्विक संपर्क बढ़ाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री मोदी ने अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर, यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ट्ज, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्ता और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फोन डेर लेयन, संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान, कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी सहित कई नेताओं से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक में ईरान के साथ समझौते के दौरान नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने पर बल दिया।
1: मैरिटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सी फेरर दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सी फेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी।
0: G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सुरक्षित, समावेशी और मानव केंद्रित विकास का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि AI की असली सफलता मशीनों की क्षमता में नहीं बल्कि आम लोगों को सशक्त बनाने में है। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता CETA इस वर्ष 15 जुलाई से लागू होगा। इसके साथ ही दोगुने अंशदान से संबंधित सामाजिक सुरक्षा समझौता भी प्रभावी हो जाएगा। इससे भारत को ब्रिटेन के बाजार में 99% वस्तुओं पर तत्काल शुल्क मुक्त पहुंच मिलेगी। वस्त्र, चमड़ा, समुद्री उत्पाद, इंजीनियरिंग और प्रसंस्कृत खाद्य क्षेत्र को विशेष फायदा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये समझौता लागू होने के बाद भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार और निवेश को नई गति मिलेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और ओडिशा के 5 दिन के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति आज मध्य प्रदेश के बैतूल में आध्यात्मिक जागृति के माध्यम से आदिवासी समाज के सशक्तिकरण पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगी। झारखंड से राज्यसभा की 2 सीटों के लिए आज मतदान होगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा के वैद्यनाथ राम, कांग्रेस उम्मीदवार प्रणब झा और निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नथवानी चुनाव लड़ रहे हैं। झारखंड विधानसभा में मतदान सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होगा। मतगणना शाम 5 बजे शुरू होगी और उसके बाद परिणाम घोषित किए जाएंगे। महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने नीदरलैंड्स को 95 रन से हरा दिया। स्मृति मंधाना को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। टूर्नामेंट में अब भारत का मैच 21 जून को दक्षिण अफ्रीका से

होगा। फीफा विश्व कप में इंग्लैंड ने अपने पहले मैच में क्रोएशिया को 4-2 से हरा दिया। कप्तान हैरी केन ने 2 गोल किए। ग्रुप के में पुर्तगाल और कांगो का मैच 1-1 से ड्रॉ रहा। इस मैच के साथ क्रिस्टियानो रोनाल्डो विश्व कप खेलने वाले सबसे उम्रदराज आउटफील्ड खिलाड़ी बन गए। अर्जेंटीना ने अल्जीरिया को 3-0 से हराया। लियोनेल मेसी ने हैट्रिक लगाकर विश्व कप में 16 गोल पूरे किए और मिरोस्लाव क्लोजे के कीर्तिमान की बराबरी की। ऑस्ट्रिया ने जॉर्डन को 3-1 और नॉर्वे ने इराक को 4-1 से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
1: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
0: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है। और हुकुम सिंह

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ पेरिस में विवटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। श्री मोदी फ्रांस की राजधानी में प्रवासी भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और उड़ीसा के 5 दिन के दौरे पर रहेंगे। झारखंड से राज्यसभा की 2 और मिजोरम की 1 सीट के लिए आज मतदान होगा। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता इस वर्ष 15 जुलाई से लागू होगा। पश्चिम एशिया संघर्ष समाप्त करने के लिए अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ 14 सूत्रीय शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। और पुरुष क्रिकेट में भारत ने दूसरे एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में अफगानिस्तान को 170 रन से हराकर श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त बनाई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस यात्रा के अंतिम चरण में पेरिस पहुंच गए हैं। होटल पहुंचने पर प्रवासी भारतीय समुदाय ने श्री मोदी का स्वागत किया।
1: हम बहुत खुश हैं कि मोदी जी हमारे घर आए, हमारे पेरिस में आए।
2: मोदी जी हमारी शान है, हमको ये अभिमान है।
0: प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ वीवा टेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ये प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप के क्षेत्र में यूरोप का सबसे बड़ा आयोजन है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी विशेष कार्यक्रम में भारतीय समुदाय के लोगों से बातचीत करेंगे।
3: आज प्रधानमंत्री द्विपक्षीय व्यापार और नवाचार साझेदारी को और मजबूत करने के उद्देश्य से एक बेहद व्यस्त कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। वह फ्रांस और यूरोप के शीर्ष व्यापारिक नेताओं के साथ एक विशेष गोलमेज बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसका मुख्य फोकस भारत के बढ़ते औद्योगिक और तकनीकी क्षेत्रों में रणनीतिक निवेश को बढ़ावा देना है। इस दौरे का मुख्य आकर्षण विवाटेक सम्मेलन है, जो यूरोप का सबसे बड़ा प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप इवेंट है। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ इस शिखर सम्मेलन में कई उच्च स्तरीय सत्रों में भाग लेंगे। इसके बाद वह एक बहुप्रतीक्षित मुख्य भाषण देंगे, जिसमें भारत के तेजी से बढ़ते वैश्विक डिजिटल कदमों को रेखांकित किया जाएगा। यह गहन राजनीतिक यात्रा एक बड़े सामुदायिक संपर्क कार्यक्रम के साथ संपन्न होगी। प्रधानमंत्री एक शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम में शामिल होंगे, जिसमें भारत की समृद्ध विरासत और संस्कृति को प्रदर्शित किया जाएगा। महेश चोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पेरिस, फ्रांस।
0: G7 के संपर्क सत्र में प्रधानमंत्री मोदी ने कल G7 देशों, भारत और ग्लोबल साउथ की ताकतों को मिलाकर संपर्क और व्यापार को बढ़ाने की रूपरेखा का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि विकासशील देशों पर पश्चिमी एशिया संकट का दीर्घकालिक असर पड़ेगा। शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री ने अमरीका, ब्रिटेन, यूक्रेन, जर्मनी, संयुक्त अरब अमीरात, कनाडा, यूरोपीय परिषद और यूरोपीय आयोग के नेताओं से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक में ईरान के साथ समझौते के दौरान नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने पर भी बल दिया।
4: मैरिटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सीफेरर दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सीफेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी।
0: G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सुरक्षित, समावेशी और मानव केंद्रित विकास का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि AI की असली सफलता मशीनों की क्षमता में नहीं बल्कि आम लोगों को सशक्त बनाने में है। फ्रांस के एवियो में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान नेताओं ने संतुलित आर्थिक विकास, महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखला और बच्चों के लिए सुरक्षित डिजिटल वातावरण से जुड़ी 3 महत्वपूर्ण घोषणाएं अपनाई। बच्चों के लिए सुरक्षित डिजिटल माहौल संबंधी का भारत सहित ब्राजील, मिस्र और दक्षिण अफ्रीका जैसे कई देशों ने समर्थन किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और उड़ीसा के 5 दिन के दौरे पर रहेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति आज मध्य प्रदेश के बैतूल में आध्यात्मिक जागृति के माध्यम से आदिवासी समाज के सशक्तिकरण पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे।
5: 19 जून को राष्ट्रपति अंतर्राष्ट्रीय सीकल सेल अनीमिया दिवस के कार्यक्रम में शामिल होंगी। इसके बाद वे पश्चिम बंगाल के कलाईकुंडा के लिए प्रस्थान करेंगी। वहीं 21 जून को राष्ट्रपति मुर्मू जबलपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगी और रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के 36वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। इसके बाद राष्ट्रपति कूनो नेशनल पार्क का भ्रमण करेंगी और 22 जून को दिल्ली लौट आएंगी। राष्ट्रपति के बैतूल दौरे को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर डॉक्टर सौरभ संजय सोनवाने ने सुरक्षा

0: व्यवस्था के तहत प्रतिबंध लगाए हैं। इसमें आज ड्रोन के उड़ान संचालन पर रोक रहेगी और भारी वाहनों की आवाजाही पर भी नियंत्रण शामिल है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी न्यूज, भोपाल।
1: झारखंड से राज्यसभा की दो और मिजोरम से एक सीट के लिए आज मतदान होगा। मतदान सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगा। मतगणना शाम 5 बजे शुरू होगी और उसके बाद परिणाम घोषित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर विशेष श्रृंखला 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के प्रस्तुत कर रहा है। आज बात नक्सलवाद के उन्मूलन और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास के लिए सरकार के महत्वपूर्ण प्रयासों की।
2: नरेंद्र मोदी सरकार की सुरक्षा अभियान, नक्सलियों की फंडिंग पर रोक और प्रभावित इलाकों में तेज विकास कार्यों की संयुक्त रणनीति के चलते देश को नक्सलवाद और माओवादी आतंक से मुक्त करने में सफलता मिली है। पिछले कुछ वर्षों में कई बड़े सुरक्षा अभियानों ने माओवादी नेटवर्क को कमजोर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वर्ष 2022 में झारखंड के बूढ़ा पहाड़ क्षेत्र में ऑपरेशन ऑक्टोपस चलाया गया। इसी वर्ष फरवरी में ऑपरेशन डबल बुल के तहत झारखंड के गुमला, लोहरदगा और लातेहार जिलों को नक्सली प्रभाव से मुक्त कराया गया। ऑपरेशन के तहत झारखंड के सरायकेला, पश्चिम सिंहभूम और खूंटी जिलों में नक्सलियों के ठिकानों को निशाना बनाया गया। वर्ष 2025 में तेलंगाना छत्तीसगढ़ सीमा पर चलाए गए ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट ने बचे हुए नक्सली कैडर को बड़ा झटका दिया। बस्तर के निवासी ने सरकार के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि सरकार ने देश को नक्सलवाद से मुक्त करने का अपना वादा पूरा किया है।
3: तो उन्होंने जो प्रॉमिस किया वो पूरा करके दिखाया, तो मोदी सरकार को, अमित शाह जी को, विजय शर्मा जी को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ।
4: पर आजकल कोई डर का माहौल नहीं है, कोई भी बच्चे यहाँ पे फ्रीली अपना काम कर पाते हैं।
2: इन अभियानों के परिणाम भी स्पष्ट रूप से दिखाई दिए हैं। वर्ष 2024 में 217 माओवादी मारे गए, जबकि 2025 में यह संख्या बढ़कर 256 हो गई। इस दौरान कई बड़े नक्सली नेताओं का भी खात्मा हुआ, जिनमें हिड़मा, कादरी सत्यनारायण रेड्डी, गणेश उइके और नक्सली महासचिव बसवराजू शामिल हैं। सुरक्षा अभियानों के साथ साथ नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों को भी तेजी से आगे बढ़ाया गया। झारखंड के गुमला जिले के रहने वाले टेंबू उराव ने कहा कि जब से मोदी सरकार बनी है तब से नक्सलवाद धीरे धीरे खत्म हो गया और लोग शांति और सद्भाव के साथ रह रहे हैं।
5: हमारा क्षेत्र पूरी तरह से उग्रवाद के गिरफ्त में था, तो वहाँ अमन चैन एकदम नहीं था। हम लोग को दिन में भी निकलने के लिए डर लगता था। 2014 के बाद जब से मोदी सरकार बना है तब से धीरे धीरे करके अब उग्रवाद समाप्त हो गया है और आज हम लोग अमन चैन और बढ़िया से जीवन यापन कर रहे हैं।
2: नक्सलियों की फंडिंग रोकने में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने भी अहम भूमिका निभाई। इससे नक्सली संगठनों के संसाधनों और गतिविधियों पर बड़ा असर पड़ा। विशेष अवसंरचना योजना के तहत स्पेशल फोर्स, राज्य खुफिया शाखाओं और जिला पुलिस को मजबूत बनाने के लिए 1,761 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। इसके अलावा नक्सलवाद के खात्मे के लिए प्रभावित क्षेत्रों में 596 सुदृढ़ पुलिस थानों का निर्माण भी किया गया। आज नक्सल मुक्त भारत की कहानी लोकतंत्र, विकास और संविधान की ताकत की जीत का प्रतीक मानी जा रही है, जिसने दशकों से चली आ रही हिंसा पर विजय प्राप्त की है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: इस बीच झारखंड में नक्सल उन्मूलन अभियान को बड़ी सफलता मिली है। 10 लाख रुपए की इनामी महिला माओवादी पुष्पा महतो ने पश्चिम बंगाल के कोलकाता में पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता CETA इस वर्ष 15 जुलाई से लागू होगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि इस समझौते से भारत को ब्रिटेन के बाजार में 99% वस्तुओं पर तत्काल शुल्क मुक्त पहुंच मिलेगी।
6: We have a huge pool of talent.
7: हमारे पास ऐसे काबिल और महत्वाकांक्षी लोग हैं जो अपने और अपने परिवारों के लिए बेहतर भविष्य की तलाश में हैं। हर साल हमारे विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान से विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित में 14 लाख विद्यार्थी स्नातक डिग्री प्राप्त करते हैं। हमारे पास 140 करोड़ लोगों की ओर से सामान, सेवाओं और डेटा की भी मांग है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये समझौता लागू होने के बाद भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार और निवेश को नई गति मिलेगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के राष्ट्रपति मसूद फिजिस्कियन ने पश्चिम एशिया संघर्ष समाप्त करने के लिए शांति समझौते पर डिजिटल हस्ताक्षर किए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अमेरिका ने समझौते का आधिकारिक प्रारूप जारी कर दिया है।
8: 14 सूत्रीय समझौते में लेबनान सहित सभी क्षेत्रों में सैन्य कार्रवाई को तत्काल और स्थायी रूप से रोकने का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही दोनों देशों ने 60 दिनों के भीतर अंतिम समझौते पर बातचीत पूरी करने का लक्ष्य तय किया है। समझौते के अंतर्गत अमेरिका अपनी नौसैनिक नाकेबंदी और उससे जुड़े प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया शुरू करेगा। वहीं ईरान शुरुआती 60 दिनों तक हुर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले वाणिज्यिक जहाजों की सुरक्षित और निःशुल्क आवाजाही सुनिश्चित करेगा। दस्तावेज में ईरान पर लगे प्रतिबंधों में चरणबद्ध ढंग से ढील देने और ईरानी तेल निर्यात के लिए विशेष अमरीकी छूट का भी प्रावधान किया गया है। अमरीका के समर्थन से ईरान में कम से कम 300 अरब डॉलर के पुनर्निर्माण और आर्थिक विकास कार्यक्रम की योजना भी शामिल है। समझौते में ईरान ने एक बार फिर स्पष्ट किया है कि वह परमाणु हथियार न तो विकसित करेगा और न ही उन्हें हासिल करने का प्रयास करेगा। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रख्यात बौद्ध विद्वान रॉबर्ट एएफ थर्मन के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। पुरुष क्रिकेट में भारत ने लखनऊ में दूसरे एक दिवसीय मैच में अफगानिस्तान को 170 रन से हरा दिया। इसके साथ ही भारत ने 3 मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है। श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच शनिवार को चेन्नई में खेला जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
9: धन्यवाद फरहत। आज सभी समाचार पत्रों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर सचित्र प्रकाशित की है। हिंदुस्तान लिखता है, भारत अमेरिका व्यापार समझौते के बहुत समीप, प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने दी जानकारी। दैनिक जागरण ने राष्ट्रपति ट्रंप के शब्द प्रकाशित किए हैं, भारत पर हमला हुआ तो हम करेंगे मदद। 16 माह बाद हुई द्विपक्षीय बैठक में अमेरिकी राष्ट्रपति ने दिया आश्वासन। फिर टूटी उद्धव की शिव सेना, 9 में से 6 सांसद बागी, शिंदे को माना अपना नेता। अमर उजाला की सुर्खी है, पत्र लिखता है, लोकसभा स्पीकर को पत्र सौंपकर अलग गुट के रूप में मान्यता देने की मांग की। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में स्कूलों का होगा सुरक्षा अंकेक्षण, पॉक्सो कानून के पालन में लापरवाही पर होगी सख्त कार्रवाई। उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधु ने दिए निर्देश, जनसत्ता की खबर है। दैनिक भास्कर ने फीफा विश्व कप में फुटबॉलर मेसी के इतिहास रचने का समाचार सचित्र दिया है। पत्र लिखता है, हैट्रिक 1 रिकॉर्ड 10, उम्र बढ़ने के साथ मेसी ने खेल की बदली शैली। टेलीग्राम ने प्रतिबंध आदेश को दी चुनौती, केंद्र को नोटिस, देशबंधु सहित सभी अखबारों की सुर्खी है। दैनिक जागरण के शब्द हैं, टेलीग्राम को लेकर आईआईटी निदेशक से तर्क वितर्क, केंद्र सरकार ने कहा टेलीग्राम पर हो रही हैरान करने वाली गतिविधियां। राजस्थान पत्रिका ने लाहौल स्पीति में सैलानियों की तस्वीर साझा की है। पत्र लिखता है, वादियों में फुर्सत के पल, स्पीति में दिखी बर्फ, सैलानी हुए खुश। लोक सत्य ने अपने संपादकीय पन्ने पर देश में प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक होने पर छात्रों के मनोबल टूटने पर लेख प्रकाशित किया है। शीर्षक है, पेपर लीक से टूटता मनोबल। संपादक का कहना है कि पेपर लीक की घटनाएं केवल परीक्षा प्रणाली की कमजोरी नहीं दर्शाती, बल्कि ये युवाओं के सपनों पर चोट करती है।
1: धन्यवाद मनोज। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ पेरिस में विवटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। श्री मोदी फ्रांस की राजधानी में प्रवासी भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और उड़ीसा के 5 दिन के दौरे पर रहेंगे। झारखंड से राज्यसभा की 2 और मिजोरम की 1 सीट के लिए आज मतदान होगा। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता इस वर्ष 15 जुलाई से लागू होगा। पश्चिम एशिया संघर्ष समाप्त करने के लिए अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ 14 सूत्रीय शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। और पुरुष क्रिकेट में भारत ने दूसरे एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में अफगानिस्तान को 170 रन से हराकर श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त बनाई। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
10: Akashwani presents Morning News. Good morning, I am Nishit Kumar. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to attend Viva Tech Summit in Paris with French President Emmanuel Macron, PM Modi to also address members of Indian community in French capital. President Draupadi Murmu to embark on a five-day visit to Madhya Pradesh and Odisha beginning today. Polling for two Rajya Sabha seats from Jharkhand and one from Mizoram to take place today.

0: Akashwani FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
1: गुड मॉर्निंग सुप्रभात. 107.1 FM रेनबो सुन रहे सभी श्रोताओं को मेरे यानी आरजे अनूप का दिल से नमस्कार. दोस्तों आज तारीख है 18 जून, सुबह के 8:40 हो चुके हैं, मतलब वक्त हो चला है आपके मनपसंद शो मस्त मुंबई का. तो देखो मौसम में तो वही पुरानी उमस है, लेकिन मैं आरजे अनूप एफएम रेनबो परिवार की एक नई आवाज़ लेकर आया हूँ, एक नई ताजगी आज के सितारे कार्यक्रम में. तो बस बात क्या बची है, चाय की चुस्की लीजिए और मेरे साथ जुड़ जाइए आज के हमारे इस सुहाने सफ़र पर.

0: आर्थिक सहायता करने वाली कर्ज योजना।
1: कॉस्मो स्मॉल बिजनेस लोन इंटरेस्ट रेट सिर्फ 9.25% से शुरू।
0: कैश क्रेडिट या टर्म लोन के स्वरूप में 5 करोड़ रुपए तक लोन उपलब्ध। शर्तें लागू।
1: इंडस्ट्री ट्रेडिंग सर्विस इंडस्ट्री के लिए फायदेमंद कर्ज योजना कॉस्मो स्मॉल बिजनेस लोन।
0: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक एनरिचिंग लाइफ।
2: रीवा डायमंड्स फ्रॉम द हाउस ऑफ पीएनजी एंड सन्स प्रस्तुत कर रहे हैं खास मॉनसून ऑफर।
3: असली डायमंड की असली चमक, आधुनिक डिजाइन और मेकिंग चार्जेस पर 100% तक की छूट।
2: आज ही विजिट कीजिए पीएन गाडगिल शोरूम, रचना संसद, प्रभा देवी, सृष्टि प्राइम, गोखले रोड, ठाणे, फड़के रोड, डोंबिवली और बदलापुर।
3: रीवा नेचुरल डायमंड ज्वेलरी, शाइन नेचुरली।
4: मुंबई के मेरे दोस्तों

क्या हाल चाल है? क्या आपका भी हाल मेरे जैसा, या कहूँ कि हम सबका क्या सिमिलर हाल चाल है? सुबह सुबह का नहा कर निकलो और लोकल ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर जब हम पहुँचते हैं तो ऐसा लगता है कि सीधे स्विमिंग पूल से ही बाहर आ चुके हैं। लगता है कि हर मुंबई वाला लगान फिल्म के किरदार जैसे आसमान की तरफ आंखें गड़ाए बैठा है कि कब बरसात आए और इस गर्मी से राहत मिले। और हम रोज़ ही कहीं ना कहीं सुनते रहते हैं कि बस बारिश आ ही रही है, रास्ते में है, तो फिर अच्छा भी लगता है। लेकिन फिर ऐसा लगता है कि मॉनसून जो है हमें हेरा फेरी फिल्म के बाबू भैया जैसे कह रहा है कि ए भाई, प्लान में थोड़ा चेंज होने का, मैं कल आता हूँ, ठीक है। अरे भैया, लग रहा है अब ये बारिश हमारी मुंबई की लोकल जैसी हो गई है क्या, जो किसी सिग्नल पर रुकी है। खैर, उम्मीद पर दुनिया कायम है, छाता संभाल के रखिएगा मेरे दोस्तों, क्योंकि जब मुंबई की बारिश आती है ना तो बिना नॉक किए सीधे एंट्री ही मारती है। क्यों, सही कह रहा हूँ ना मैं?

जी हाँ, ऑल इज़ वेल और ऑल हमेशा ही वेल रहेगा अगर हम भी पॉजिटिव रहे तो. क्यों, सही कह रहा हूँ ना? आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई केंद्र का एफएम रेनबो चैनल. एफएम रेनबो का ये प्रसारण आप आकाशवाणी मुंबई के मीडियम वेव 1044 किलोहर्ट्ज़ के डिजिटल रिसीवर यानी डीआरएम पर भी सुन सकते हैं.

0: Ashwani FM Rainbow 107.1 MHz Musically yours.
1: अपने व्यापार की प्रगति के लिए और विस्तार के लिए कॉस्मो उद्योग लोन
2: 3 करोड़ तक की आर्थिक सहायता, लघु एवं मध्यम व्यापारियों के लिए कैश क्रेडिट के रूप में लोन उपलब्ध।
1: ये योजना सिर्फ नए ग्राहकों के लिए, इंटरेस्ट रेट सिर्फ 8.50% से शुरू, शर्तें लागू। आज ही संपर्क करें
2: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।
3: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
4: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी।
3: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
4: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
5: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
6: मस्त मुंबई में फिर आपका एक बार स्वागत है आरजे अनूप की ओर से। चलिए आज के दिन के इतिहास के पन्नों को पलटते हैं। आज 18 जून को देश के एक महान स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक शंकर त्रिंबक धर्माधिकारी जी का जन्मदिन है। उन्हें दुनिया बड़े प्यार से दादा धर्मकारी कहती है। वो गांधी विचारधारा के एक ऐसे स्तंभ थे जिन्होंने कभी सत्ता या किसी पक्ष का लालच नहीं किया। पद और पुरस्कारों को उन्होंने यह

0: Ashwani FM Rainbow 107.1 MHz Musically Yours.
1: फिर एक बार अर्जी अनूप आपके सामने है और मैं देख सकता हूँ काफ़ी लोगों ने मैसेज किया है और मुझे लगता है कि मेरे अलावा काफ़ी लोग खुद बहुत ही ज़्यादा बारिश का इंतज़ार कर रहे हैं बेसब्री से। और बिल्कुल एक जल्दी से हम एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेंगे, उसके बाद में मैं कुछ लोगों के मैसेजेस भी पढ़ के सुनाऊंगा आपके लिए।
2: अपने व्यापार की प्रगति के लिए और विस्तार के लिए कॉस्मो उद्योग लोन
3: 3 करोड़ तक की आर्थिक सहायता, लघु एवं मध्यम व्यापारियों के लिए कैश क्रेडिट के रूप में लोन उपलब्ध।
2: ये योजना सिर्फ नए ग्राहकों के लिए, इंटरेस्ट रेट सिर्फ 8.50% से शुरू, शर्तें लागू, आज ही संपर्क करें।
3: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।
4: रीवा डायमंड्स फ्रॉम द हाउस ऑफ पीएनजी एंड सन्स प्रस्तुत कर रहे हैं खास मॉनसून ऑफर।
5: असली डायमंड की असली चमक, आधुनिक डिजाइन और मेकिंग चार्जेस पर 100% तक की छूट।
4: आज ही विजिट कीजिए पीएन गाडगिल शोरूम, रचना संसद, प्रभा देवी, सृष्टि प्राइम, गोखले रोड, ठाणे, फड़के रोड, डोंबिवली और बदलापुर।
5: रेवा नेचुरल डायमंड ज्वेलरी, शाइन नेचुरली।
1: फिर एक बार आप सभी का स्वागत है, आपका दोस्त मैं हूँ आरजे अनूप के द्वारा। और देखो जैसा मेरा नाम है ना अनूप, मतलब जिसकी कोई उपमा नहीं कर सकता, वैसे ही आज के दिन में देखो गर्मी और इतिहास की गंभीर बातों के बीच एक ऐसा मज़ेदार दिन भी है जिसकी मीठी यादों की हमारे जीवन में भी दोस्तों कोई उपमा नहीं कर सकता। कुछ गेस कर सकते हैं क्या आप लोग? मैं बता ही देता हूँ, चलिए आज है वर्ल्ड पिकनिक डे। जी हाँ, वर्ल्ड पिकनिक डे। और पिकनिक का नाम सुनते ही तुरंत डूब गए ना आप अपने बचपन में, याद है ना वो दिन जब सुबह सुबह मम्मी जो है आलू पूरी या कोई सब्जी बनाती थी, पापा, चाचा या पड़ोसी जो है वो अपनी गाड़ियाँ तैयार करते और फिर थर्मस में पानी भरा जाता, शरबत भरा जाता था और सब हम चटाई लेकर किसी पार्क या बीच पर निकल जाते, वहाँ लूडो खेलते या अंताक्षरी खेलते, और अगर हम बस करते हैं तो बस में अंताक्षरी होती, बैडमिंटन खेलते या फिर कहीं ग्राउंड में जाके क्रिकेट खेलते। सब बहुत ही अलग अलग प्रकार से हम लोगों ने पिकनिकें मनाई हैं। तो दोस्तों अगर आपकी भी ऐसी कोई यादें जुड़ी हैं पिकनिक की तो प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप पर बताएं, और हमारा नंबर है 8657661071, 8657661071। तब तक चलिए पिकनिक की बात आई है तो थोड़ा सा नटखट हो लें।

और दोस्तों, वो पिकनिक ही कहाँ जहाँ पर आपने कभी अपने दोस्तों के साथ पेड़ों के पीछे या किसी गार्डन में या पार्क में लुका छुपी ना खेली हो।

0: Swali FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
1: आपके दिल की हर ख्वाहिश पूरी करने वाली फिक्स डिपॉजिट स्कीम, सुरक्षित बेस्ट इंटरेस्ट रेट और FD के ढेर सारे विकल्प।
2: इंटरेस्ट रेट सर्वसाधारण ग्राहक 7.05%, सीनियर सिटीजन 7.30%, मंथली और क्वार्टरली इंटरेस्ट ऑप्शंस के साथ 16 महीने, शर्तें लागू।
3: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।
4: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
5: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
4: और लाइट बिल के।
5: अब 0 रुपए कैसे दूं?
4: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
5: पक्का।
6: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
7: हर घर सूर्य घर।
8: फिर एक बार स्वागत है मेरे ओर से, यानी आरजे अनूप की ओर से। और दोस्तों, आपके जो व्हाट्सएप मैसेजेस आ रहे हैं उसमें इतना प्यार मिल रहा है कि बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि एक सपना शायद से पूरा हो चुका है, और बताऊंगा लोगों के क्या क्या मैसेजेस हैं ठीक है इस गाने के बाद।

दोस्तों, गोवा क्यों खा गए ना चकमा? बस गोवा का नाम सुनते ही कितना अच्छा लगने लगता है ना हम सभी को। वैसे आज का दिन गोवा के लिए एक बहुत ही गहरा और ऐतिहासिक कनेक्शन लाता है। देखिए, हम ये जानते तो हैं कि 15 अगस्त 1947 को पूरा भारत आज़ाद हो गया, लेकिन हमारा जो खूबसूरत गोवा है ना दोस्तों, वो तब भी पुर्तगालियों की गुलामों में था। और आज ही के दिन यानी 18 जून 1946 को महान स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी और डॉक्टर जुलियानो मेजनेस ने मडगांव की धरती पर पुर्तगाली दमन के खिलाफ ना सिविल नाफरमानी, यानी साफ शब्दों में कहे तो सिविल डिसोबीडियंस का एक आंदोलन शुरू किया। इसी दिन गोवा की मुक्ति की उस पहली चिंगारी को सुलगाया इन लोगों ने, जो आगे चलकर 19 दिसंबर 1961 को गोवा की पूर्ण आज़ादी का सबब बना। आज के दिन को गोवा में गोवा क्रांति दिवस यानी गोवा रेवोल्यूशन डे के रूप में मनाया जाता है। सलाम है मेरा और हमारे एफएम रेनबो का उन जाबाज स्वतंत्रता सेनानियों को जिन्होंने गोवा को आज़ाद भारत का एक इतना प्यारा हिस्सा बनाया।

0: डिजिटल बैंकिंग सेवा आसान और सुरक्षित
1: इंटरनेट बैंकिंग
0: मोबाइल बैंकिंग
1: व्हाट्सएप बैंकिंग
0: ईकेवाईसी
1: एनईएफटी आरटीजीएस
0: आईएमपीएस
1: कॉस्मोस रुपे और वीसा डेबिट कार्ड
0: यूपीआई जैसे कई सारी डिजिटल सेवाओं का लाभ लेने के लिए आपका अकाउंट कॉस्मोस बैंक में जरूर होना चाहिए।
1: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक एनरिचिंग लाइफ।
2: दोस्तों बहुत लोगों ने बहुत सारे मैसेजेस किए और इतने प्यारे प्यारे मैसेजेस किए हैं अपने पिकनिक के अनुभवों को लेकर। फिरोज जी कहती हैं कि महाबलेश्वर में उनके एक दोस्त का बंगलो है, वो वहाँ जाते हैं पिकनिक के लिए। और महेश बोरा जो अजमेर से हमें सुन रहे हैं, क्या बात है, वो कह रहे हैं कि मैं बचपन में तो बहुत जाता था और अब जो है मैं अपने बच्चों को लेकर जाता हूँ क्योंकि पिकनिक के द्वारा ही उन्हें काफ़ी चीज़ें सीखने भी मिलती है। शुभदा जो है वो हमें बता रही है कि एक पुरानी फिल्म थी 90s की, हमें राई प्यार के, उसमें पिकनिक को लेकर एक गाना था और बड़ी ही प्यारी फिल्म थी। शुभदा मुझे भी वो फिल्म बड़े अच्छे से याद है। बाकी हमारे काफ़ी लिसनर्स जो सुन रहे हैं वो कह रहे हैं कि आपके गानों की आज जो चॉइस है वो काफ़ी अच्छी है और उन्हें काफ़ी मज़ा आ रहा है, तो धन्यवाद। और पिकनिक को लेकर अगर हम बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा एक मस्ती वाला गाना तो बनता है दोस्तों।

दोस्तों, बात अब करते हैं हमारे देश के पसंदीदा खेल यानी क्रिकेट की। आज भारतीय क्रिकेट के उस लेजेंड की पुण्यतिथि है जिसने भारतीय बल्लेबाजों को और बल्लेबाजी को एक नई पहचान दी। उनका नाम है सैयद मुश्ताक अली। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि विदेशी धरती पर, जी हाँ, विदेशी धरती पर साल 1936 में इंग्लैंड के खिलाफ ओवल के मैदान पर भारत की तरफ से पहला टेस्ट शतक लगाने वाले बल्लेबाज मुश्ताक अली साहब ही थे। वो अपने आक्रामक और बेखौफ अंदाज के लिए जाने जाते थे। आपको तो याद ही होगा, पहले जब लोग टेस्ट क्रिकेट में टुक टुक करके खेला करते थे, तो मुश्ताक अली साहब जो थे वो आगे बढ़ बढ़ कर छक्के मारते थे। जब भारत के घरेलू T20 टूर्नामेंट सैयद मुश्ताक अली के नाम पे उन्हीं के सम्मान में रखा गया है। साल 2005 में आज ही के दिन उन्होंने दुनिया को अलविदा कहा था, लेकिन क्रिकेट इतिहास में उनका नाम हमेशा के लिए अमर रहेगा।

तो दोस्तों, ये था आज मस्त मुंबई आज के सितारे में 18 जून की कहानी। लेकिन लेकिन लेकिन कहानी अभी

बाकी है मेरे दोस्तों। आज ही के दिन कुछ ऐसा हुआ था, मैं भी बताऊंगा आगे। एक भारतीय महिला ने कुछ ऐसा किया था कि उसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में छप गया। क्या हुआ था और कौन थी ये महिला, बताऊंगा मैं कुछ ही समय में हमारे शो नमस्ते भारत कहानियां सुनाती है। मैं कहीं मत जाइएगा, मैं हूं आपका आरजे अनूप, यहीं हूं, आपको यही कहानी सुनाऊंगा। ठीक 10 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।

अब आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सुरक्षित, समावेशी और मानव केंद्रित विकास का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि AI की असली सफलता मशीनों की क्षमता में नहीं बल्कि आम लोगों को सशक्त बनाने में है। प्रधानमंत्री ने कहा कि AI शिक्षा और नवाचार को बढ़ावा दे सकता है, लेकिन बच्चों को गलत सूचना, डीप फेक और साइबर खतरों से बचाने के लिए प्रभावी सुरक्षा उपाय जरूरी है। मुंबई में चल रहे 19वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के तीसरे दिन कल कार्यशाला, चर्चाओं और विशेष फिल्म प्रदर्शनों का आयोजन किया गया। महोत्सव में पूर्वोत्तर भारत की विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं की लघु फिल्मों और वृत्त चित्रों का प्रदर्शन किया गया, जिसमें क्षेत्र की संस्कृति, विरासत और प्राकृतिक विविधता को दर्शाया गया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन ने दोनों देशों के बीच शत्रुता समाप्त करने के लिए 14 सूत्रीय शांति समझौते पर वर्चुअल रूप से हस्ताक्षर कर दिए हैं। इसमें होर्मुज जल डमरू मध्य को फिर से खोलने और ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर अंतिम समझौते सहित प्रतिबंध हटाने पर 60 दिनों की वार्ता प्रक्रिया शुरू करना भी शामिल है। और अंत में खेल समाचार। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ प्रो लीग हॉकी मुकाबले में भारतीय पुरुष टीम ने मौजूदा विश्व चैंपियन जर्मनी को 3-1 से हराकर शानदार जीत दर्ज की है। इस मैच में मनप्रीत सिंह ने अपना 413वां अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला खेल

नमस्कार, प्रणाम और आरजे अनूप की तरफ से आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत। और 107 एफएम रेनबो पर हम लेकर आए हैं हमारा अगला शो, नमस्ते भारत, कहानियां सुनाती है। दोस्तों, गणित यानी मैथ्स का नाम सुनते ही अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। हम लोग तो कैलकुलेटर ढूंढने लगते हैं, लेकिन ज़रा सोचिए, एक ऐसी महिला जो कंप्यूटर को चुनौती दे रही थी, जो पलक झपकते ही 13 अंकों के दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दे। जी हाँ, आज की कहानी है भारत की शान, द ह्यूमन कंप्यूटर, शकुंतला देवी जी की। कहीं मत जाइएगा, क्योंकि आज गणित से डर नहीं, प्यार होने वाला है।

0: आर्थिक सहायता करने वाली कर्ज योजना।
1: कॉस्मोस स्मॉल बिजनेस लोन इंटरेस्ट रेट सिर्फ 9.25% से शुरू।
0: कैश क्रेडिट या टर्म लोन के स्वरूप में 5 करोड़ रुपए तक लोन उपलब्ध। शर्तें लागू।
1: इंडस्ट्री, ट्रेडिंग, सर्विस इंडस्ट्री के लिए फायदेमंद कर्ज योजना कॉस्मोस स्मॉल बिजनेस लोन।
0: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।
2: रीवा डायमंड्स फ्रॉम द हाउस ऑफ पीएनजी एंड सन्स प्रस्तुत कर रहे हैं खास मॉनसून ऑफर।
3: असली डायमंड की असली चमक, आधुनिक डिजाइन और मेकिंग चार्जेस पर 100% तक की छूट।
2: आज ही विजिट कीजिए पीएन गाडगिल शोरूम, रचना संसद, प्रभा देवी, सृष्टि प्राइम, गोखले रोड, ठाणे, फड़के रोड, डोंबिवली और बदलापुर।
3: रीवा नेचुरल डायमंड ज्वेलरी, शाइन नेचुरली।
4: वेलकम बैक दोस्तों, बात है 1929 की। बेंगलुरु के एक सर्कस में काम करने वाले साधारण से एक इंसान के परिवार में जन्मी एक छोटी सी बच्ची। एक दिन वो इंसान अपनी बेटी के साथ ताश यानी कार्ड्स खेल रहे थे। पिता को लगा कि वो तो जीत रहे हैं और बड़े आराम से जीत जाएंगे, लेकिन वो हैरान हो गए जब उन्होंने देखा कि उनकी 3 साल की बच्ची ने हर कार्ड को याद रखकर अपने पिता को हरा दिया था। और वो बच्ची कोई और नहीं, शकुंतला देवी थी। उनके पिता ने तुरंत इस बात की गहराई और अपनी बच्ची के हुनर को जाना और कुछ ही समय में अपनी नौकरी छोड़ दी और शकुंतला देवी जी के साथ रोड शो शुरू किए उनका हुनर दिखाने के लिए। बिना किसी फॉर्मल स्कूलिंग के, बिना एक दिन स्कूल गए, जरा सोचिए, ये बच्ची सिर्फ 6 साल की उम्र में मैसूर यूनिवर्सिटी में बड़े बड़े प्रोफेसर्स के सामने गणित के चमत्कार दिखा रही थी। है ना कमाल की बात। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, जहां मैं आपको बताऊंगा एक ऐसा किस्सा जब शकुंतला देवी जी ने पूरे लंदन को हिला दिया। जाइएगा नहीं।

0: दे।
1: दोस्तों बात है 1950 की, शकुंतला देवी जी लंदन में थी। बीबीसी रेडियो पर उनका एक लाइव इंटरव्यू चल रहा था। होस्ट ने उन्हें गणित का एक बेहद पेचीदा सवाल किया और शकुंतला जी ने कुछ ही सेकंड में उसका जवाब दे दिया। हुनरबाज तो वो थी ही, लेकिन जानते हैं फिर क्या हुआ। बीबीसी के एक्सपर्ट्स ने कहा, शकुंतला जी आपका ये जवाब तो गलत है, और इसी के साथ पूरे स्टूडियो में सन्नाटा छा गया। लेकिन शकुंतला जी के चेहरे पर एक मुस्कान थी। उन्होंने पूरे आत्मविश्वास से कहा, सर मेरा जवाब गलत नहीं है, आपका कंप्यूटर गलत है। और दोस्तों जब दोबारा रीचेकिंग हुई तो पता चला कि वाकई में बीबीसी के कंप्यूटर की ही गलती निकली। भारत की इस बेटी ने कंप्यूटर को भी मात दे दी थी।

0: आपके दिल की हर ख्वाहिश पूरी करने वाली फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम और सुरक्षित बेस्ट इंटरेस्ट रेट और एफडी के ढेर सारे विकल्प।
1: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
0: आपके दिल की हर ख्वाहिश पूरी करने वाली फिक्स डिपॉजिट स्कीम, सुरक्षित बेस्ट इंटरेस्ट रेट और एफडी के ढेर सारे विकल्प।
2: इंटरेस्ट रेट सर्वसाधारण ग्राहक 7.05%, सीनियर सिटीजन 7.30% मंथली और क्वार्टरली इंटरेस्ट ऑप्शंस के साथ 16 महीने, शर्तें लागू।
0: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।
3: दोस्तों अब मैं वो किस्सा सुनाने जा रहा हूँ जिसने शकुंतला देवी जी का नाम इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज करा दिया। साल था 1980 और तारीख 18 जून माने आज की ही तारीख, और जगह थी इंपीरियल कॉलेज लंदन। उनके सामने 13-13 अंकों के दो रैंडम नंबर रखे गए। इतने बड़े नंबर जो मैंने पढ़े तो शायद बोलने में ही 20 सेकंड चले जाए। नंबर स्क्रीन पर दिख रहे थे। शकुंतला जी ने उन नंबर्स को देखा और महज 28 सेकंड में उसका सही मल्टीप्लीकेशन करके बता दिया। महज 28 सेकंड में, मुझे बोलने में शायद वो नंबर लग जाते 20-25 सेकंड। है ना कमाल की बात, अकल्पनीय अद्भुत कला का प्रदर्शन। इस अविश्वसनीय कारनामे के लिए शकुंतला देवी जी का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया। लोग उन्हें ह्यूमन कंप्यूटर कहने लगे, हालांकि वे खुद कहती थी कि इंसानी दिमाग जो है वो कंप्यूटर से कहीं बढ़कर है।

बड़ी कमाल की प्रतिभा की धनी थी शकुंतला देवी जी, और कहना गलत नहीं होगा कि एक जो उन्होंने बचपन से मैथ्स यानी गणित को लेकर एक जिद पकड़ ली मन में, उसको ऐसा निखारा और दुनिया के सामने ऐसा परोसा कि दुनिया भी उसकी फैन हो गई।

0: Ashwani FM Rainbow 107.1 MHz Musically yours.
1: जी हाँ दोस्तों, बहुत मज़ा आ रहा है। मैं हूँ आरजे अनूप और इतना अच्छा लग रहा है कि हमारे सारे लिसनर्स जो हैं बहुत एंजॉय कर रहे हैं शो को, और सारे लोगों को शकुंतला देवी जी के बारे में कितना कुछ पता है जान के बड़ा अच्छा लग रहा है। हमारे अभी जो लिसनर्स हैं जिन्होंने उनका नाम लिया है वो है विजेंद्र घटोल अकोला से, और प्रदीप अनंत कृष्णन जी है, पंकज महोट जी है, शुभलक्ष्मी जी हैं, महेश बोहरा जी हैं राजस्थान से। और देखिए कितना अच्छा लगता है जब हमारे देश की एक इतनी प्रतिभाशाली महिला, हमारी देश की शान, उनको कितने लोग जान रहे हैं और लोग ये कहना चाह रहे हैं हमसे कि और बताइए इनके बारे में, बहुत अच्छे गाने हैं अभी जो आप प्ले कर रहे हैं, और स्पेशल कार्यक्रम जो है शकुंतला देवी जी पर बहुत अच्छा लग रहा है और गीत जो है लोगों को बहुत पसंद आ रहे हैं। धन्यवाद सभी लिसनर्स का हमारे। और जो है कि शुभलक्ष्मी मस्तकर जी कह रही हैं कि शकुंतला देवी जी की कहानी बहुत अच्छी लग रही है, और विजेंद्र घटोल जो है अकोला से वो कह रहे हैं कि नमस्ते भारत, आपका जो शो है वो बहुत अच्छा लग रहा है उन्हें। और जी हाँ, हमारी तो कोशिश यही रहेगी कि आपको बहुत अच्छा हम शो हमेशा सुनाते रहें।

0: Swali FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
1: व्यापार की प्रगति के लिए और विस्तार के लिए कॉस्मो उद्योग लोन
2: 3 करोड़ तक की आर्थिक सहायता लघु एवं मध्यम व्यापारियों के लिए कैश क्रेडिट के रूप में लोन उपलब्ध।
1: ये योजना सिर्फ नए ग्राहकों के लिए इंटरेस्ट रेट सिर्फ 8.50% से शुरू शर्तें लागू आज ही संपर्क करें
2: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक एनरिचिंग लाइफ।
3: रीवा डायमंड्स फ्रॉम द हाउस ऑफ पीएनजी एंड सन्स प्रस्तुत कर रहे हैं खास मॉनसून ऑफर।
4: असली डायमंड की असली चमक आधुनिक डिजाइन और मेकिंग चार्जेस पर 100% तक की छूट।
3: आज ही विजिट कीजिए पीएन घाटगिल शोरूम रचना संसद प्रभा देवी सृष्टि प्राइम गोखले रोड ठाणे फड़के रोड डोंबिवली और बदलापुर।
4: रेवा नेचुरल डायमंड ज्वेलरी शाइन नेचुरली।

दोस्तों, अक्सर लोग सोचते हैं कि जो इंसान गणित में इतना डूबा हो वो तो बड़ा ही गंभीर इंसान होगा। मुझे भी ऐसा लगता था, लेकिन हमारी शकुंतला जी बिल्कुल ऐसी नहीं थी। वे तो एक बेहद जिंदा दिल और बहुमुखी प्रतिभा की धनी थी। बहुत ही कम लोग जानते हैं कि वे गणितज्ञ होने के साथ साथ एक बेहतरीन एस्ट्रोलॉजर यानी ज्योतिषी भी थी। इतना ही नहीं, उन्होंने कुछ कुकिंग बुक्स भी लिखी, नॉवेल्स की रचना की और सस्पेंस थ्रिलर मर्डर मिस्ट्रीज भी लिखी। उनका मानना था कि जीवन का जो हर रंग है ना दोस्तों, उसे बिल्कुल फुल खुल कर जीना चाहिए। किसी एक दायरे में बंद कर जीवन नहीं जिया जा सकता। तो क्या बात है, उनकी सोच को सलाम।

साल 2013 में शकुंतला देवी जी हमें अलविदा कह गई, लेकिन वो हमें दोस्तों एक बहुत ही बड़ी सीख देकर गई है। वो कहती थी कि नंबर से डरने की ज़रूरत नहीं है, वो तो आपके दोस्त हैं। और उन्होंने यह भी साबित कर दिया कि अगर आप में टैलेंट है तो दुनिया जीतने से आपको कोई नहीं रोक सकता। सलाम है हमारे भारत की इस बेटी को। दोस्तों इसी के साथ अब वो समय आ गया है जब मैं थोड़ा उदास हो रहा हूँ, क्योंकि ये समय है आपसे विदा लेने का। पर हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नए दिन और एक नई एनर्जी के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए 107.1 FM रेनबो मेरे यानी आरजे अनूप के साथ। और ठीक 11 बजे हमारे साथ जुड़ेंगी हमारी बहुत ही प्यारी आरजे शर्मीन। ओके दोस्तों, मुस्कुराते रहिए, फिर मिलेंगे।

0: Ashwani FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
1: अब सुन रहे हैं 107.1 MHz पर FM Rainbow और समय हो चुका है अब तक के कुछ मुख्य समाचारों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस की राजधानी पेरिस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के साथ वीवाटेक 2026 सम्मेलन में भाग लेंगे। वे भारत की तकनीकी प्रगति और नवाचार को दुनिया के सामने रखेंगे। इससे पहले G7 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री ने कई विश्व नेताओं से मुलाकात की और वैश्विक दक्षिण के मुद्दों को प्रमुखता से उठाया। महाराष्ट्र विधान परिषद के स्थानीय प्राधिकरण निर्वाचन क्षेत्र की 11 सीटों के लिए आज मतदान होगा। इन 11 सीटों के लिए 31 उम्मीदवार मैदान में हैं, जबकि 6 निर्वाचन क्षेत्र में उम्मीदवार निर्विरोध चुने जा चुके हैं। वोटों की गिनती इस महीने की 22 तारीख को होगी। और समाचार में आगे, क्रिकेट में भारत ने लखनऊ में खेले गए दूसरे एक दिवसीय मैच में अफगानिस्तान को 170 रन से हरा दिया। इसके साथ ही भारत ने 3 मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है। और समाचार के अंत में, फीफा विश्व कप 2026 में इंग्लैंड ने क्रोएशिया के खिलाफ 4-2 की जीत के साथ ग्रुप एल में अपने अभियान की शुरुआत की। ग्रुप के पहले मैच में पुर्तगाल और कांगो का मैच 1-1 की बराबरी पर रहा। पुर्तगाल के कप्तान क्रिस्टियानो रोनाल्डो फीफा विश्व कप मैच में शुरुआती लाइनअप में जगह बनाने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गए हैं। प्रादेशिक समाचार अनुभाग द्वारा प्रसारित समाचार का ये अंक यहीं समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम के लिए बने रहिएगा इसी फ्रीक्वेंसी पर।

उदित नारायण, आनंद राज, आनंद जुबीन, अभिजीत, बाबुल सुप्रियो की आवाजें, देव कोहली ने इसे लिखा, आनंद राज आनंद की कॉम्पोजिशन, प्लान इस फिल्म से सुना आपने ये गाना। आप सुन रहे हैं 107.1 एफएम रेनबो, शर्मीन संग शामिल अगर हो गए हैं तो हाजिरी लगाइएगा 8657661071 8657661071 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। और जी इस गाने के साथ ही ब्रेक फ्री प्रोग्राम की शुरुआत हो गई है। गाना कह रहा था आने वाला पल वो आ रहा है, लेकिन कभी कभी ऐसे होता है ना कि अगर आप कुछ प्लान करके न चल रहे हो और फिर वो पल भी है वो बस आ ही रहा है आ रहा है, तो ऐसे में इंसान जो है हो जाता है पैनिक। तो आज हम ब्रेक फ्री में इसी जो पैनिक सिचुएशन है उससे ब्रेक फ्री होने की बात करेंगे, क्योंकि आज है इंटरनेशनल पैनिक डे। नाम

0: सुनते ही आप भी पैनिक मत हो जाइएगा, ये दिन हमें याद दिलाता है कि कभी कभी लाइफ में घबराहट होना बिल्कुल नॉर्मल है। एग्जाम हो, इंटरव्यू हो या किसी इंपॉर्टेंट रिजल्ट का इंतजार, पैनिक जो है हम सबको होता है। लेकिन याद रखिए, पैनिक जो है वो परमानेंट नहीं होता। तो वो जो उतना पीरियड रहता है उसमें किस तरह से हम खुद को कंट्रोल कर सकते हैं और इस पैनिक से ब्रेक फ्री हो सकते हैं, इसकी आज हम बात करेंगे। अभी के लिए आए आपको एक और गाना सुनाते हैं जो कह रहा है चक दे सारे गम। हम तुम इस फिल्म से आएगा ये गाना। सोनू निगम, साधना सरगम की आवाजें हैं, प्रसून जोशी ने इसे लिखा, जतिन ललित की कॉम्पोजिशन।
1: चक दे सारे गम,
2: चक दे
1: तेरे संग है हम।

0: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
1: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी।
0: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
1: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
2: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
3: रीवा डायमंड्स फ्रॉम द हाउस ऑफ PNG एंड सन्स प्रस्तुत कर रहे हैं खास मॉनसून ऑफर।
4: असली डायमंड की असली चमक, आधुनिक डिजाइन और मेकिंग चार्जेस पर 100% तक की छूट।
3: आज ही विजिट कीजिए PN गाडगिल शोरूम, रचना संसद, प्रभा देवी, सृष्टि प्राइम, गोखले रोड, ठाणे, फड़के रोड, डोंबिवली और बदलापुर।
4: रेवा नेचुरल डायमंड ज्वेलरी, शाइन नेचुरली।
5: आपके दिल की हर ख्वाहिश पूरी करने वाली फिक्स डिपॉजिट स्कीम, सुरक्षित, बेस्ट इंटरेस्ट रेट और FD के ढेर सारे विकल्प।
6: इंटरेस्ट रेट सर्वसाधारण ग्राहक 7.05%, सीनियर सिटीजन 7.30%, मंथली और क्वार्टरली इंटरेस्ट ऑप्शंस के साथ 16 महीने, शर्तें लागू।
7: कॉस्मॉस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।

सुखविंदर सिंह की आवाज, पीयूष मिश्रा ने इसे लिखा, विशाल शेखर की कॉम्पोजिशन टशन। इस फिल्म से सुना आपने ये गाना दिलहारा। आप सुन रहे हैं 107.1 FM रेनबो, शर्मीन संग शामिल हैं आप ब्रेक फ्रीज प्रोग्राम में। हम आज बात कर रहे हैं पैनिक से ब्रेक फ्री होने की, क्योंकि आज है इंटरनेशनल पैनिक डे। कभी आपने नोटिस किया है कि हम जिन बातों को लेकर सबसे ज्यादा पैनिक करते हैं उनमें से बहुत सी बातें वैसी होती हैं, मतलब उनका कुछ ऐसा मतलब भी नहीं होता, हमने ही सोचकर उसको बड़ा बना दिया होता है और फिर उसको लेकर हम पैनिक हो रहे होते हैं। हमारा दिमाग जो है

दिमाग अक्सर वर्स्ट केस सिनेरियो इमेजिन कर लेता है, इसलिए जब भी पैनिक हो आप तो खुद से एक सवाल पूछिएगा कि क्या ये प्रॉब्लम वाकई इतनी बड़ी है जितनी अभी लग रही है। कई बार जवाब जो है वो नहीं में ही होता है लेकिन उस वक्त तो आपको वो बड़ी चीज़ लग रही होती है ना, और पैनिक तो आप कर रहे होते हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो तब जो है एक छोटा सा पॉज लेना बहुत ज़रूरी होता है, और तब जाके ना आप थोड़ा सा ऐसा वो आपके साथ जो भी चल रहा होता है उससे हटकर सोचते हो, थर्ड पर्सन थर्ड पार्टी के हिसाब से आप सोच सकते हो, फिर आप चीज़ों को एनालाइज करते हो कि अब हो तो गई हैं चीज़ें, अब इसका करें क्या, है ना। तो इस तरह से ये जो इंटरनेशनल पैनिक डे, इसके बारे में हम और बात करेंगे। हमारे साथ कई सारे हमारे लिसनर्स जुड़ गए हैं। अशोक पाटिल जी ने वर्ली से मैसेज किया है, महेश जी ने हमें अजमेर राजस्थान से मैसेज किया है, विजय महोबी और उनकी फैमिली हमें सुन रही हैं, विजेंद्र जी ने अकोला से मैसेज किया है, राकेश माथुर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं पुणे से, प्रदीप अनंत कृष्णन जी, अंजू डॉक्टर अंजू अंधेरी से हमारे साथ जुड़ी हुई है, प्रणव शिंदे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, इंदौर से अजय सखरे, शुभदा शुभलक्ष्मी, पंकज महेश जी सेंटा क्लूज से, प्रमोद जी जुड़ गए हमारे साथ। तो अगर आप भी मुझे कहीं सुन पा रहे हैं तो व्हाट्सएप करके हाजिरी लगाइएगा जरा, 8657661071 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, और जहां पैनिक डे की बात है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। फिलहाल के लिए शालमली खोलगड़े गाएंगी परेशान, कौसर मुनीर ने इसे लिखा, मित्री वेदी की कॉम्पोजिशन, इश्क ज़ादे से आ रहा है ये गाना।

0: कॉस्मॉस डिजिटल बैंकिंग सेवा, आसान और सुरक्षित।
1: इंटरनेट बैंकिंग,
0: मोबाइल बैंकिंग,
1: व्हाट्सएप बैंकिंग,
0: ईकेवाईसी,
1: एनईएफटी, आरटीजीएस,
0: आईएमपीएस,
1: कॉस्मॉस रुपे और वीसा डेबिट कार्ड,
0: यूपीआई जैसे कई सारी डिजिटल सेवाओं का लाभ लेने के लिए आपका अकाउंट कॉस्मॉस बैंक में जरूर होना चाहिए।
1: कॉस्मॉस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।
2: रीवा डायमंड्स फ्रॉम द हाउस ऑफ पीएनजी एंड सन्स प्रस्तुत कर रहे हैं खास मॉनसून ऑफर।
3: असली डायमंड की असली चमक, आधुनिक डिजाइन और मेकिंग चार्जेस पर 100% तक की छूट।
2: आज ही विजिट कीजिए पीएन घाटगिल शोरूम, रचना संसद, प्रभा देवी, सृष्टि प्राइम, गोखले रोड, ठाणे, फड़के रोड, डोंबिवली और बदलापुर।
3: रेवा नेचुरल डायमंड ज्वेलरी, शाइन नेचुरली।

कविता कृष्णमूर्ति कुमार सानू की आवाज़ें, खामोशी द म्यूज़िकल से सुना अपने ये गाना। मजरू सुल्तानपुरी साहब के क्या ही खूबसूरत अल्फाज, जतिन ललित के बेहतरीन कॉम्पोजिशन। आप सुन रहे हैं 107.1 FM रेनबो, शर्मीन संग शामिल हैं आप। और जी, ब्रेक फ्री इस प्रोग्राम में आज हम बात कर रहे हैं पैनिक से ब्रेक फ्री होने की, क्योंकि आज है इंटरनेशनल पैनिक डे। लाइफ में हर चीज़ का आंसर जो है वो एकदम ही मिल जाना ज़रूरी नहीं होता, और कभी कभी कंफ्यूजन भी जर्नी का आपके हिस्सा होती है। अगर आपको लगता है कि आप सब कुछ फिगर आउट नहीं कर पा रहे हो तो टेंशन मत लीजिए, हर दिन एक नई अपॉर्चुनिटी है सीखने और आगे बढ़ने के लिए। तो क्यों उस वक्त आपको कोई आंसर नहीं मिल रहा और क्यों जल्दी जल्दी नहीं मिल रहा, ये सोचकर पैनिक हो जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हर चीज़ अपना टाइम लेती है, और जब ऐसे आपके आसपास हालात चल रहे हों जो एकदम से आपको पैनिक कर दें, तो जैसे कि मैंने कहा, थोड़ा सा पॉज लीजिए, क्योंकि हम बहुत ही ज़्यादा ऐसे हड़बड़ा जाते हैं बिल्कुल कि क्या ही मैं ऐसा कुछ करूँ कि बिल्कुल इस सिचुएशन से तुरंत ही निकल जाऊँ, लेकिन ऐसे होता नहीं है। इनफैक्ट आप जितना ज़्यादा पैनिक करेंगे, आपको आप सोच ही नहीं पाएंगे उससे निकलने का रास्ता। जब आपका माइंड शांत रहेगा तब जाके आपको जो है वो कई सारे ऑप्शंस नजर आएंगे। कुछ ऐसे डोर्स हैं जो आपके वो पैनिक के पर्दों के पीछे छुप गए हैं, तो उससे उसको देखने के लिए आपने सबसे पहले तो रिलैक्स होने की और इस पैनिक से ब्रेक फ्री होने की ज़रूरत है। इसके बारे में हम और बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए आए आपको सुनाते हैं ये गाना जो कहता है, कोई कहे कहता रहे कितना भी हमको दीवाना, दिल चाहता है इस फिल्म से आएगा ये गाना। शंकर महादेवन, शान केके की आवाजें, जावेद अख्तर साहब ने इसे लिखा, शंकर एहसान लॉय की कॉम्पोजिशन।

0: अपने व्यापार की प्रगति के लिए और विस्तार के लिए कॉस्मो उद्योग लोन
1: 3 करोड़ तक की आर्थिक सहायता, लघु एवं मध्यम व्यापारियों के लिए कैश क्रेडिट के रूप में लोन उपलब्ध।
0: ये योजना सिर्फ नए ग्राहकों के लिए, इंटरेस्ट रेट सिर्फ 8.50% से शुरू, शर्तें लागू, आज ही संपर्क करें।
1: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।
2: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
3: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
2: और लाइट बिल के,
3: अब 0 रुपए कैसे दूं?
2: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
3: पक्का।
4: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
5: हर

बिल्कुल म्यूजिकली योर्स, आप सुन रहे हैं 107.1 एफएम रेनबो. शर्मीन संग शामिल हैं आप. ब्रेक फ्री ये प्रोग्राम चल रहा है जिसमें हम बात कर रहे हैं पैनिक से ब्रेक फ्री होने की, क्योंकि आज इंटरनेशनल पैनिक डे है. सो हमने बात की कि किस तरह से जो है लाइफ में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए तो हम पैनिक करने लग जाते हैं, या कोई चीज़ हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है.

तो उसके लिए प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तब हम पैनिक कर रहे होते हैं, उसके रिजल्ट का इंतजार कर रहे होते हैं तब हम पैनिक कर रहे हैं। जब ये पैनिक फील होना आपको, तो थोड़ा सा आपने रुक जाना है, अपना फेवरेट गाना सुनिएगा FM रेनबो पर, है ना, थोड़े देर वॉक कीजिए या किसी अपने से बात कीजिए। छोटी छोटी ये चीजें हैं जो हमें प्रेजेंट मोमेंट में वापस ला सकती है, क्योंकि जब आप पैनिक होते हैं आप एकदम से जो है वहां रहते ही नहीं हो, एकदम ही आपकी मतलब माइंड जो है वो ऐसे भटकने लगता है कि क्या करूं क्या करूं, क्या हो जाए, कब मैं इस चीज से निकल जाऊंगा निकल जाऊंगी। लेकिन ये जो चीजें हैं, जैसे मैंने आपसे कहा कि थोड़ा सा पॉज लेना, वॉक कर लेना, कोई गाना सुनना, ये आपको खींच कर फिर से प्रेजेंट मोमेंट में ले आता है। और जब हम प्रेजेंट में रहते हैं तो पैनिक की आवाज़ भी जो है वो हमको लगने लगती है थोड़ी कम हो रही है, आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, है ना। और आहिस्ता आहिस्ता मुझे खड़ी बता रही है कि ये शो भी अब ख़त्म होने वाला है, लेकिन फिर भी हमारे पास एक लिंक और है। उससे पहले हम शो के ख़त्म होने की फिक्र से बेफिक्रे होकर ये गाना सुनते हैं। बेफिक्रे फिल्म का बनी दयाल की ये आवाज़ है, जयदीप साहनी ने इसे लिखा, विशालन शेखर की कॉम्पोजिशन।

और जी, इसी के साथ ब्रेक फ्री इस प्रोग्राम को यहीं ब्रेक लगाने का वक्त हो चला है। आपको बता दें कि 12 बजे न्यूज़ आएगी और 12:02 पर म्यूज़िक कैफ़े ओपन हो जाएगा, जो आज सिर्फ आधे घंटे के लिए ही ओपन रहने वाला है। तो जल्दी से म्यूज़िक कैफ़े में आइएगा ज़रूर। ब्रेक फ्री से जाते जाते यही कहना चाहेंगे कि आज के ब्रेक फ्री में इतनी सी बात है कि इंटरनेशनल पैनिक डे पर याद रखिए, हर मुश्किल वक्त गुजर ही जाता है और हर पैनिक मोमेंट भी गुजर ही जाता है। खुद पर भरोसा रखिए, अपने आप के साथ थोड़ा सा जेंटल रहिए और एक एक कदम लेकर आगे बढ़ते रहिए। एकदम से जंप करने की कंक्लूजन पर भी और कहीं और से भी जंप करने की ज़रूरत नहीं है। मुस्कराते रहिए, खुश रहिए और पैनिक से ब्रेक फ्री होते रहिए। इसी के साथ डोंट वरी कह रहे हैं नीरज श्रीधर, सलीम शहजादा, उनको भी सुनते हैं, चांस पे डांस। इस फिल्म से आ रहा है ये गाना, कुमार ने इसे लिखा, अदनान सामी की कॉम्पोजिशन। मिलते हैं आपसे।

ब्रेक फ्री में, जल्दी आइएगा, जल्द बंद होने वाला है ब्रेक, हम ब्रेक फ्री में नहीं, म्यूजिक कैफे में, तो कैफे जल्द बंद होने वाला है, तो वहाँ पे आइएगा ज़रूर 12 बजे, न्यूज़ 12:02 पर, म्यूजिक कैफे, ठीक है.

दीप सिंह जी, हमारे हॉकी इंडिया के सितारे और शहबाद के प्यारे गांव में एंट्री ले चुके हैं। आइए पधारिए पधारिए पधारिए पधारिए पधारिए पधारिए पधारिए पधारिए पधारिए।

0: स्वानी एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज म्यूजिकली योर्स।
1: आप सुन रहे हैं 107.1 मेगाहर्ट्ज पर एफएम रेनबो। समय हो चुका है अब तक के कुछ मुख्य समाचारों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पेरिस में प्रमुख फ्रांसीसी व्यापार जगत के प्रतिनिधियों के साथ कई उच्च स्तरीय बैठक करने वाले हैं। भारत फ्रांस आर्थिक और औद्योगिक सहयोग को और प्रगाढ़ करने के प्रयासों के अंतर्गत ये बैठक है। झारखंड में 10 लाख रुपए की इनामी महिला माओवादी पुष्पा महतो ने पश्चिम बंगाल के कोलकाता में पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। पुष्पा महतो 21 वर्षों से नक्सली गतिविधियों में सक्रिय थीं और झारखंड के पूर्वी सिंहभूम सहित सारंडा क्षेत्रों में कई घटनाओं में वांछित थीं। पुष्पा पर हत्या, उगाही और राजद्रोह सहित कई गंभीर मामले दर्ज थे। और समाचार में आगे, हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में कल रात एक सड़क दुर्घटना में 7 लोगों की मौत हुई। मृतकों में 4 पुरुष और 3 महिलाएं थीं। पुलिस ने बताया कि दुर्घटना लगभग रात 2 बजे हुई। प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि दुर्घटना वाहन के अनियंत्रित होकर खाई में गिरने से हुई। और समाचार के अंत में, बेस्ट कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि यदि वेतन, पेंशन, भर्ती और उपक्रम के भविष्य से जुड़ी लंबे समय से लंबित मांगों का समाधान राज्य सरकार, मुंबई मनपा और बेस्ट प्रशासन ने नहीं निकाला तो कल से वे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। प्रादेशिक समाचार अनुभाग द्वारा प्रसारित समाचार का ये अंक यहीं समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम के लिए बने रहिएगा इसी फ्रीक्वेंसी पर।

क्या बात है, पड़ोसन इस फिल्म से सुना आपने ये गाना। किशोर दा की आवाज़ से ही शुरुआत हो गई है म्यूज़िक कैफे की। राजेंद्र कृष्ण जी के अल्फाज, आडी बर्मन जी की कॉम्पोजिशन। आप सुन रहे हैं 107.1 FM रेनबो, शर्मीन संग शामिल हैं आप। वेलकम करते हैं आपको म्यूज़िक कैफे में। कैफे अभी अभी खुला है, कॉफ़ी की खुशबू हवा में घुल चुकी है और धीरे धीरे हमारे जो गेस्ट्स हैं, हमारे कस्टमर्स हैं, वो आने लगे हैं। वैसे तो कैफे में हर तरह की सीट्स हैं, लेकिन एक सीट ऐसी है जो आज तक अपना चार्म नहीं खोई। जैसे ही कोई अंदर आता है ना, उसकी नजर सबसे पहले उसी पर जाती है और वो है द विंडो सीट। और आज म्यूजिक कैफे में हम बात करेंगे इसी हमारे फेवरेट स्पॉट की। मैंने नोटिस भी किया है कि विंडो सीट के लिए लोगों का जो एक्साइटमेंट है ना, वो अलग ही होता है। अगर सीट खाली मिल जाए तो चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आ जाती है, और अगर ऑक्यूपाइड है तो नज़र बार बार उस तरफ चली जाती है कि काश खाली होती ये सीट, या काश मैं जल्दी आता या आती। शायद वजह यह है कि वहाँ बैठ कर ना कॉफ़ी के साथ सिर्फ, मतलब आप कॉफ़ी नहीं पीते बल्कि बाहर की दुनिया के नज़ारे भी आपको देखने मिल जाते हैं, है ना। तो ये विंडो सीट का क्रेज़ सिर्फ कैफ़े के लिए ही नहीं है। आप कहीं भी बस में भी ट्रैवल कर रहे हो या प्लेन में भी जा रहे हो, तो हर किसी को जो है वो विंडो सीट चाहिए होती है। इसके बारे में और बात करेंगे हमारे कैफ़े के इस बहुत ही फेमस स्पॉट के बारे में, लेकिन अभी के लिए आपको सुनाते हैं लकी अली की आवाज़ में ये गाना। नदा फाजली साहब ने इसे लिखा, सुर फिल्म से आ रहा ये गाना, MM क्रीम जी की कॉम्पोजिशन। जाने क्या ढूंढता है,

0: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
1: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी।
0: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
1: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
2: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
3: रीवा डायमंड्स फ्रॉम द हाउस ऑफ PNG एंड सन्स प्रस्तुत कर रहे हैं खास मॉनसून ऑफर।
4: असली डायमंड की असली चमक, आधुनिक डिजाइन और मेकिंग चार्जेस पर 100% तक की छूट।
3: आज ही विजिट कीजिए PN गाडगिल शोरूम, रचना संसद, प्रभा देवी, सृष्टि प्राइम, गोखले रोड, ठाणे, फड़के रोड, डोंबिवली और बदलापुर।
4: रेवा नेचुरल डायमंड ज्वेलरी, शाइन नेचुरली।
5: व्यापारियों को आर्थिक सहायता करने वाली कर्ज योजना
6: कॉस्मोस स्मॉल बिजनेस लोन, इंटरेस्ट रेट सिर्फ 9.25% से शुरू,
5: कैश क्रेडिट या टर्म लोन के स्वरूप में 5 करोड़ रुपए तक लोन उपलब्ध, शर्तें लागू।
6: इंडस्ट्री, ट्रेडिंग, सर्विस इंडस्ट्री के लिए फायदेमंद कर्ज योजना कॉस्मोस स्मॉल बिजनेस लोन।
5: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।

बात है, ऐसे गाने सुने जाते हैं किसी कैफे की किसी विंडो सीट के पास बैठकर मन मर्जियाँ से सुना आपने ये गाना, हर्षदीप कौर जैजम शर्मा की आवाज़ें, शैली साहब ने इसे लिखा, अमित त्रिवेदी की कॉम्पोजिशन। आप सुन रहे हैं 107.1 FM रेनबो, शर्मीन संग शामिल हैं आप और म्यूजिक कैफे ओपन है बिल्कुल ही, लेकिन आज ये सिर्फ आधे घंटे के लिए ओपन रहने वाला है। आपको बता दें कि 12:30 बजे हमारा एक स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम जाएगा उमंग, जो कि पूरा आधा घंटा चलेगा, सो म्यूजिक कैफे 12:30 बजे बंद हो जाएगा। उससे पहले आए, हमारी जो कैफे की विंडो सीट है उसकी बात की जाए। विंडो सीट पर बैठे वाले लोग भी बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं, कोई अपने फोन से ब्रेक लेकर बस बाहर देख रहा होता है, कोई अपनी कॉफी के साथ कुछ सोच रहा होता है, और कोई बस बात का ऐसे ही वो जो टाइम चल रहा है उसका ही मजा ले रहा होता है। यही चीज कि मुझको विंडो सीट मिल गई है, एक घंटे के लिए कहीं पहुंचने की जल्दी नहीं है, और सच कहूँ तो कैफे का सबसे ज्यादा सुकून शायद इसी कॉर्नर में, तभी इतनी उसकी डिमांड है। कभी कभी लगता है कि विंडो सीट हमारे कैफे की अनऑफिशियल सेलिब्रिटी है, हर दिन उस पर कोई ना कोई नया गेस्ट आके बैठ जाता है, कस्टमर आके बैठ जाता है, नई कहानी लेकर आता है और कुछ देर बाद अपनी यादें छोड़कर चला जाता है। लोग बदलते रहते हैं, कहानियां बदलती रहती हैं, लेकिन विंडो सीट की पॉपुलैरिटी है वो कम नहीं होती, और वो जो है हमारी विंडो सीट वहीं अपना पूरा चार्म लेकर हाजिर है हर दिन 12 से 1 के बीच में। म्यूजिक कैफे में लोग यहाँ आते हैं उस सीट के पास बैठने की दौड़ में। अभी के लिए आए, आपको सुनाते हैं केदारनाथ से ये गाना, अरिजीत सिंह, निकिता गांधी की आवाज़ें हैं, अमिताभ भट्टाचार्य ने इसे लिखा, अमित त्रिवेदी की कॉम्पोजिशन।

0: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
1: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी।
0: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
1: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
2: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
3: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और साथ साथ 1000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

वो विंडो सीट हमारे म्यूजिक कैफे की यही कहती होगी कि जो भी बैठा है उस पर उसके आने से नूर आ गया है। गुलजार साहब के अल्फाज, लता दीदी किशोरदा की आवाजें, आंधी फिल्म से सुना आपने ये गाना। बिल्कुल, और म्यूजिक कैफे के भी जाने का वक्त हो गया है। तो दोस्तों, आज म्यूजिक कैफे में बात हुई हमारी हमारे कैफे के सबसे फेवरेट और सबसे डिमांडेड स्पॉट की, द विंडो सीट। अब अगली बारी जब आप किसी कैफे में जाएं तो ज़रा नोटिस कीजिए, क्या आपकी भी कोई ऐसी फेवरेट सीट है जहां बैठते हो कुछ देर के लिए, है ना, और आपको बेटर लगने लगता है आपका। यूजुअली आप जिस भी कैफे में जाते हो वहाँ कोई ऐसा आपका भी फेवरेट स्पॉट होगा जहां आप बैठना पसंद करते हो। इसी के साथ म्यूजिक कैफे को हम यहीं रोकते हैं। आपको बता दें कि 12:30 बजे आप स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम NCERT उमंग ये सुन पाएंगे, जो कि आधे घंटे का है, मतलब कि अब मेरी आपकी मुलाकात होगी 1 बजे के बाद। 1 बजे आप छत्रपति संभाजी नगर से मराठी में समाचार सुन पाएंगे और 1:05 पर हिट एंड हॉट लेकर हाजिर हो जाऊंगी मैं। अभी के लिए फरहान सईद कह तो रहे हैं थोड़ी देर और ठहर जा, श्रेया घोषाल के साथ मिलकर कुमार ने इसको लिखा भी है, फरहान सईद की कॉम्पोजिशन, हाफ गर्लफ्रेंड से आ रहा है ये गाना, लेकिन नहीं रुक सकते ना, अभी तो 1:05 पर ही मिलते हैं आपसे। बने रहिएगा इसी फ्रीक्वेंसी 107.1 FM रेनबो पर, बिकॉज वी आर म्यूजिकली योर्स।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं सबसे पहले आज का सुंदर विचार, जिसे हमें भेजा है आर्यनगर कोका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी ने।
2: इन्होंने बहुत सुंदर लिखा है, हर ठोकर इंसान को गिरने से नहीं लगती, कुछ ठोकर सुधरने, संभलने और सीखने से भी लगती है।
3: बहुत सुंदर विचार भेजा है आप लोगों ने, हमारा आभार कीजिए स्वीकार। अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी का। लिखा है,
2: सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी, सप्रेम नमस्ते जी। वीर गाथा के अंतर्गत लेफ्टिनेंट कर्नल अर्देशीर बुरजोर जी तारापुर जी के व्यक्तित्व पर केंद्रित कार्यक्रम भी सुना। कार्यक्रम की जितनी भी प्रशंसा की जाए उतनी ही कम है। ये कार्यक्रम सुनवाने के लिए आपका हृदय से आभार प्रकट करते हैं।
3: नासिक महाराष्ट्र से प्रशांत पाटिल जी का संदेश आया है,
2: गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरता बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलऊ दास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतिमबाई मानिकपुरी।
3: करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी का,
2: ग्वालियर सुरेश खुराना, पप्पी अटल रेडियो श्रोता संघ सांकरा।
3: जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से नारायण लाल साहू, कुलवंतीन देवी साहू, देवेंद्र प्रताप साहू, नेहा देवी साहू, मिलिंद कुमार साहू, प्रणय कुमार साहू और रुद्रांश प्रताप साहू।
2: आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए।
3: आप सभी श्रोताओं का स्वागत है एक बार फिर से हमारी, आपकी, सबकी जानी पहचानी ज्ञान श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में। तो श्रोताओं, जैसा की आप जानते हैं, इस सप्ताह हमारी चर्चा चल रही है कुछ विशेष झीलों पर। तो अब तक हमने बातचीत की लोकटक और मानसरोवर झील के बारे में, तो आइए जानते हैं आज हम किस खास झील के बारे में बातचीत करने जा रहे हैं। श्रोताओं, वो झील है चिल्का झील। बता दें कि ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, वैसे तकनीकी रूप से ये एक लगून है। तो आइए पहले जान लिया जाए कि लगून किसे कहते हैं। जी श्रोताओं, लगून समुद्र या महासागर के किनारे एक उथले जलाशय को कहते हैं, जो समुद्र की रेत, कोरल चट्टानों या बड़े बड़े रेतीले टीलों के कारण समुद्र से अलग दिखाई पड़ता है। यानी जब कोई प्राकृतिक अवरोध आंशिक रूप से किसी बड़े जलाशय को समुद्र से अलग करता है तो उसे हम लगून कहेंगे। विशेष बात यह है कि लगून सामान्यतः उथला होता है, यह समुद्र से भी जुड़ा होता है लेकिन पूरी तरह से खुला नहीं होता। तो आपको बता दें कि भारत में दो लगून है, चिल्का झील लगून और लक्षद्वीप लगून। एक और विशेष बात श्रोताओ, समुद्र से जुड़ा होने के कारण चिल्का झील का पानी थोड़ा खारा और थोड़ा मीठा है। लेकिन एक प्रश्न उठता है कि थोड़ा खारा और थोड़ा मीठा क्यों? तो ऐसा इसलिए कि लगून में मीठे जल वाली नदियां भी गिरती हैं, जिसके कारण यहाँ का पानी थोड़ा मीठा और थोड़ा खारा हो सकता है। चिल्का झील इसका सुंदर उदाहरण है। तो आइए अब जान लें कि चिल्का झील है कहाँ। तो आपको बता दें कि ये ओडिशा के पुरी, खुर्दा और गंजाम जिलों में फैली हुई है। यहाँ लगभग 52 नदी नालों का मीठा पानी और बंगाल की खाड़ी का खारा पानी दोनों आते हैं। एक और रोचक बात आपके साथ साझा करना चाहूंगा श्रोताओं, और वो ये है कि यहाँ डॉल्फिन मछलियां भी मिलती हैं, जिन्हें इरावडी डॉल्फिन कहा जाता है। ये प्रजाति मात्र दुनिया में दो जगहों पर ही पाई जाती है,

0: इन्हें पानी में उछलते कूदते जल क्रीड़ा करते बड़ी आसानी से देखा जा सकता है। हाँ, स्वभाव से ये डॉल्फिन शर्मीली होती हैं। एक और तथ्य आपके साथ साझा करना चाहता हूं और वो ये है कि सर्दियों के मौसम में चिल्का झील में बहुत सारे प्रवासी पक्षी भी आते हैं। आप पूछेंगे कि ये कहां से आते हैं, तो आपको बता देते हैं, ये प्रवासी पक्षी साइबेरिया, चीन, मंगोलिया और रूस जैसे देशों से आते हैं। जरा सोचिए श्रोताओं, हजारों किलोमीटर की दूरी तय करके इन पक्षियों का चिल्का झील में आना कितना अनूठा है। इसी बात पर एक जानकारी और आपके साथ हम साझा करना चाहते हैं, वो ये है कि यहाँ आने वाले पक्षियों की संख्या लाखों में बताई जाती है, जो करीब 225 से भी अधिक प्रजातियों के हैं। चिल्का झील का नलबन द्वीप जाना माना पक्षी विहार या अभयारण्य माना जाता है। बहुत से सैलानी यहाँ मात्र पक्षियों को देखने के लिए ही आते हैं। ये ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर से लगभग 55 किलोमीटर की दूरी पर है। इसे सन 1987 में पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया था। जहां तक मछलियों की बात है, यहां मछलियों की 200 से भी ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं, जो मिश्रित मीठे पानी और खारे पानी में रह सकती हैं। इसके अतिरिक्त यहां लाल केकड़े, मछली पकड़ने वाली बिल्लियां भी पाई जाती हैं, जिन्हें फिशिंग कैट कहा जाता है। श्रोताओ, चिल्का झील में बोट राइड या नौकायन का अलग ही मजा है। यहाँ का सबसे यादगार अनुभव है सूर्योदय और सूर्यास्त की बेला में सूर्य और झील का नजारा, पक्षियों का मधुर कलरव और जल में मछलियों को उछलते कूदते हुए देखना। इतिहास बताता है कि प्राचीन काल में चिल्का झील से समुद्री व्यापार भी होता था, क्योंकि यह बंगाल की खाड़ी से जुड़ी हुई है। बंगाल की खाड़ी को ओडिशा में कलिंग सागर भी कहते थे। श्रोताओं, चिल्का झील से प्राचीन कलिंग के व्यापारी और नाविक सिंहल द्वीप यानी श्रीलंका, इंडोनेशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के कई देशों से आते थे। श्रोताओं, क्या आपने बोइता बंदाना के बारे में कुछ सुना है? है ना बड़ा दिलचस्प नाम? तो आपको बता दूं कि बोइता बंदाना का अर्थ है नावों की पूजा। बोइता यानी नाव और बंदाना यानी पूजा। इस उत्सव में जहाजों या बड़ी बड़ी नावों की पूजा होती थी। ये एक पारंपरिक त्यौहार है जो ओडिशा की समुद्री संस्कृति की विरासत है। इसे जनजातीय या आदिवासी भाषा में डांगा भाषा भी कहते हैं। यह कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। सन 2025 में ये 5 नवंबर को मनाया गया था। इस त्योहार में एक लोकप्रिय गीत या मंत्र पढ़ा जाता है। मंत्र है आ का मा बोई। आपको बता दूं कि ये नाविकों की सुरक्षित वापसी के लिए प्रार्थना गीत है। तो श्रोताओं, चिल्का झील न सिर्फ जैव विविधता का खजाना है, लेकिन हजारों लोगों की जीविका का साधन और कलिंग की समुद्री विरासत की गवाह भी। ये सचमुच भारत की एक अनूठी झील है। तो ये थी श्रोताओं हमारी आज की जानकारी विश्व विख्यात चिल्का झील के बारे में। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। तो प्रश्न है, चिल्का झील में आने वाले प्रवासी पक्षी मुख्य रूप से किन किन देशों से आते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, चिल्का झील में आने वाले प्रवासी पक्षी मुख्य रूप से किन किन देशों से आते हैं? आप अपना उत्तर और संदेश हमारे ईमेल पर भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। और हाँ, हमारा IVRS नंबर भी नोट कर लें। हमारा IVRS नंबर है 8800440559। आप हमें यानी CIET NCERT को इंस्टा, फेसबुक, एक्स और LinkedIn पर भी फॉलो कर सकते हैं। इससे आपको हमारी शैक्षिक गतिविधियों की लगातार जानकारी मिलती रहेगी। तो अब बारी है श्रोताओं आज के शैक्षिक कार्यक्रम की। तो आज का हमारा पहला कार्यक्रम है चिड़िया की बच्ची।
1: इस कार्यक्रम के द्वारा एक चिड़िया की बच्ची के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार वो अपनी माँ की प्रतीक्षा करती है और अपने घोंसले में आनंद से गीत गाते हुए अन्य पक्षियों से बातें भी करती है।
2: माधव दास ने अपने संगमरमर की नई कोठी बनवाई है। उसके सामने बहुत सुहावना बगीचा भी लगवाया है। उनको कला से बहुत प्रेम है। धन की कमी नहीं है और कोई व्यसन छू नहीं गया है। सुंदर अभिरुचि के आदमी हैं। फूल पौधे, रकाबियों से हौजों में लगे फव्वारों में उछलता हुआ पानी उन्हें बहुत अच्छा लगता है। समय भी उनके पास काफी है। शाम को जब दिन की गर्मी ढल जाती है और आसमान कई रंग का हो जाता है, तब कोठी के बाहर चबूतरे पर तख्त

आज कुछ कुछ बादल थे, घटा गहरी नहीं थी, धूप का प्रकाश उनमें से छन छन करा रहा था। माधव दास मसनत के सहारे बैठे थे। उन्हें जिंदगी में क्या स्वाद नहीं मिला है, पर जी भरकर भी कुछ खाली सा रहता है। उस दिन संध्या समय उनके देखते देखते सामने की गुलाब की डाली पर एक चिड़िया आन बैठी। चिड़िया बहुत सुंदर थी, उसकी गर्दन लाल थी और गुलाबी होते होते किनारों पर जरा जरा नीली पड़ गई थी। पंख ऊपर से चमकदार स्याह थे। उसका नन्हा सा सिर तो बहुत प्यारा लगता था और शरीर पर चित्र विचित्र चित्रकारी थी। चिड़िया को मानो माधव दास की सत्ता का कुछ पता नहीं था और मानो तनिक देर का आराम भी उसे नहीं चाहिए था। कभी पर हिलाती थी, कभी फुदकती थी, वो खूब खुश मालूम होती थी। अपनी नन्ही सी चोंच से प्यारी प्यारी आवाज निकाल रही थी।

0: माधव दास को वो चिड़िया बड़ी मनमानी लगी। उसकी स्वच्छंदता बड़ी प्यारी जान पड़ती थी। कुछ देर तक वो उस चिड़िया का इस डाल से उस डाल थिरकना देखते रहे। इस समय वो अपना बहुत कुछ भूल गए। उन्होंने उस चिड़िया से कहा,
1: आओ, तुम बड़ी अच्छी आई। ये बगीचा तुम लोगों के बिना सूना लगता है। सुनो चिड़िया, तुम खुशी से ये समझो कि ये बगीचा मैंने तुम्हारे लिए ही बनवाया है। तुम बेखटके यहाँ आया करो।
0: चिड़िया पहले तो असावधान रही, फिर जानकर कि बात उससे की जा रही है, वो एकाएक तो घबराई, फिर संकोच को जीतकर बोली,
2: मुझे मालूम नहीं था कि ये बगीचा आपका है। मैं अभी चली जाती हूँ। पल भर सांस लेने मैं यहाँ टिक गई थी।
1: हाँ, बगीचा तो मेरा है, ये संगमरमर की कोठी भी मेरी है, लेकिन इस सब को तुम अपना भी समझ सकती हो। सब कुछ तुम्हारा है। तुम कैसी भोली हो, कैसी प्यारी हो ना, जाओ नहीं, बैठो, मेरा मन तुमसे

0: खुश होता है।
1: चिड़िया बहुत कुछ सकुचा गई। उसे बोध हुआ कि ये उससे गलती तो नहीं हुई कि वो यहाँ बैठ गई है। उसका थिरकना रुक गया। भयभीत सी वो बोली,
2: मैं थक कर यहाँ बैठ गई थी। मैं अभी चली जाऊंगी। बगीचा आपका है, मुझे माफ करें।
0: मेरी भोली चिड़िया, तुम्हें देखकर मेरा चित्त प्रफुल्लित हुआ है। मेरा महल भी सूना है, वहां कोई भी चहचहाता नहीं है। तुम्हें देखकर मेरी रागनियों का जी बहलेगा। तुम कैसी प्यारी हो, यहां ही तुम क्यों ना रहो?
2: मैं माँ के पास जा रही हूँ, सूरज की धूप खाने और हवा से खेलने और फूलों से बात करने। मैं जरा घर से उड़ाई थी, अब सांझ हो गई है और माँ के पास जा रही हूँ। अभी अभी मैं चली जा रही हूँ। आप सोच ना करें।
0: प्यारी चिड़िया, पगली मत बनो। देखो तुम्हारे चारों तरफ कैसी बहार है। देखो वह पानी खेल रहा है, उधर गुलाब हंस रहा है। भीतर महल में चलो, जाने क्या क्या न पाओगी। मेरा दिल वीरान है, वहां कब हंसी सुनने को मिलती है। मेरे पास बहुत सा सोना मोती है, सोने का एक बहुत सुंदर घर मैं तुम्हें बना दूंगा। मोतियों की झालर उसमें लटकेगी। तुम मुझे खुश रखना, और तुम्हें क्या चाहिए है? माँ के पास बताओ क्या है। तुम यहां ही सुख से रहो मेरी भोली गुड़िया।
1: चिड़िया इन बातों से बहुत डर गई। वो बोली,
2: मैं भटक कर तनिक आराम के लिए इस डाली पर रुक गई थी। अब भूल कर भी ऐसी गलती नहीं होगी। मैं अभी यहाँ से उड़ी जा रही हूँ। तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आती हैं। मेरी माँ के घोंसले के बाहर बहुत तेरी सुनहरी धूप बिखरी रहती है। मुझे और क्या करना है? दो दाने माँ ला देती है, और जब मैं पर खोलने बाहर जाती हूँ तो माँ मेरी बाट देखती रहती है। मुझे तुम और कुछ मत समझो, मैं अपनी माँ की हूँ।
0: बोली चिड़िया, तुम कहाँ रहती हो? हा? तुम मुझे नहीं जानती हो?
2: मैं माँ को जानती हूँ, भाई को जानती हूँ, सूरज को और उसकी धूप को जानती हूँ, घास पानी और फूलों को जानती हूँ। महामान्य तुम कौन हो?
0: हा?
2: मैं तुम्हें नहीं जानती।
0: तुम भोली हो चिड़िया, तुमने मुझे नहीं जाना, तब तुमने कुछ नहीं जाना। मैं ही तो हूं सेठ माधव दास। मेरे पास क्या नहीं है,

0: जो मांगो मैं वही दे सकता हूँ।
1: पर मेरी तो छोटी सी जात है, आपके पास सब कुछ है, तब मुझे जाने दीजिए।
0: चिड़िया, तू मेरी अनजान है, मुझे खुश करेगी तो तुझे माला माल कर सकता हूँ।
1: तुम सेठ हो, मैं नहीं जानती सेठ क्या होता है। पर सेठ कोई बड़ी बात होती होगी, मैं अनसमझ ठहरी। माँ मुझे बहुत प्यार करती है, वो मेरी राह देखती होगी। मैं मालामाल होकर क्या होंगी, मैं नहीं जानती मालामाल किसे कहते हैं। क्या मुझे वो तुम्हारा मालामाल होना चाहिए?
0: अरे चिड़िया, तुझे बुद्धि नहीं है, तू सोना नहीं जानती? सोना, उसी की जगत को तृष्णा है, वह सोना मेरे पास ढेर का ढेर है। तेरा घर समूचा सोने का होगा, ऐसा पिंजरा बनवाऊंगा कि कहीं दुनिया में ना होगा, ऐसा कि तू देखती रह जाए, तो उसके भीतर थिरक फुदक कर मुझे खुश करिए, तेरा भाग्य खुल जाएगा। तेरे पानी पीने की कटोरी भी सोने की होगी।
1: वो सोना क्या चीज होती है?
0: तू क्या जानेगी, तू चिड़िया जो है, सोने का मूल्य सीखने के लिए तुझे बहुत सीखना है। बस ये जान ले कि सेठ माधव दास तुझसे बात कर रहा है, जिससे मैं बात तक कर लेता हूं उसकी किस्मत खुल जाती है। तू अभी जग का हाल नहीं जानती, मेरी कोठियों पर कोठियां हैं, बगीचों पर बगीचे हैं, दास दासियों की संख्या नहीं है, पर तुझसे मेरा चित्त प्रसन्न हुआ है। ऐसा वरदान कब किसी को मिलता है री चिड़िया, तो इस बात को समझती क्यों नहीं?
1: मैं नादान हूं, मैं कुछ समझती नहीं, पर मुझे देर हो रही है, माँ मेरी बाट देखती होगी।
0: ठहर। इस अपने पास के फूल को तूने देखा? ये एक है, ऐसे अनगिनती फूल हैं, ऐसे अनगिनती फूल मेरे बगीचों में हैं, वे भांति भांति के रंग के हैं, तरह तरह की उनकी खुशबू है। चिड़िया, तैने मेरा चित्त प्रसन्न किया है, और वे सब फूल तेरे लिए खिला करेंगे। वहां घोंसले में तेरी माँ है, पर माँ क्या है? इस बहार के सामने तेरी माँ क्या है? वहां तेरे घोंसले में कुछ भी तो नहीं है, तू अपने को नहीं देखती? हाँ, कैसी सुंदर तेरी गर्दन, कैसी रंगीन देह, तू अपने मूल्य को क्यों नहीं देखती? मैं तुझे सोने से मढ़कर तेरे मूल्य को चमका दूंगा। तैने मेरे चित्त को प्रसन्न किया है, तू मत जा, यही रह।
1: सेठ, मैं अपने को नहीं जानती, इतना जानती हूं कि माँ मेरी माँ है।

0: मुझे मुझे यह देर हो रही है सेठ, मुझे रात मत करो। रात में अंधेरा बहुत हो जाता है और मैं राह भूल जाऊंगी।
1: अच्छा चिड़िया, जाती हो तो जाओ, पर इस बगीचे को अपना ही समझो। तुम बड़ी सुंदर हो।
2: ये कहने के साथ ही सेठ ने एक बटन दबा दिया। उसके दबने से दूर कोठी के अंदर आवाज हुई, जिसे सुनकर एक दास झटपट भागकर बाहर आया। ये सब क्षण भर में हो गया और चिड़िया कुछ भी नहीं समझी। सेठ कहते रहे,
1: तुम अभी माँ के पास जाओ, माँ बाट देखती होगी, पर कल आओगी ना, कल आना, परसों आना, रोज आना।
2: ये कहते कहते दास को सेठ ने इशारा कर दिया और वो चिड़िया को पकड़ने के जतन में चला। सेठ कहते रहे,
1: सच तुम बड़ी सुंदर लगती हो, तुम्हारे भाई बहन हैं? कितने भाई बहन हैं?
0: दो बहन एक भाई, पर मुझे देर हो रही है।
1: हाँ हाँ जाना, अभी तो उजेला है। दो बहन एक भाई है, हाँ? बड़ी अच्छी बात है।
0: सेठ मुझे देर हो रही है।
1: देर अभी कहाँ, अभी उजेला है मेरी प्यारी चिड़िया। तुम अपने घर का इतने और हाल सुनाओ, भय मत करो।
0: क्या करूं सेठ, मुझे डर लगता है, माँ मेरी दूर है, रात हो जाएगी तो राह नहीं सूझेगी।
3: देखते क्या हो, यही मौका है, पकड़ लो इसे।
4: जी मालिक।
2: इतने में चिड़िया को बोध हुआ कि जैसे एक कठोर स्पर्श उसके देह को छू गया। वो चीख देकर चिचियाई और एकदम उड़ी।
1: हाथ से निकल गई।
2: नौकर के फैले हुए पंजे में वो आकर भी नहीं आ सकी। तब वो उड़ती हुई एक सांस में माँ के पास गई और माँ की गोद में गिरकर सुबकने लगी।
5: माँ
2: ने बच्ची को छाती से चिपटाकर पूछा,
5: क्या है बच्ची? क्या हुआ बेटा, बता बेटा।
2: पर बच्ची कांप कांप कर माँ की छाती से और चिपक गई, बोली कुछ नहीं, बस सुबकती रही।
5: बड़ी
2: देर में उसे ढाढ़स बंधा और तब वो पलक मीच उस छाती में ही चिपक कर सोई, जैसे अब पलक ना खोलेगी।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम चिड़िया की बच्ची। तो श्रोताओं, अब हमारा कार्यक्रम यानी उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।

पॉइंट वन एफएम रेनबो, शर्मीन संग शामिल हो चुके हैं आप दोबारा से। हिट एंड हॉट ये प्रोग्राम की भी शुरुआत हो गई है। बिल्कुल इसमें आपकी पसंद के गाने हम प्ले करेंगे, लेकिन एक सवाल हमेशा की तरह आपके लिए लेकर आई हूँ मैं। उस सवाल का जवाब आपने देना है और अपने आंसर के साथ अपनी सॉन्ग रिक्वेस्ट भेज देनी है 8657661071 पर। 8657661071 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। और आज का सवाल कुछ यूँ है कि ऐसी कौन सी एक ऐसी मूवी है जिसे आप चाहे बार भी देख लो ना, फिर भी आप बोर नहीं होते हो, आपको उसको बार बार देखने में उतना ही मजा आता है जितना आपने उसको फर्स्ट टाइम देखा था। ऐसी मूवी का नाम बताएं जो आप चाहे कितनी बार भी आप देख लो आप बोर नहीं होते, ठीक है? इसका जवाब दें और साथ में अपनी सॉन्ग रिक्वेस्ट भेज दें 8657661071 पर। और आज जैसे कि मैंने आपसे कहा कि ब्रेक फ्री में आज इंटरनेशनल पैनिक डे तो है ही, लेकिन आज पिकनिक डे भी है। हाँ, जब भी ऐसा पैनिक फील हो ना, पिकनिक पर चले जाइएगा आपके अपनों के साथ, जैसे कि ये वाले गाने में भी पिकनिक दिखाई गई है। आशा जी, अलका याग्निक, उदित नारायण की आवाज़ें, आनंद बख्शी साहब ने इसे लिखा, राहुल शर्मा की कॉम्पोजिशन, मुझसे दोस्ती करोगे का टाइटल ट्रैक आ रहा है। बने रहिएगा इसी फ्रीक्वेंसी 107.1 FM रेनबो पर, बिकॉज वी आर म्यूजिकली योर्स।

हाँ जी, ये है ना फिल्म से सुना आपने ये गाना अनारदाना, लता दीदी की आवाज़, रविंद्र जैन जी की कॉम्पोजिशन थी। आप सुन रहे हैं 107.1 FM रेनबो, शर्मीन संग शामिल हैं आप, हिट एंड हॉट ये प्रोग्राम चल रहा है जिसमें आपकी पसंद के गाने हम प्ले करते हैं। और ये गाना आपने सुना संदीप मक्कर, ज्योति मक्कर और उनकी फैमिली ये गाना सुनना चाह रही थी। और जैसे कि मेरे आज का सवाल है हिट एंड हॉट में, मैं आपसे एक सवाल करती हूँ, उस सवाल का आप जवाब देते हो और उसके साथ अपनी

सॉन्ग रिक्वेस्ट मुझ तक पहुंचाते हैं आप 8657661071 पर, 8657661071 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, सो उस पर अपनी सॉन्ग रिक्वेस्ट और आज का जो भी आंसर है वो भेज दीजिएगा। सवाल मैंने आपसे पूछा था कि ऐसी कौन सी एक मूवी है जिसे आप चाहे कितनी बार भी देख लो ना फिर भी आप बोर नहीं होते हो, तो संदीप जी ने हमें मैसेज किया था कि मिस्टर इंडिया ऐसी फिल्म है जो वो बार बार देखना चाहते हैं। फिर हमें विजेंद्र जी ने अकोला से मैसेज किया है, वो कहते हैं कि दूल्हे राजा एक ऐसी फिल्म है जो वो कितनी बार भी देखें वो बोर नहीं होते हैं। और प्रणव शिंदे हमें मैसेज करते हैं कि दो फिल्में ऐसी हैं जो वो बार बार देखना चाहते हैं और देखते भी हैं लेकिन फिर भी बोर नहीं होते, उनमें से एक है हम दिल दे चुके सनम और दूसरी है सिर्फ तुम। और उन्होंने हम दिल दे चुके सनम का टाइटल ट्रैक मांगा है, वो बहुत जल्द मैं प्ले करूँगी। विजेंद्र जी ने हमें जो सॉन्ग रिक्वेस्ट किया है वो है ये वाला, हो नहीं सकता दिल जले इस फिल्म से, उदित नारायण की आवाज़, जावेद अख्तर साहब ने इसे लिखा, अनु मलिक की कॉम्पोजिशन। आप भी बताइएगा कौन सी ऐसी मूवी है जो आप जितनी बारी देख लें फिर भी आप बोर नहीं होते। इस सवाल के जवाब के साथ अपनी सॉन्ग रिक्वेस्ट भेज दें बताए हुए नंबर पर।

क्या बात है, क्या कहने इन खूबसूरत आवाज़ों के। कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ और मोहम्मद सलामत डोमिनिक ने इसको कंपोज़ किया था, महबूब साहब के अल्फाज थे। हम दिल दे चुके सनम का टाइटल ट्रैक आपने सुना प्रणव शिंदे की रिक्वेस्ट पर। आप सुन रहे हैं 107.1 FM रेनबो, शर्मीन संग शामिल हैं आप। हिट एंड हॉट ये प्रोग्राम चल रहा है जिसमें आपकी पसंद के गाने प्ले हो रहे हैं, लेकिन वो तब हो रहे हैं जब आप मेरे सवाल का जवाब दे रहे हो। इस तरह का ही ये प्रोग्राम होता है। मैंने आपसे पूछा है कि कौन सी ऐसी एक फिल्म है जिसको आप कितनी बार भी देख लो ना, आपका मन नहीं भरता, बोर नहीं होते हो, आप बार बार उसको देखते रहते हो। तो इसका जवाब आपने देना है और फिर अपनी सॉन्ग रिक्वेस्ट भेजनी है 8657661071 पर, 8657661071। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आपको एक चीज़ और बता दें कि 1:30 बजे आप हमारे न्यूज़ स्टूडियो से मराठी में समाचार सुन पाएंगे और 1:40 मिनट

एंड हॉट लेकर आपकी सॉन्ग रिक्वेस्ट हैं, आपके सारे जवाब लेकर मैं दोबारा से हाजिर हो जाऊंगी। अस्मिता नेरुल से हमें लिखती हैं कि उनको हलचल ऐसी एक फिल्म है जो कितनी बारी भी देखो वो बोर नहीं होती हैं और उनको बड़ा मज़ा आता है वो फिल्म देखकर। फिर हमें पिंटो ने कॉल किया था, वो कहते हैं कि लज्जा ऐसी फिल्म है कि वो जितनी बारी उस फिल्म को देखें वो कभी भी बोर नहीं होते। और उसी फिल्म का ये गाना पिंटो ने मांगा है, तो आए प्ले करते हैं। अनुराधा पोडवाल गाएंगी, समीर ने इसे लिखा, अनु मलिक की कॉम्पोजिशन। बने रहिएगा इसी फ्रिक्वेंसी 107.1 एफएम रेनबो पर, बिकॉज वी आर म्यूजिकली योर्स। 1:40 को मिलते हैं आपसे।

श्रेया घोषाल, एम जी श्री कुमार की आवाजें आपने सुना। ये गाना भूल भुलैया इस फिल्म से समीर ने से लिखा, प्रीतम की कॉम्पोजिशन। आप सुन रहे हैं 107.1 FM रेनबो। शर्मीन संग शामिल हैं आप। हिट एंड हॉट ये प्रोग्राम चल रहा है जिसमें मैंने आपसे पूछा है कि कौन सी ऐसी मूवी है जो आप कितनी बारी भी देख लो आप बोर नहीं होते हो। इस सवाल का जवाब आपने देना है और इस जवाब के साथ ही अपनी सॉन्ग रिक्वेस्ट भेज देनी थी आपने 8657-66-1071 पर। तो ये गाने की रिक्वेस्ट हमें मीरा श्रीधर ने की थी और उन्होंने आंसर दिया था मेरे क्वेश्चन का। बहुत सारे ही उन्होंने मूवीज़ के नाम ले लिए हैं लेकिन स्पेशली उन्होंने 90s की फ़िल्मों का जिक्र किया है कि कितने ही हम एक्साइटेड होते थे उन फिल्मों की रिलीज़ पर या जो नए चेहरे आने वाले होते थे उनको देखने के लिए। और कुछ मूवीज़ जो वो बार बार देखना पसंद करती हैं उसमें से है मैंने प्यार किया, हम आपके हैं कौन, हम है राही प्यार के, दिल, बेटा, दीवाना मस्ताना, क्रांतिवीर वगैरह, कई सारे ये फिल्मों का उन्होंने जिक्र किया है। और हमें जो है बहुत से मैसेजेस आए हैं। अशोक पाटिल जी वर्ली से लिखते हैं कि सभी गाने अच्छे लग रहे हैं, किसी भी गाने में शामिल कर दीजिए, क्या बात है। फिरोज सिगनपुरिया जी ने हमें मैसेज किया है, वो कहते हैं कि ओल्ड मूवी अनारकली जो है वो मैंने कई बार देखी है। और मुझे मैसेज आया है दीपाली का अमरावती से, वो कहती हैं कि फिर हेरा फेरी ये जो फिल्म है वो मुझे देखने में बड़ा मज़ा आता है, तो उसी फिल्म का कोई गाना सुना दीजिए। तो आए सभी के लिए, कुछ लोगों के ऑफकोर्स टाइम बहुत कम है तो कुछ लोगों के गाने प्ले होंगे, कुछ के नहीं होंगे। तो जिनके आखिर

तक ना हो पाए, कितने अरमान दिल में रह जाएं, उससे पहले ये गाना आप सबके लिए ही हो जाए, है ना। हिमेश रेशमिया गाएंगे, समीर ने इसको लिखा, हिमेश रेशमिया की कॉम्पोजिशन है।

क्या बात है, सोनू निगम और राधा पुडवाल की आवाजें तुम बिन इस फिल्म से सुना आपने ये गाना। फायज अनवर ने इसे लिखा था, निखिल विनय की कॉम्पोजिशन। मुकेश जी ने इस गाने की रिक्वेस्ट की थी हिट एंड हॉट इस प्रोग्राम में और वो कहते हैं कि उन्हें तुम बिन ऐसी एक फिल्म है जो बार बार देखना बहुत पसंद है। मैंने आपसे हिट एंड हॉट में यही सवाल किया था कि कौन सी ऐसी फिल्म है जो आप जितनी बार ये देखो आप बोर नहीं होते हो। इस सवाल के जवाब के साथ ही अपनी सॉन्ग रिक्वेस्ट जो है वो भेज देनी थी। और हमें प्रमोद जी ने मैसेज किया है, वो कहते हैं कि मन एक ऐसी फिल्म है जिसको मैं कितनी बार भी देखूं तो बोर नहीं होता हूं। फिर हमें जो है भूषण पाटिल जी का मैसेज आया, वो कहते हैं कि बाहुबली 1 और 2 ऐसी फिल्म है जो वो बहुत बार देख चुके हैं लेकिन फिर भी बोर नहीं होते। राम प्रजापति जी ने वसई से हमें मैसेज किया था कि वो दिल तो पागल है वो फिल्म है जो बार बार देखना पसंद करते हैं और उसी फिल्म का ये गाना उन्होंने मांगा है। लता जी उदित नारायण की आवाज़ें, आनंद बख्शी साहब ने इसे लिखा, उत्तम सिंह की कॉम्पोजिशन। और इसी के साथ हिट एंड हॉट को यहीं रोकने का वक्त हो चला है। बहुत बहुत शुक्रिया आपके मैसेजेस का, कॉल्स का। मेरी आपकी मुलाकात अब जुलाई में होगी तो ख्याल रखिएगा आप सभी। मिलते हैं अगले महीने 2 बजे। आप इंग्लिश में समाचार न्यूज़ सुनेंगे, उसके बाद 2:15 बजे हिंदी में समाचार आएंगे और 2:30 बजे मराठी प्रोग्राम चला दोस्तों बोलू का ही। इस सब के लिए बने रहिएगा 107.1 FM रेनबो पर, बिकॉज वी आर म्यूजिकली योर्स। अब जा रही है शर्मीन, अपना ख्याल रखें सामीन।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पेरिस में फ्रांस के प्रमुख व्यापारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठकें कर रहे हैं। प्रधानमंत्री विवाटेक शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। केंद्र सरकार वित्त वर्ष 2026-27 में ग्रामीण क्षेत्रों में 18,900 करोड़ रुपए की लागत से 26,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण करेगी। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष द्वारा ऋतव्रत बनर्जी को विपक्ष का नेता नियुक्त करने के फैसले पर रोक लगाने से इनकार किया। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष विराम समझौता लागू, शांति वार्ता के लिए 60 दिन की समय सीमा तय। और भारत ने हॉकी FIH महिला नेशंस कप में उरुग्वे को 3-2 से हराकर सेमीफाइनल

0: प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। भारत फ्रांस आर्थिक और औद्योगिक सहयोग को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेरिस में फ्रांस के शीर्ष कारोबारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठकें कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी शाम को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ विवाटेक सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी सम्मेलन में कई उच्च स्तरीय कार्यक्रमों का नेतृत्व करेंगे। सम्मेलन का समापन प्रधानमंत्री के भाषण के साथ होगा। विवाटेक सम्मेलन यूरोप का सबसे बड़ा प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप कार्यक्रम है। विवाटेक सम्मेलन में इस बार भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पवेलियन है, जो भारतीय और यूरोपीय नवाचार तंत्र के बीच साझेदारी की अपार संभावनाओं को दर्शाता है। प्रधानमंत्री एक विशेष प्रवासी कार्यक्रम के दौरान भारतीय समुदाय के सदस्यों को भी संबोधित करेंगे। केंद्र सरकार वित्त वर्ष 2026-27 में ग्रामीण क्षेत्रों में 26,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण करेगी। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और संबंधित ग्रामीण संपर्क पहलों के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण के लिए 18,900 करोड़ रुपए से अधिक आवंटित किए गए हैं। ग्रामीण सड़क संपर्क परियोजनाओं की प्रगति का आकलन करने के लिए एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता ग्रामीण विकास विभाग के सचिव रोहित कंसल ने की। बैठक में आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और अन्य राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। राज्यों को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और पीएम जनमन के अंतर्गत लंबित परियोजनाओं पर तेजी से काम करने का निर्देश दिया गया है। इसमें विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूहों की बस्तियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार के 12 वर्ष विकास और विरासत के संगम का स्वर्णिम कालखंड रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि इस दौरान एक ओर श्रीराम मंदिर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और उज्जैन महाकाल लोक का निर्माण हुआ, तो वहीं दूसरी ओर विश्वस्तरीय कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर तथा मेक इन इंडिया जैसी पहलों ने देश की विकास यात्रा को अभूतपूर्व गति दी है। श्री शाह ने कहा कि 1 करोड़ अभिलेखों का डिजिटलीकरण, 668 प्राचीन कलाकृतियों की वापसी, 11 जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालयों की स्थापना और 11 भारतीय भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिलना स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि विकास और विरासत एक दूसरे के पूरक हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज राष्ट्रीय राजधानी में 3 दिवसीय जन कल्याण शिविरों का उद्घाटन किया। ये शिविर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के अभियान से प्रेरित हैं। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि इन शिविरों के माध्यम से पात्र नागरिक केंद्र और दिल्ली सरकार की विभिन्न योजनाओं से संबंधित जानकारी और लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
1: दिल्ली की जनता को अलग अलग विभागों द्वारा जितनी भी योजनाओं का लाभ मिल रहा है या केंद्र की जितनी योजनाओं के लिए वो एलिजिबल हैं, उन सारी योजनाओं के शिविर यहाँ पे सभी विभागों द्वारा लगाए गए हैं। सारी की सारी सुविधाएं अंडर वन रूफ यहाँ पे लोगों को मुहैया कराई जा रही है। पूरी दिल्ली में 42 जगह पे 3 दिन के ये शिविर 18, 19 और 20 तारीख के रहेंगे।
0: युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि पिछले एक दशक में भारत ने शिक्षा, कौशल विकास, उद्यमिता, खेल, स्वास्थ्य और नागरिक भागीदारी जैसे क्षेत्रों में युवाओं के लिए अवसरों का निरंतर विस्तार किया है। एक राष्ट्रीय दैनिक में प्रकाशित लेख में श्री मांडविया ने देश के युवाओं को अमृत पीढ़ी बताया, जो 2047 तक विकसित भारत की यात्रा का नेतृत्व करेगी। उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में युवा शक्ति का उपयोग अवसर सृजित करने, आकांक्षाओं को बढ़ावा देने और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने के लिए किया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष रथींद्र बोस द्वारा तृणमूल कांग्रेस के बागी विधायक ऋतव्रत बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष नियुक्त करने के फैसले पर अंतरिम रोक लगाने से इंकार कर दिया है। न्यायमूर्ति कृष्णा राव की एकल पीठ ने टीएमसी विधायक शोभन देव चट्टोपाध्याय की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये निर्देश दिया। श्री चट्टोपाध्याय ने नेता प्रतिपक्ष पद के लिए अपने नामांकन की अस्वीकृति और ऋतव्रत बनर्जी की नियुक्ति को चुनौती देते हुए याचिका दर्ज की थी। न्यायालय ने प्रतिवादियों को 3 सप्ताह के भीतर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश और याचिकाकर्ता को जवाब दाखिल करने के लिए अतिरिक्त 2 सप्ताह का समय दिया है। मामले की अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी। झारखंड की 2 राज्यसभा सीटों के लिए मतदान जारी है। मतदान शाम

0: 4 बजे तक चलेगा, मतगणना शाम 5 बजे होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से अपने गृह राज्य ओडिशा की 2 दिन की यात्रा पर रहेंगी। इस दौरान राष्ट्रपति मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में एम्स भुवनेश्वर द्वारा आयोजित स्वास्थ्य शिविर में शामिल होंगी। वे हाटबद्रा में ब्रह्म कुमारीज के मातृशक्ति भवन, एक विशेष सर्किट हाउस और रायरंगपुर पुलिस जिले का भी उद्घाटन करेंगी। शनिवार को राष्ट्रपति मुर्मू पहाड़पुर का दौरा करेंगी। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उपस्थित होंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री इस दौरान कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रायरंगपुर में एम्स भुवनेश्वर द्वारा आयोजित एक स्वास्थ्य शिविर का दौरा करेंगी। वह एक बड़ी इंटीग्रेटेड ग्रामीण पाइप आधारित जलापूर्ति परियोजना का उद्घाटन करेंगी, जिससे कुसमी ब्लॉक के अंतर्गत खनन से प्रभावित 113 गांव लाभान्वित होंगे। इस दौरान राष्ट्रपति सार्वजनिक बुनियादी ढांचा परियोजना का भी उद्घाटन करेंगी। राष्ट्रपति रायरंगपुर में ओडिशा सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ शामिल होंगी। प्रकाश दास की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
0: नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने आज बताया कि चेन्नई से चमड़े के सामान और ऑटो पार्ट्स सहित कई वस्तुएं लेकर पहला कार्गो विमान नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतर चुका है। हवाई अड्डे पर 2 दिन पहले ही वाणिज्यिक परिचालन शुरू हुआ था। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए न केवल कृषि उत्पादन बढ़ाना आवश्यक है, बल्कि खाद्यान्नों का सुरक्षित भंडारण और कुशल वितरण भी जरूरी है। श्री जोशी ने आज नई दिल्ली में भारतीय खाद्य निगम के स्मार्ट वेयरहाउसिंग सिस्टम के उद्घाटन समारोह में ये बात कही। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने सभी खाद्य व्यवसाय संचालकों को निर्देश दिया है कि वे खाद्य पदार्थों के रखरखाव और प्रसंस्करण के दौरान केवल जंग रोधी चाकू और काटने के अन्य उपकरणों का ही उपयोग करें। खाद्य नियामक के अनुसार ऐसे उपकरणों का उपयोग न करने से भोजन दूषित हो सकता है, जिससे उपभोक्ता सुरक्षा को खतरा है। दिल्ली सरकार ने 21 जून को होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी की पुनर्परीक्षा के लिए सभी 97 परीक्षा केंद्रों पर अभिभावकों और परिवार के सदस्यों के लिए कूलिंग जोन की व्यवस्था की है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इन कूलिंग जोन में बैठने की व्यवस्था, पीने का पानी, चाय, ORS, प्राथमिक चिकित्सा और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। परीक्षा के दिन परीक्षार्थियों के लिए DTC बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा भी प्रदान की गई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच एक ऐतिहासिक संघर्ष विराम समझौता लागू हो गया है। इससे व्यापक शांति समझौते पर बातचीत के लिए 60 दिन की समय सीमा तय हो गई है। स्विट्जरलैंड में होने वाली बैठक से पहले डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित 14 सूत्री समझौते में तत्काल संघर्ष विराम शामिल है। समझौते में ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर समाधान के लिए एक ढांचा तैयार किया गया है। समझौते के अंतर्गत अमरीका ईरान के बंदरगाहों से नौसैनिक नाकाबंदी हटाना शुरू करेगा और सामान्य समुद्री यातायात बहाल करने की दिशा में काम करेगा। ईरान 30 दिनों के भीतर होर्मुज जलडमरू मध्य से वाणिज्यिक जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करेगा।
2: अमेरिका और ईरान ने महीनों से जारी सैन्य टकराव को खत्म करने के मकसद से एक समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद औपचारिक रूप से एक नई कूटनीतिक प्रक्रिया शुरू की है। इस समझौते में तुरंत युद्ध विराम, होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने और शांति के लिए एक व्यापक समझौते पर बातचीत करने की बात कही गई है। अमरीका ने समुद्री प्रतिबंधों में ढील देने और प्रतिबंधों से राहत दिलाने की दिशा में काम करने का वादा किया है, जबकि ईरान ने फिर से कहा है कि वो परमाणु हथियार नहीं बनाएगा और अंतर्राष्ट्रीय निगरानी में अपने संवर्धित यूरेनियम के भंडार को लेकर जताई गई चिंताओं को दूर करने पर सहमत हुआ है। इस समझौते में आर्थिक पुनर्निर्माण और क्षेत्रीय सुरक्षा पर भविष्य में सहयोग के प्रावधान भी शामिल हैं। अब राजनयिकों के सामने अगले 60 दिनों के भीतर इस रूपरेखा को एक बाध्यकारी समझौते में बदलने का मुश्किल भरा काम है। हालांकि समर्थकों ने इस बड़ी कामयाबी का स्वागत करते हुए इसे पश्चिम एशिया में स्थिरता की दिशा में एक अहम कदम बताया है, लेकिन परमाणु सत्यापन, प्रतिबंधों को लागू करने और क्षेत्रीय सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर अभी भी काफी मतभेद बने हुए हैं। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: समझौते के अंतर्गत लेबनान में

संघर्ष विराम भी शामिल है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोर ने बताया कि दोनों नेताओं ने आतंकवाद से निपटने, नागरिकों को नशीले पदार्थों और अवैध मादक पदार्थों से बचाने, सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने और अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए दोनों देशों के बीच सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आज नई दिल्ली में 2027 की हज यात्रा की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। श्री रिजिजू ने 2026 की हज यात्रा को भारत के इतिहास की सबसे सफल यात्रा बताया। उन्होंने कहा कि भारत को 2026 की हज यात्रा के लिए सऊदी अरब के हज और उमराह मंत्रालय से 2 लब्बैतुम पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में कल रात एक सड़क दुर्घटना में 7 लोगों की मौत की खबर है। मृतकों में 4 पुरुष और 3 महिलाएं शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि यह हादसा लगभग रात 2 बजे हुआ। शुरुआती जांच के मुताबिक दुर्घटना वाहन के अनियंत्रित होकर खाई में गिरने से हुई। हॉकी में भारत ने आज न्यूजीलैंड में आयोजित FIH महिला नेशंस कप में उरुग्वे को 3-2 से हरा दिया। भारत ने पूल ए में शीर्ष स्थान हासिल कर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला 20 जून को चिली और कोरिया के बीच होने वाले मैच के विजेता से होगा। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में कोलंबिया ने आज सुबह उज्बेकिस्तान को 3-1 से पराजित कर दिया। इससे पहले घाना ने पनामा पर 1-0 की रोमांचक जीत दर्ज की और इंग्लैंड ने क्रोएशिया पर 4-2 की जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। आज रात ग्रुप ए में चेक गणराज्य का मुकाबला दक्षिण अफ्रीका से होगा। दूसरे मुकाबले में मैक्सिको और दक्षिण कोरिया आमने सामने होंगे। घरेलू शेयर बाजारों में आज मामूली बढ़त देखी गई। समाचार तैयार किए जाने तक सेंसेक्स 158 अंक बढ़कर 77,314 पर और निफ्टी 41 अंक बढ़कर 24,127 पर कारोबार कर रहा था। अब जानकारी मौसम की। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 4 से 5 दिनों तक तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई हैं। विभाग ने असम, मेघालय, सिक्किम और पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों में अगले 4 दिनों तक तेज वर्षा जारी रहने की संभावना व्यक्त की है। अरुणाचल प्रदेश, बिहार, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में अगले 2 दिनों में मूसलाधार वर्षा हो सकती है। दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, ओडिशा और उत्तरी कर्नाटक के आंतरिक हिस्सों में सोमवार तक गरज के साथ आंधी की आशंका है। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेरिस में फ्रांस के प्रमुख कारोबारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठकें कर रहे हैं। प्रधानमंत्री विवाटेक शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। केंद्र सरकार वित्त वर्ष 2026-27 में ग्रामीण क्षेत्रों में 18,900 करोड़ रुपए की लागत से 26,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण करेगी। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष द्वारा ऋतव्रत बनर्जी को विपक्ष का नेता नियुक्त करने के फैसले पर रोक लगाने से इंकार किया। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष विराम समझौता लागू, शांति वार्ता के लिए 60 दिन की समय सीमा तय। और भारत ने हॉकी FIH महिला नेशंस कप में उरुग्वे को 3-2 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

नंदन वंदन अभिनंदन, मैं गीतिका उनियाल संदेश टू सोल्जर्स के आज के संग में आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। यह हमारे लिए हमेशा ही हर्ष की बात है कि हमारे स्टूडियो में आमंत्रित हमारे मेहमान हमें कुछ ऐसा दे जाते हैं जो ना केवल एक याद होता है लेकिन हमारे लिए एक पग होता है आगे चलने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, देश के प्रति अपनी सद्भावना को दिखाने के लिए। और हम हमेशा यही कहते हैं कि संदेश टू सोल्जर्स के अपने इन एपिसोड्स के माध्यम से हम घर घर तक पहुंचते हैं, हर उस घर तक जहां से एक वीर निकलता है, जहां से एक सिपाही निकलता है, जहां से माँ ये कहती है कि जा बेटा निकल, तुझे अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना है, कभी पीछे मुड़कर मत देखना, तेरी माँ वहीं तेरे लिए खड़ी है तेरी आस में, लेकिन तुझे सर्वप्रथम भारत माता के लिए, चाहे फिर तेरे

0: अपने प्राणों का निछावर क्यों ना करना हो, तुझे हमेशा हमेशा देश की गौरव के लिए, समृद्धि के लिए काम करना है, कर्तव्यों का निर्वाह करना है। और आज इसी कड़ी में हम आप सभी से साझा करना चाहते हैं, हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, आमंत्रित हैं कर्नल कुंवर वरुण सिंह तरवर, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर, थल सेना से सेवानिवृत्त अधिकारी कर्नल वरुण सिंह तनवर, जिन्हें 2023 में माननीय राष्ट्रपति द्वारा विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया। तो आइए सर्वप्रथम हम स्वागत करते हैं हमारे आज के मेहमान कर्नल कुंवर वरुण सिंह तनवर जी का। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर।
1: थैंक यू सो मच कीतिका, एंड थैंक यू टू ऑल द व्यूअर्स लिसनर्स हु हैव कम इन।
0: जी, जैसा कि मैंने कहा कि हम घर घर तक पहुंच रहे हैं, हर घर से एक वीर निकलता है, एक सिपाही निकलता है, अधिकारी बनता है, देश के लिए समर्पण की भावना लिए वो यही सोचता है कुछ भी हो जाए, लेकिन देश की आन बान और शान के लिए हमेशा हमेशा अपने कर्तव्यों का निर्वाह करता रहूंगा। लेकिन वो फैसला लेना कि मैं देश के लिए अपने आप को समर्पित करना चाहता हूँ, मैं आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन करना चाहता हूँ, तो सबसे पहले ये भावना अपने मन में उत्पन्न करना कि देश के लिए अपने आप को समर्पित करना है। आपके मन में ये भावना कैसे उत्पन्न हुई कि मुझे भी देश के लिए काम करना है? क्योंकि जिस वक्त ये फैसला लिया होगा निश्चित रूप से बहुत छोटी उम्र के रहे होंगे आप।
1: बिल्कुल गीतिका जी, मैं एक सैनिक परिवार से हूँ। मेरे नाना जी मेजर नाथन सिंह, वो फर्स्ट राजपूत जो कि अभी फोर गार्ड्स है उसमें थे, सेकंड थर्ड जीआर में भी थे। मेरे फादर खुद कर्नल गजराज सिंह आर्मी सर्विस कोर में थे। और मैं वैसे हरियाणा का रहने वाला हूँ, हमारा मेरा गांव है जाटू लोहारी भिवानी में
0: जी।
1: वहाँ से भी एक एक एक वो है, ट्रेडिशन है कि सारे बच्चे फौज में जाएं। और इन्हीं को देखते हुए मेरा हमेशा मन रहा है कि मैं फौज में जाऊँगा। और मैंने सिर्फ एक ही कॉम्पिटेटिव एग्जाम दिया था, वो भी राष्ट्र रक्षा अकेडमी का, अपने फादर की यूनिफॉर्म, अपने ग्रैंडफादर की यूनिफॉर्म को देख के उसी से मैं मोटिवेट हुआ और मैंने अपना जीवन सेना को समर्पित कर दिया।
0: वाह, क्या बात है, क्या बात है। तो जब पिताजी को आपने कहा कि मैं जाना चाहता हूँ, और जब उस वक्त फॉर्म भरा होगा, जब सिर्फ एप्लीकेशन दायर की गई होगी, तो उस वक्त घर में माहौल कैसा था?
1: देखिए, हालांकि हम फौजी परिवार से हैं, लेकिन कोई माँ, किसी माँ को ऐसा नहीं लगता कि मेरा बेटा मेरे को छोड़ के चले जाए। तो ये बातचीत तो हुई थी, लेकिन अपने मन पे शायद पत्थर रख के मेरी माँ ने खुशी खुशी मेरे को एनडीए भेजा। मेरे को याद है मेरे सिलेक्शन के बाद हम तीन लड़के थे जो कि साथ में एनडीए की तरफ गए, और रेलवे स्टेशन पर सभी की माएँ हमको बाय बाय करने आई। शायद दो माएँ रो रही थी, लेकिन मेरी माँ हंसते हंसते उनको उन्होंने मेरे को अलविदा किया एनडीए की तरफ।
0: वाह, क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत बात है। एक माँ की पुकार एक माँ ही सुन सकती है। जब भारत माता की बात होती है तो उसकी आवाज़ ना सिर्फ एक माँ के दिल तक ही पहुँच सकती है, इसीलिए वो अपने बच्चे को तैयार करती है, बोलती है जाओ अब पीछे मुड़कर मत देखना। अच्छा, ये बताइए कि जब आप स्कूल में थे और आपने उस वक्त निर्णय लिया कि अब आर्म फोर्सेज जाना है, साथ में बहुत सारे दोस्त होंगे, क्या उनमें भी यही भावना थी? और जब आपका सिलेक्शन हुआ तो किस तरह से आपको उन्होंने, कहते हैं ना, अपना प्यार कैसे बरसाया?
1: मैं आर्मी पब्लिक स्कूल धौलकुआं, टैप्स बोलते हैं उसको, धौलकुआं का पढ़ा लिखा हूँ, जहाँ पे अधिकतर सेना के, आर्मी नेवी एयरफोर्स के बच्चे ही पढ़ते हैं। तो काफ़ी जोश था उस टाइम पर, 92-93 की बात कह रहा हूँ मैं, बच्चों को एनडीए ज्वाइन करने का। और हम तीन चार लड़के सिलेक्ट हुए थे एनडीए में, मैं उनमें से एक था, तो पूरे स्कूल में नाम हुआ। इसके अलावा मैं थोड़ा गोलू मोलू था अपने 12th क्लास में, और जब उन्होंने मेरे को देखा एनडीए जाते हुए, उस टाइम पर मेरे को वजन घटाना पड़ा, तो काफ़ी अचंभित हो गए मेरा मोटिवेशन देख के, कैसे मैंने इतना वजन घटाया। और जब मैं उसके बाद अपने दोस्तों से मिलता हूँ तो वो देखते हैं कि कैसे ये एक मामूली सा बच्चा एक अफसर बन गया।
0: वाह, क्या बात है, क्या बात है। जब आप ऑफिसर बने तब अलग तरीके से आपको लिया गया होगा, कि उनका हीरो उनके बीच में था, तो उस वक्त वो उन्होंने आपको बहुत प्रेस किया होगा, पूछा होगा कि क्या हम भी जा सकते हैं आर्म्ड फोर्सेस, ऐसा कुछ हुआ?
1: देखो, जाना तो काफ़ी लोग जाते थे, ये मेरे को हर बच्चा जो कि APS से होता है तकरीबन कोशिश तो करता है बट हो नहीं पाता, तो काफ़ी प्रेज

0: में भी छोटा हूँ और स्कूल में भी मेरे अच्छे दोस्त थे, मैं काफ़ी शरारती था। मेरे मेरे ट्वेल्थ ए की बात कर रहा हूँ, अगर कोई मेरे ट्वेल्थ ए वाला सुन रहा है तो, काफ़ी शरारती था मैं, लड़कों लड़कियों को दोनों को तंग करता था छोटी मोटी बातों के लिए। कभी कभी उनका टिफिन खा जाता था, गोलू मोलू तो था ही मैं, पर मैं काफ़ी लोकप्रिय था। मेरे अच्छे दोस्त हैं और कुछ हैं जो अभी भी मेरे ख्याल में 30-35 साल बाद मेरे टच में हैं, चाहे वो फेसबुक पे हो चाहे व्हाट्सएप पे हो, हम उनसे बात करते रहते हैं। जो जो रिश्ते स्कूल में बने वो अभी तक बरकरार है।
1: अच्छा ये बताइए, शैतानियों का ये दौर क्या एनडीए तक जारी रहा या वहां पर आप एनडीए खड़कवासला वहां एंटर करते साथ ही डिसिप्लिन बॉय बन गए? आर्मी का तो काम नहीं है या आर्म फोर्सेस का कि आपसे आप में से एक ऑफिसर बनाना है, लेकिन एक यंग बच्चा जब आर्म फोर्सेस ज्वाइन करता है या पहले एनडीए एंटर करता है तो उस वक्त उसके सोचने का तरीका सब कुछ अलग होता है, आचार व्यवहार। तो शैतानियों का वो दौर वहाँ चला या फिर वहीं जाकर एंटर करते साथ ही सुधर गए?
0: शैतानियों का दौर तो एनडीए में भी चला। शुरू शुरू में जब एनडीए पहुँचे तो एनडीए की जो फिजिकल एक्टिविटी होती बहुत कठिन होता है, बहुत डिसिप्लिन होता है। हालांकि मैं फौजी बैकग्राउंड से था लेकिन मैं तैयार नहीं था कि एनडीए में कितना आपको रगड़ा लगता है, कितना डिसिप्लिन, तो उसके चलते थोड़ा शरारत करने का मन तो करता है। और मेरे को लगता है इसीलिए ये जितने भी हमारे इंस्ट्रक्टर्स होते हैं, ऑफिसर हों चाहे ड्रिल उस्ताद हों, वो खड़े रहते हैं हमको ये शरारत करने में रोकने के लिए। एनडीए में मन चंचल होता है, आप सिलेक्ट हो गए होते हो, एनडीए में पहुंच जाते हो, आपको लगता है आप यहाँ के आप ही राजा हो, लेकिन फौज के लिए एक अलग किस्म का डिसिप्लिन चाहिए। टाइम पर उठना, टाइम पर काम करना, टाइम पर हर चीज़ करना, वो डिसिप्लिन ये हमारे इंस्ट्रक्टर्स जो हैं, हमारे कोस्टमेट्स होते हैं, कुछ कुछ हमारे स्क्वाड्रन सीनियर्स होते हैं, वो हम में लाते हैं।
1: वाह क्या बात है। तब भी कहते हैं कि हम आपसे अधिकारी बनाएंगे, आप में से ही उस अधिकारी को निकालेंगे, उस ऑफिसर को बनाएंगे जो कल चलकर देश के लिए अपनी सेवाओं को देगा। तो निश्चित रूप से एनडीए ने आपका फॉर्मेशन किया, आपके व्यक्तित्व का निर्माण किया। एनडीए के उपरांत, एनडीए के बाद फिर आगे कहाँ, किस ओर रुख किया आपने, कब कमीशन हुए और एनडीए की सीधे बाद पोस्टिंग मिली या फिर आगे ट्रेनिंग का दौर चला?
0: एनडीए के 3 साल के बाद 1 साल के लिए मैं इंडियन मिलिट्री एकेडमी गया, देहरादून में स्थित है इंडियन मिलिट्री एकेडमी, जो कि बहुत ही पुरानी 1930s की एकेडमी है। वहाँ से मैंने कमीशन पाया रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी में, मेरी रेजिमेंट है 93 फील्ड रेजिमेंट, जिसको मैंने कमांड भी किया। और कमीशन होते ही मेरी रेजिमेंट उस समय कश्मीर में तैनात थी। और इमेजिन मेरी किस्मत कितनी अच्छी, मैं पैदा भी कश्मीर का हुआ हूँ और मेरी पहली पोस्टिंग भी कश्मीर में थी, तो मेरी जन्मभूमि और कर्म भूमि दोनों ही कश्मीर बन गए। मेरी रेजिमेंट ने बहुत अच्छा काम किया उस टाइम पे, 93 फील्ड रेजिमेंट को चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ कमेंडेशन कार्ड मिला, क्योंकि काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन में हमने बहुत अच्छा काम किया। और उसी में मैं अपनी रेजिमेंट के रंग में रंग गया और आगे मेरा सफ़र 93 फील्ड रेजिमेंट और तोपखाना आर्टिलरी जिसको कहते हैं उसमें शुरू हुआ।
1: वाह क्या बात है, क्या बात है। तो जब एक पूर्ण रूप से अधिकारी बनके पीछे मुड़कर देखा तो क्या कभी सोचा था कि जो आज सब कुछ महसूस कर रहा हूँ शायद वो महसूस ना कर पाता अगर यहाँ ना होता?
0: बिल्कुल बिल्कुल, मैं जब अपनी जिंदगी के बारे में सोचता हूँ तो मेरा निर्णय, मेरा बैकग्राउंड जिसकी वजह से मैं एनडीए गया, एनडीए में मेरा स्क्वाड्रन हंटर स्क्वाड्रन, मेरे कोस्टमेट्स हंटर स्क्वाड्रन के या अलग और कोस्टमेट्स हैं, आईएमए में मेरा जोजिला कंपनी, मेरा जोजिला कंपनी के जो मित्र हैं, और मेरी रेजिमेंट 93 फील्ड रेजिमेंट, इनका बहुत ही बड़ा हिस्सा रहा है जो आज मैं जिस मुकाम पे हूँ, जो मेरे एक्सपीरियंसेस रहे हैं, जो मेरा वेल्थ ऑफ नॉलेज मैंने इकट्ठा किया है, वो सब इनकी वजह से है। अगर मैं ये शायद नहीं करता तो शायद मेरी जिंदगी इतनी फुलफिलिंग नहीं हुई होती।
1: वाह क्या बात है। अच्छा एक बात बताइए, और माँ से दूर हुए कुछ दिन तो बड़ा खराब लगता होगा, रोना भी आता होगा, माँ से बात भी नहीं हो पाती होगी, तो ऐसे में क्या करते थे?
0: आप दुखती रख पे मेरे हाथ रख दिया।
1: मैं आज बच्चे के लिए माँ बहुत महत्वपूर्ण है।
0: 2-3 दिन पहले ही मैं इसके बारे में सोच रहा था कि कैसे एनडीए में रात को, अच्छा तो मैंने एक फोटो एल्बम लेके गया था मैं,
1: अच्छा,
0: जिसमें मेरे भाई के, मेरी मदर के, फादर के पुराने फोटोज थे उस टाइम पे, तो मतलब नए फोटो थे। तो रात को जब मेरे को याद आती तो मैं फोटो देखता था एंड शायद 1-2 बार शायद रोने को भी हो गया हूँ, रोया नहीं हूँ, बट देख के ऐसा लग रहा था कि भाई मेरी माँ किसी तरह मेरे को उठा के वापस ले आओ,
1: ले जा ले, ग्रिल लगा ले।
0: 5 महीने का टर्म होता है

0: जून टू नवंबर, बस फिर वो वेट करते करते कि कैसे दिसंबर होगा और कैसे मैं घर जाऊंगा, उसी में समय निकल जाता है।
1: वाह क्या बात है। तो माँ का जो प्यार है वो तो हमेशा,
0: हमेशा
1: हमेशा आपके साथ रहता है, कहीं ना कहीं वो जितनी बार आप गिरते हैं ना आपको उठने भी मदद करता है,
0: मदद करती है।
1: आप
0: मेरी माता जी बहुत ही स्ट्रांग, अभी 75 की हैं, शी इज वेरी स्ट्रांग, और मेरे को लगता है मेरे में जो भी मनोबल आत्मविश्वास आया है, अ लॉट हैज गॉट टू डू विद माय मदर, क्योंकि वो हमेशा, मैंने उनको हंसते हुए कोई भी प्रॉब्लम से आराम से उभरते हुए देखा है, उनको कभी मैंने रोते हुए नहीं देखा। एक बार जब उनकी मदर पास अवे हुई थी उसी टाइम पे मैंने उनको रोते हुए देखा, वरना मैं उनको कभी रोते हुए नहीं देखा। ऐसी बहुत कम माएँ होंगी
1: जी
0: जिन्होंने, तो शी गिव्स मी अ लॉट ऑफ इंस्पिरेशन
1: जी। कहीं ना कहीं अगर आपके व्यक्तित्व की बात की जाए तो आर्म्ड फोर्सेस के अलावा माँ का बहुत बड़ा योगदान रहा है, और कहा जाता है कि बच्चे का भाग्य उसकी माँ द्वारा निर्मित होता है। तो निश्चित रूप से आप और आप जैसे सभी ऑफिसर्स अधिकारी जो देश के लिए अपने आप को न्यौछावर कर देते हैं, अपने प्राणों तक का त्याग देते हैं, उन सभी माओं को सलाम है जो कहीं ना कहीं हर बार ये कहती हैं कि जाओ जीतो जंग। कोई एक ऐसा नगमा जो आपके दिल के बहुत ज्यादा करीब हो, यहां मैं प्ले करना चाहूंगी।
0: तो जब माँ के बारे में बात आती है तो एक वो गाना है लुक्का छुपी बहुत हुई,
1: जी जी जी,
0: वो बहुत ही बेहतरीन गाना है। एंड हाँ। वो पिक्चर भी ऐसी है कि एकदम आमिर खान की पिक्चर है, जो आपको याद होगा मेरे ख्याल में।
1: जी जी, जिस तरह से जो मुद्दे उसमें उठाए
0: बहुत ही अच्छे मुद्दे थे। एंड आई थिंक वहीदा रहमान जी अपने, जब उनका कफन वापस आता है उसको देख के वो गाना गाती हैं, जो फाइटर पायलट बचे थे उनके
1: जी।
0: एंड मेरे जितने भी एयरफोर्स कोस्टमेट्स हैं जिन्होंने देश के नाम अपने जान निछावर कर दी है, उनके लिए ये गाना और देश की सारी माओं के लिए गाना।
1: वाह क्या बात है, बहुत ही प्यारी बात आपने यहाँ पे कर दी है। और ये गाना भी उतना ही प्यारा है जो एक माँ के दिल के जज्बात और उसके जज्बात देश प्रेम से जुड़े हुए हैं। लेकिन माँ तो माँ होती है ना, उसके पास रहोगे तब भी याद करेगी, दूर हो जाओगे तब भी याद करेगी। तो उन सभी माओं को यहाँ पर कर्नल तन्वर ने यहाँ पर एक तरीके से सलामी दी है। माँ को सलाम करना निश्चित रूप से हर व्यक्ति को अपनी निजी जिंदगी में करना चाहिए। सो वी आर प्रिविलेज टू हैव कर्नल तन्वर ओवर हियर हु हैज सच काइंड ऑफ, ये कहूँगी मैं, सोच है जिसके पास, जो अपनी माँ के लिए सोच सकता है वो देश की सभी माओं के लिए सोच सकता है।

0: आप सभी का स्वागत है प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर्स में। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त गीतिका उनियाल, और आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं कर्नल कुंवर वरुण सिंह तनवर। और किससे बात करने के बाद ना जाने कहते हैं कि स्मृति के पन्नों को जब पलटा जाता है ना तो लगता है कि कुछ कहानियां हम जैसी हैं। और कर्नल कुंवर वरुण सिंह तनवर से बात करते हुए ना जाने कितने फौजी जिस वक्त हमें सुन रहे होंगे वो यही कह रहे होंगे कि जब हम अपनी किताब की स्मृति पन्नों को पलट रही हैं तो कर्नल तनवर को सुनने के बाद वो सारी बातें याद आ रही हैं, क्योंकि आपने जीवन के उन पहलुओं को यहाँ पर उजागर कर दिया। खासतौर पर जब एक बच्चा एनडीए जाता है और उसके बाद फिर आर्म्ड फोर्सेस के माध्यम से वो देश के लिए अपनी सेवाएं देता है, लेकिन कहते हैं कि कुछ कारवां बहुत जल्दी शुरू हो जाते हैं और आपके लिए आपके घर में ही वो माहौल बन चुका था। एक बात बताइए कर्नल तनवर, मुझे पिताजी की यूनिफॉर्म कितना फैसिनेट करती थी आपको, क्योंकि आप रोज पिताजी को देखते होंगे उस यूनिफॉर्म में, तो उस यूनिफॉर्म ने कहीं ना कहीं आपके दिल में क्या वो जगह बना दी थी?
1: बिल्कुल, इनफैक्ट मेरे को बहुत ही डिस्टिंक्ट मेमोरी है। मैं थर्ड क्लास में था, थर्ड स्टैंडर्ड में, फिरोजपुर में मेरे फादर पोस्टेड थे, और एक दिन वो स्कूटर था उस टाइम पे हमारे पास, स्कूटर में आम लेके आए थे, आम छोड़ के वापस ऑफिस जा रहे थे। तो मैंने उस टाइम पे मेरे को ध्यान आया जिस जो यूनिफॉर्म उन्होंने पहन रखी थी, मेरे को लगा हाँ मैं भी यही यूनिफॉर्म पहनूंगा। और तब से ही मेरा ये जज्बा रहा है। जैसे मैंने आपको बताया, एक ही एग्जाम दिया मैंने एनडीए का, और बारहवीं के बोर्ड एग्जाम से पहले ही मैंने सब क्लियर करके बैठा हुआ था। सो दैट मोटिवेशन मेरे पिताजी से ही, और वो फैसिनेशन यूनिफॉर्म का मेरे नाना और मेरे पिताजी से ही आया।
0: वाह क्या बात है। अगर अब आपके कार्यकाल की बात की जाए तो 26 सालों का ये जो सफर है, सफर नहीं हम कहेंगे इसको, हम कहेंगे ये तो कहीं ना कहीं आपके विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था, क्योंकि व्यक्तिगत तौर पर हम किसी भी संस्था से जुड़ते हैं तो वो संस्था कहीं ना कहीं हमारा विकास करती है। हम अपनी सेवाएं देते हैं, निश्चित रूप से हम भी कुछ अर्जित करते हैं, और सेवानिवृत्ति के बाद भी आपको महसूस हो रहा होगा, जैसा कि कहा जाता है वंस एन ऑफिसर इज ऑलवेज एन ऑफिसर, तो आज भी वो फीलिंग, वो अनुभूति विद्यमान है, आई एम स्टिल एन ऑफिसर। क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपके बात करने के तरीके, जिस तरह से मैं आपसे बात कर रही हूँ, आपका जो बैठने का पोस्चर है, I can well predict, yes, I'm talking to an officer. और कहीं ना कहीं आप जो रोजमर्रा की जिंदगी में काम भी कर रहे होंगे, कहीं ना कहीं फीलिंग अभी भी साथ होगी।
1: बिल्कुल गीतिका, मेरे को हालांकि मैंने यूनिफॉर्म पहनना छोड़ दिया है, लेकिन मेरा सोच विचार, मेरे मोटिवेशंस, मेरे बिलीफ्स बिल्कुल चेंज नहीं हुए। फौज में जो सिखाया गया है वो बहुत अच्छी चीज सिखाते हैं, वो एक इंसान को हमेशा ठीक चीज ही करने को बुलाते हैं। आर्मी में बोलते हैं चूज द हार्डर राइट देन द इजियर रॉन्ग, और उसी वही ट्रेनिंग को मैंने अपने रिटायरमेंट के बाद मान रखा है, और मेरे को ऐसा नहीं लगता कि कभी फौज मेरे को छोड़ सकेगी। हालांकि मैं यूनिफॉर्म नहीं पहनूंगा, मेरे यार दोस्त, मेरा सोच विचार, मेरा देश प्रेम, मेरे रेजिमेंट की तरफ मेरा प्रेम, मेरे स्क्वाड्रन की तरफ मेरा प्रेम ऐसा है कि मैं मरते दम तक शायद फौजी ही रहूंगा।
0: वाह क्या बात है, बहुत खूबसूरत। वो कहते हैं कि रग रग में जितने कतरे जो है लहू के बह रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं भारतीय सेना का बहुत बड़ा योगदान है, और आप जी रहे हैं उसे आज भी। लेकिन अगर स्मृति के पन्नों को फिर पलटा जाए और आपके उन मिशंस की ओर रुख किया जाए जिन्होंने कहीं ना कहीं आपके जहन में, आपके दिल में एक घर बना रखा है, खुद भी याद करते होंगे, अकेले बैठते होंगे, इंट्रोस्पेक्शन करते होंगे, तो स्मृति पल आपको याद आते होंगे जहां जिंदगी के टफेस्ट डिसीजंस लिए गए, कौन से मिशंस थे जो दिल के बहुत ज्यादा करीब हैं?
1: तो आई थिंक एक सबसे पहला जो मेरा मोटिवेटिंग इंस्टेंस रहा है वो मेरी स्क्वाड्रन में रहा है, हंटर स्क्वाड्रन में, मतलब कमीशन के बारे से पहले ही बात कर रहा हूं मैं, और ये शायद फोर्थ टर्म था, और हंटर स्क्वाड्रन एक स्क्वाड्रन होती है जिसमें जो बोलते हैं बहुत मुश्किल स्क्वाड्रन है, वहाँ पे फिजिकल कार्रवाई बहुत ज़्यादा करते हैं। उस टाइम पे 12 स्क्वाड्रन्स होती थी, तो 12 में से सबसे टफ स्क्वाड्रन बोलते थे हंटर स्क्वाड्रन, और हंटर स्क्वाड्रन में 1.5 साल हो गए थे हमको, और हमने कोई ट्रॉफी नहीं जीती थी, मतलब कोई चैंपियनशिप हमने नहीं जीती। खूब मेहनत करते थे हम भी, सुबह शाम दिन रात, सुबह 4 बजे भी, रात को 12 बजे भी, फिर हम, लेकिन हमारे पास ट्रॉफी नहीं आती थी। फिर किसी तरह मेहनत करके सब चीज़ें इकट्ठा हुई, हमको रियलाइज़ हुआ कि सिर्फ अंधाधुन भाग दौड़ करने से हम जीत नहीं पाएंगे, हमने कुछ दिमाग लगाया, और फिर हमने एक ड्रिल कॉम की ट्रॉफी जीती, और उस ड्रिल कॉम ट्रॉफी जीतने के बाद हमने एक गाना, तब मशहूर होता था यहाँ के हम सिकंदर, उस गाने पे कर तकरीबन 2-3 दिन हमने बस उसी गाने पे डांस किया, क्योंकि हमको ऐसा लगा कि हमारा जो 1.5 साल का परिश्रम है, तपस्या है, वो फाइनली पूरी हुई। तो उससे उससे मेरे को जिंदगी में बहुत सीख मिली कि कैसे कैसे अपने अपनी मेहनत को एक तरफ चैनलाइज करके, जीत की तरफ चैनलाइज करके जीत हासिल करना।
0: वाह क्या बात है, अगर आपने उस नगमे की बात यहाँ पे की है तो क्यों ना उसी नगमे को हमारे लिसनर्स तक ज़रूर पहुँचाया जाए और आगे का कारवां आप ही की ज़ुबानी हम सुनेंगे, क्योंकि भी बहुत कुछ है कर्नल तनवर से सुनने के लिए। बने रहिए, टिके रहिए और सुनते रहिए संदेश टू सोल्जर्स।

0: संदिष्ट सोल्जर्स के आज के इस अंक में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त गीतिका उनियाल और आज हमारे साथ स्टूडियो में है कर्नल कुंवर वरुण सिंह तनवर। और कर्नल तनवर को सुनने के बाद ना मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि ना जाने में कितनी ही लोगों की कहानियां एक साथ पढ़ रही हूँ, एक साथ सुन रही हूँ, क्योंकि जो ताना बाना कर्नल तनवर ने यहाँ पिरोया है ना, आपके बहुत सारे बैचमेट्स कोर्समेट्स कहीं ना कहीं अगर वो सुन रहे होंगे या आगे चलकर हमें YouTube के माध्यम से सुनेंगे तो वो यही कहेंगे कि जैसे आपने उनके दिल की व्यथा कह दी। कहते हैं कि सबकी अपनी अपनी जर्नी होती है, लेकिन यहाँ गंतव्य डेस्टिनेशन एक है और वो है देश प्रेम, देश के लिए अपने आप को समर्पित कर देना। सेवाओं में रहते हुए यानी कि भारतीय सेना में आपका जो योगदान है वो अतुलनीय है, लेकिन वो एक मिशन जो आपके दिल के बहुत ज्यादा करीब है, क्या उसको आप यहाँ पे साझा करना चाहेंगे? कोई कैसा मिशन जिसके बारे में बार बार जब आप सोचते हैं तो कभी शायद आंखों में आंसू भी आते हो, दिल भर भी जाता हो, लेकिन गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है।
1: 97 जून में मैं कमीशन हुआ और 1999 जून दो साल बाद कारगिल की लड़ाई छिड़ चुकी थी। उस टाइम पे हम सब दो साल के यंग ऑफिसर्स थे और कारगिल की लड़ाई बहुत ही कठिन लड़ाई थी। पहाड़ चढ़ने पड़ते थे, लीड फ्रॉम द फ्रंट, जो हमको बचपन से सिखाया गया एनडीए में कि आप आगे आगे चलेंगे। तो उस समय मेरे काफ़ी कोर्समेट्स ने अपने जान देश के लिए निछावर कर दी। उसमें मेरे एक मेरे क्लासमेट भी थे जो मेरे साथ स्कूल में थे, यहीं पे APS धौलाकुआ में, अनुज नैयर, मेजर अनुज नैयर, जिनको महावीर चक्र से सम्मानित किया गया, परमवीर चक्र भी हैं मेरे कोर्समेट मनोज पांडे। तो कई कोर्समेट्स थे जिन्होंने अपनी जान देश के लिए निछावर कर दी और आप उनके साथ कॉलेज में थे। आप अगर इंडिया को कॉलेज माने तो जब आप उनका नाम पढ़ते हैं तो आपको उस टाइम पे तो बहुत ही कोई भी चीज़ आपको इसके लिए तैयार नहीं कर सकती कि जब आपका एक चहिता हालांकि देश के लिए देश के काम में चला गया लेकिन आप कभी इसके लिए तैयार नहीं हो सकते। तो कारगिल की का जो युद्ध था वो शायद हम सब कोर्समेट्स के लिए एक बहुत ही डिफाइनिंग मोमेंट था जिसने हमको असली जिंदगी के बहुत पास लाके खड़ा कर दिया, लड़ाई के पास लाके खड़ा कर दिया और हमने उस युद्ध में विजय पाई। उस विजय दिवस हम मनाते हैं, कारगिल विजय दिवस भी मनाते हैं। तो हमारे कोर्स ने जो उसमें सैक्रिफाइसेस दी वो रंग लाई, हमने जो पाकिस्तान के घुसपैठी थे उनको मार गिराया, खदेड़ दिया, हिंदुस्तान से वापस भिजवा दिया। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी जिसमें मेरे कोर्स 90th NDA 100 रेगुलर का बहुत बड़ा हाथ है। तो वो शायद एक ऐसा मिशन था जो हमेशा मेरे दिल के पास रहेगा।
0: जी, आपके लिए गौरवपूर्ण पल था कि आप वहाँ साक्षात कारगिल युद्ध में अपनी सहभागिता निभा रहे हैं, बड़े बड़े डिसीजंस ले रहे हैं, क्योंकि कहते हैं कि सिर्फ निर्णय तो होते हैं, आउटपुट रिजल्ट्स तो बाद में पता लगते हैं जब निर्णय सामने आते हैं, लेकिन उस क्षण जब एक ऑफिसर एक निर्णय ले रहा होता है उस वक्त उसके मन में क्या होता है, क्या सोचता है?
1: सारे जो निर्णय इन परिस्थितियों में अफसर लेता है उसमें सबसे पहले वो अपने देश के बारे में सोचता है, मिशन, कि मेरा मिशन क्या है, ये करने से क्या मेरा मिशन अकम्प्लिश होगा और क्या मेरे देश को विजय मिलेगी कि नहीं मिलेगी। उसके बाद अगर उसमें उस में खड़ा हुआ वो डिसीजन, तो उसके बाद कि भाई मेरे जो जवान है, मैं एक लीडर हूँ, मेरे नीचे जितने भी जवान हैं, जो मेरा कमांड है, चाहे वो एक सेक्शन हो, चाहे एक प्लाटून हो, चाहे कंपनी हो, चाहे एक बटालियन हो, उनके हित में ये है कि नहीं, और फिर आगे आगे ऐसे से करके उस तरीके से डिसीजन देते हैं। ये बहुत ही फेमस कहावत है, चेटवुड क्रेडो बोलते हैं उसको, कि द सेफ्टी ऑनर एंड वेलफेयर ऑफ योर कंट्री कम्स फर्स्ट ऑलवेज एंड एवरी टाइम एंड देन द ट्रूप्स यू कमांड एंड। तो मेरे को लगता है आपको वो इनग्रेन कर दिया, आपके अंतर आत्मा में उसको इनग्रेन कर दिया कि आप जो भी डिसीजन लेते हो सबसे पहले मिशन ओरिएंटेशन, चाहे वो मिशन हो कोई गेम जीतना या युद्ध जीतना या कोई एक्सरसाइज में कार्रवाई करना, तो सबसे पहले मिशन ओरिएंटेशन जीत, उसके बाद वेलफेयर ऑफ ट्रूप्स। मेरे ख्याल में दिस इज हाउ यू आर मेड टू टेक डिसीजंस।
0: अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, इमोशंस, भावनाएं, ये एक व्यक्तिगत तौर पर हर व्यक्ति में विराजमान है, हालांकि फोर्सेस आपको इस तरह से तैयार करती है कि आप हर भावनाओं के परे उससे ऊपर उठकर काम करते हैं, लेकिन जैसे आपने बताया कि उस वक्त कारगिल वॉर में खास तौर पर जब आपके साथी जा रहे थे, अलविदा कह रहे थे, उस पर निर्णय लेना और उस वक्त अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना और अपने सभी साथियों को एक छतरी के नीचे संभाल के रखना कितना महत्वपूर्ण और कितना जटिल होता है।
1: बहुत बहुत महत्वपूर्ण, आपने बहुत अच्छी बात पूछी है गीतिका जी। चाहे आप कितनी भी ट्रेनिंग कर लें, जब मौका आता है वो डिसीजन लेने का, जो कि डिसीजन का आउटकम या तो जीत हार में नहीं बोलूंगा, इंडिविजुअल लेवल पे वो जीना या मरना के डिसीजन पे है, तो वो डिसीजन लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। और मेरे को लगता है कि वो सिर्फ एक एस्प्री डी कोर होती है, जैसे मैं 93 फील्ड रेजिमेंट में था, तो वो 93 फील्ड रेजिमेंट को जीत प्राप्त करनी है, करनी ही करनी है। तो जो ये मेरे ख्याल में जो आप पूछना चाहते हैं वो, क्या वो डर होता है, चाहे वो खौफ होता है, चाहे वो भय होता है, क्या वो आपके अंदर आता है कि नहीं आता। पर मैं ये एक्सपीरियंस के साथ बोल सकता हूं कि जब उस समय आप एक एज एन ऑफिसर कोई डिसीजन लेते हैं तो ये भय, डर, खौफ काफी पीछे रह जाता है। सबसे पहले आपको अपनी रेजिमेंट की इज्जत सामने आती है कि भाई मेरी रेजिमेंट, मेरे कमांड, चाहे मैं एक बैटरी कमांडर हूं चाहे जो भी हूं, उस कमांड को सक्सेस करना है मैं, और अगर सक्सेस नहीं हुआ तो जिस प्रकार से मेरा देश मेरे को देखेगा मैं उसके लिए उसको एक्सेप्ट नहीं करूंगा, तो चाहे मेरी जान जाए लेकिन मैं ये कार्रवाई करके ही रहूंगा। और ये ऑफकोर्स जैसे हमारी 3-4 साल की ट्रेनिंग है, जो रेजिमेंट में कार्रवाई होती है, यूनिट्स में कार्रवाई होती है, वो आपको ताकत देता है कि आप उस समय ये डिसीजन ले सके।
0: जी, तो कहीं ना कहीं सेना आपकी मानसिक और शारीरिक भी आपका मनोबल बढ़ाती है, आपकी इंजीनियरिंग कुछ इस तरह से कर देता है कि आप हर निर्णय लेने में सक्षम हो जाते हैं, थैंक्स टू द टफेस्ट ट्रेनिंग्स आई वुड से।
1: बिल्कुल गीतिका, आपने बिल्कुल ये शब्द मेरे मुंह से ही निकाल लिए कि यस, ये हमारी भारतीय सेना का के ट्रेडिशंस है, एस्प्री डी कोर है, भारतीय सेना का जो सालों पुराना ट्रेडिशन है जीत हासिल करना, वही है जो आपको ये डिसीजंस लेने में मदद करता है।
0: जी जी, निश्चित रूप से। आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि जिस तरह से सेना ने आपको तैयार किया है, आज भी आपको लगता है कि आप अपनी निजी जिंदगी में भी निर्णय ले पाते हैं आसानी से, क्योंकि आपके साथ जो मेहनत की गई वो अपने आप में ही सबसे अलग है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, मैं अभी कुछ जो जिस कार्य में मैं लगा हुआ हूँ उसमें कई सिविलियंस के साथ मैं डील करता हूँ, और मेरे को रियलाइज होता है कि जो जिस भाव से वो अपने काम को अप्रोच करते हैं और हम जैसे अप्रोच करते थे उसमें काफी फर्क है। जैसे फौज में अगर आपको एक काम मिल गया है तो आप कुछ भी करोगे वो काम को सक्सेस करने के लिए, उस एम अचीवमेंट के लिए। लेकिन जब अभी मैं कॉरपोरेट में हूं, कॉरपोरेट में जैसे कार्रवाई होती है वो थोड़ी अलग होती है, उसमें कहीं ना कहीं एक स्वार्थ खुद का आ जाता है। लेकिन जब आप देश के लिए कार्रवाई करते हो ना गीतिका, तो खुद का स्वार्थ बिल्कुल पीछे रह जाता है, आप इन सब चीजों से ऊपर उठ जाते हो और सिर्फ देश और एम और मिशन के बारे में सोचते हो।
0: वाह क्या बात है। एक और महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर पूछना चाहती हूँ कि सेनाएं तो हमें सशक्त करती ही करती हैं, हमें तैयार करती हैं कि कैसे हम मैदानी जंग में अपना दमखम साबित कर देंगे, लेकिन जब एक अधिकारी, एक सिपाही या जिस भी दर्जे पर एक व्यक्ति सेनाओं में रहकर अपनी भूमिका निभा रहा है, अपना योगदान दे रहा है, आप एज एन ऑफिसर कैसे सेनाओं को सशक्त करते हैं, ये अलग बात है। कितना महत्वपूर्ण होता है कि आप सेनाओं में हैं, आप सेना में हैं, आपको भी सेना को सशक्त करना है।
1: बिल्कुल गीतिका, जैसे मैं जो जिस कारगिल के बारे में जब हमने बात करी, जिन जो मैंने नाम लिए, चाहे वो परमवीर चक्र विजेता मनोज पांडे, महावीर चक्र विजेता अनुज नैयर, उनका नाम हमेशा गौरवशाली रहेगा हमेशा, लेकिन इनके पीछे भी कई लोग हैं जो ये कार्रवाई कर रहे हैं। ये मेरे को पता चला जब मैं सेना भवन में इन माय लास्ट टेन्योर पोस्टेड था, कि कैसे आर्मी हेडक्वार्टर में लोग निरंतर काम कर रहे हैं हमारी सेनाओं को कैपेबिलिटी डेवलपमेंट करना, कि जो उनको हथियार, जो उनको असला, जो उनको इक्विपमेंट चाहिए, चाहे वो ड्रोन्स हो, चाहे वो टैंक्स हो, चाहे वो एयरक्राफ्ट हो, ये आसान नहीं है इन चीजों को खरीदना। जब हमारी लड़ाई होगी, जब भी होगी, जिससे भी होगी, उनसे अच्छा सामान होना चाहिए हमारे, तभी हमारा सैनिक जीत पाएगा। इन सबको अरेंज करना, इन सबको सेना के लास्ट फौजी तक पहुंचाना आसान नहीं है। एंड हैट्स ऑफ टू दोज पीपल आल्सो जो कि अपने अपने हेडक्वार्टर्स में काम कर रहे हैं, जैसे 416 इंजीनियर ब्रिगेड है, वहाँ पे ब्रिगेडियर राणा है, उदाहरण बॉर्स, वो काम कर रहे हैं, इंश्योर कर रहे हैं कि उनका कमांड लास्ट तक पहुंचे। इस प्रकार कई उदाहरण हैं कि जो लोग अपने अपने ऑफिस में काम कर रहे हैं ताकि सेना भी सशस्त्र हो।
0: जी, तभी हम हर बार आकाशवाणी के माध्यम से ये कहते हैं कि जब आप चैन की नींद सो रहे हैं तो कोई है जो आपके लिए निरंतर मुस्तैद है, जो निरंतर आपके लिए काम कर रहा है। और भी होंगी बहुत सारी बातें, लेकिन कर्नल तनवर, यहाँ पर आपने कुछ दोस्तों के नाम लिए, नैयर साहब का आपने नाम लिया यहाँ पर, वो तमाम दोस्तों का जिक्र किया जिन्हें आपने कहीं ना कहीं निजी रूप से खोया है, पर हम यही कहेंगे कि आज जो हम देश का परचम लहरा रहे हैं सिर्फ उन्हीं काबिल वीर ऑफिसर्स की वजह से, और उन्हीं के नाम ये अगला नगमा हमारी ओर से आकाशवाणी की तरफ से।

0: वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और हर बार की तरह ये कार्यक्रम निजी रूप से मुझे बेहद पसंद है, क्योंकि कहते हैं कि हम जीवन में जब जो प्राप्त नहीं कर पाते तो हमें उस मंजिल की तरफ हमेशा आकर्षण होता है। वो लोग जिन्हें वो मंजिल मिली है वो अपने आप को खुश नसीब समझते हैं, और आकाशवाणी के माध्यम से जब हम ऐसे प्रोग्राम्स करते हैं तो हम अपने आप को बहुत गौरवशाली महसूस करते हैं कि ऐसे दिग्गज हमारे बीच हैं जो अपनी बात हम तक साझा कर रहे हैं, आप तक साझा कर रहे हैं, तमाम फौजियों की बातें साझा कर रहे हैं, उनकी कहानियाँ सुना रहे हैं अपनी कहानी के माध्यम से। कर्नल कुंवर वरुण सिंह तनवर हमारे साथ हैं आज हमारे स्टूडियो में, और बहुत सी बातें हमने की, आपके मिशंस के बारे में बात की, आपके अपने जो कोर्स किया एनडीए के, आपके कार्यकाल यानी कि एनडीए के दिनों की बात की। अब एक सबसे महत्वपूर्ण और निजी सवाल, वो पल जब आप अपनी अर्धांगिनी से मिले, सर्वप्रथम सबसे पहले तो ये बताइए करल तनवर, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा गुस्ताखी माफ, आपकी अरेंज मैरिज थी या लव मैरिज?
1: जी बिल्कुल अरेंज मैरिज थी। मेरी शादी, इनफैक्ट मैं भिवानी का रहने वाला हूँ, मेरी वाइफ का परिवार भी भिवानी में है, एंड सबसे पहले मैं अपनी वाइफ को मैंने देखा 2002 में, 2002 तकरीबन अप्रैल मई का महीना था, और मैं उस टाइम पे एक चाइना बॉर्डर पे पोस्टेड था तवांग में, एंड वापस जा रहा था छुट्टी सी, तो मेरी माँ ने बोला आ जाओ एक घर के पास, एक घर में चलते हैं। मैं कहा किस लिए? बोलते नहीं नहीं चलो चलो चलो, और वहाँ पे मैं सबसे पहले अपनी वाइफ से मिला। माय वाइफ वाज इन सेकंड थर्ड ईयर ऑफ इंजीनियरिंग,
0: सो स्वीट,
1: एंड तो पहली बार मेरे को काफ़ी डर गई वो मेरे को देख के, मैं तो अफसर था, वो शी वाज अ यंग गर्ल, आई थिंक शी ऑलमोस्ट क्राइड, क्या रोई थी वो एक्चुअल में।
0: अच्छा।
1: एंड तो वहाँ से सिलसिला शुरू हुआ, एक साल बाद हमारी एंगेजमेंट हुई, और एक साल बाद 2004 25 फरवरी को हमारी शादी हुई, और जिंदगी उसके बाद बदल सी गई। जैसे मेरी वाइफ मेरे को हमेशा बोलती है कि अफसर तो मेरे को फौज ने बना दिया था, लेकिन मेरे को इंसान उसी ने बनाया।
0: क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, जब आपने उनसे कहा होगा कि देखो मैं फौज में हूँ और बहुत मुश्किलात आएंगी, बहुत बार ऐसा होगा जब मैं तुमसे बहुत दूर जाऊँगा और हो सकता है कि हमारे और तुम्हारे बीच वार्तालाप ना हो पाए, कॉन्वर्जेशन ना हो जाए, पर तुम धैर्य रखना, ऐसा कई बार कंसोल करना पड़ा?
1: बिल्कुल बिल्कुल, माई वाइफ इनफैक्ट नीति, आई एम श्योर शी इज लिसनिंग टू मी, तो कई बार हुआ ऐसे जब फौज में शादी करना वैसे ग्लैमरस लगता है बट आसान नहीं है, तो हैट्स ऑफ टू ऑल आर्मी वाइफ्स आल्सो, उनके हस्बैंड्स उनको छोड़ के देश के लिए दूर दराज इलाके में पोस्टेड होते हैं, पीछे से वाइफ बच्चों के साथ, कई अपने सास ससुर के साथ, कहीं पे भी कुछ घर संभालती हैं, आसान नहीं होता। ये तो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव बात कर रहा हूँ, हस्बैंड वापस आए, कैसे आए, चोट खा के आए या ना आए, ये अनसर्टेनिटी सहन करना आसान नहीं होता, तो हैट्स ऑफ टू देम। मेरे को याद है मैं एक कोर्स कर रहा था, उसके बाद मेरी पोस्टिंग राष्ट्र राइफल्स में हो गई थी कश्मीर में, पहली बार पोस्टिंग फील्ड जा रहा था मैं शादी के बाद, तो काफ़ी हताश हुई मेरी वाइफ कि तुमने जानबूझ के जाना चाहते हो उधर,

0: बट हाँ, किसी तरह हमने उनको मनाया एंड टच वुड थिंग्स आर नाइस.
1: यही मैं बार बार कह रही हूँ कि ये जो दास्तान है, कहानी है, एक सिर्फ एक ऑफिसर की नहीं, तमाम ऑफिसर्स की है जो अपनी फैमिली और साथ ही साथ देश के प्रति जो कर्तव्य निष्ठा है उसको कहते हैं ना बैलेंस करके चलते हैं, और इसमें आर्मी का एक बहुत बड़ा योगदान है. आर्मी वाइफ्स वेलफेयर एसोसिएशन काफ़ी कारगर साबित होती हैं,
0: बिल्कुल
1: नित्य प्रति कार्य करती रहती हैं. तो कहीं ना कहीं हम सल्यूट करते हैं हमारी सेनाओं को जो ना केवल हमारे इस तरह के सैनिक अधिकारी कहते हैं उनको जन्म देती है, पर साथ ही साथ उनके परिवारों का भी खासा ख्याल रखती है. और हैट्स ऑफ टू द वाइव्स ऑफ द आर्मी पर्सनल्स जो अपने कहते हैं कि अपने वीर पति, अपने वीर सोलमेट के दूर होने के बाद भी सुचारू रूप से घर को चलाती है विदाउट एनी कंप्लेंट्स.
0: इसमें जैसे आपने बिल्कुल सही कहा, फौज का बहुत बड़ा हाथ रहता है, बहुत इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट मिलती है, बहुत ज्यादा. जैसे मैं बता रहा था, आर्मी स्कूल्स होते हैं, वहाँ पे आर्मी हॉस्पिटल्स होते हैं, सब कुछ अंदर होता है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस, बहुत ही इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट मिलता है जिससे हमारी कार्रवाई आगे घर गृहस्थी चलती रहती है.
1: कोई कैसी बात जो बहुत ही प्यारी हो, बहुत ही इमोशनल हो आपकी वाइफ के संबंधित, जिसको आप बार बार जिक्र करते हैं, खासतौर पर तब जब उनसे दूर थे या सेवाओं में थे, तो उनकी बातें, कोई ऐसा गाना या उनका अपने इमोशंस दिखाने का तरीका जो आपको बहुत याद आता है अभी भी?
0: बहुत याद आता है. ऑफ कोर्स माय वाइफ इज द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमन इन द वर्ल्ड, बट शी इज आल्सो प्रोबब्ली वन ऑफ द बेस्ट डांसर्स इन द वर्ल्ड.
1: क्या बात है.
0: तो हमारी जो लेडीज संगीत होता है उसमें मेरी वाइफ ने एक सॉन्ग पे डांस किया था, मैं तेरी हो गई यार सजना वे सजना, और जिस तरीके से उन्होंने डांस किया था, अभी मेरे ख्याल में कितने 22 साल हो गए, मेरे को अभी तक मेरी आंखों के सामने वो नजर आना आ जाता
1: है. क्या बात है, यानी कि वो पल जिसमें
0: उन्होंने डांस
1: किया और उनका नृत्य कहीं ना कहीं आपको लुभा गया. वाह क्या बात है. कहते हैं कि जीवन की छोटी बड़ी बातों में वो प्रेम छुपा होता है, तकरार होती है, और कहते हैं कि इमोशंस तो सब जगह एक जैसे हैं, और वो भावनाएं ही हैं जिनकी वजह से हमारा जो इंडियन मैरिटल सिस्टम है वो आज भी बहुत ज़्यादा मजबूत है. तो उस नगमे का जिक्र आपने यहाँ पर कर दिया, तो क्यों ना नाम के लिए ये नगमा हम यहाँ से प्ले करें.

0: और हम भी हरदम हरपल बस आपके हैं, और इसीलिए हम आपके लिए लेकर आते हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स। और करल तलवर, आपसे एक महत्वपूर्ण सवाल पूछना चाहती हूँ। मैं तो चाहती हूँ निजी रूप से कि अगर मुझे मौका मिले ना इसी जिंदगी में रहकर कि मैं आर्म फोर्सेस ज्वाइन कर सकूँ, मैं कभी मना नहीं करूँगी। आप बताइए, डू यू वॉन्ट टू रीलिव दोस 26 ईयर्स अगेन?
1: गीतिका, ऑफ कोर्स, अगर मैं अपने पिछले 26 साल फौज में जो मैंने बिताए हैं उनके बारे में सोचूं तो इतना फुलफिलिंग लाइफ रहा है। एनडीए में आपको क्या क्या नहीं कराते, सेलिंग, राइडिंग, प्लेन में चलाते हैं, मैंने पूरा देश देख लिया है। ऐसा कोई प्रांत नहीं रहा है जहां पे मैंने कुछ दिन नहीं बिताए हैं। विदेश दिखाया है, देश ने मेरे को रशिया भेजा, देश ने मेरे को फ्रांस में भेजा, मैंने लड़ाई लड़ी है दूसरे देश के साथ, टेररिस्ट के साथ। मैंने कई हजार करोड़ों के कॉन्ट्रैक्ट एक जगह से साइन किए हैं। मैंने जिंदगी के सबसे हसीन पल, चाहे वो ज्योग्राफिकली हो, जैसे कि इतनी सुंदर जगह जैसे तवांग, कश्मीर, कोयम्बतूर, इतनी सुंदर जगह पे जाके मैंने बिताए हैं जो कि कभी हो ही नहीं सकता किसी और उसमें। और एक एक बहुत ही डाइवर्स लाइफ मैंने देखी है। ये सिर्फ लाइफ ही डाइवर्स नहीं, जितनी इज्जत हमारे देश में हमारा देशवासी फौजियों की करता है वो इज्जत मिलना और कहीं पे पॉसिबल ही नहीं है। और मैं यही बात हर देश के युवा को कहना चाहता हूँ, मैं अपने बेटे को भी कहता हूँ। मेरा बेटा भी हरिमर्दन सिंह तंवर सेकेंड ईयर लॉ में है ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी में, उसको भी मैं बोलता हूँ कि बेटा फौज में आप आके देखिए, देखिए वो कैसी जिंदगी आपको देता है, आपका कायाकल्प कर देता है। जितनी इज्जत, जितनी शोहरत, जितना सेटिस्फैक्शन आपको फौज में सर्व करके मिल सकता है और कहीं ना कहीं भी नहीं मिल सकता।
0: जी बिल्कुल नहीं मिल सकता, इस बात में कोई दो राय नहीं है। विशिष्ट सेवा मेडल 2023 में आपको सम्मानित किया गया राष्ट्रपति द्वारा, वो पल, वो अविस्मरणीय पल आपके जीवन में एक अमिट छाप छोड़ गया, एक ऐसी बात, एक ऐसा सम्मान जिसे आप दोहराते रहेंगे, बताते रहेंगे सबको, कहीं ना कहीं वो प्रेरणा स्रोत है उन तमाम बच्चों के लिए जो आर्म फोर्सेस जाना चाहते हैं। वो पल कैसा था जीवन में?
1: आई थिंक मेरी जिंदगी का एक बहुत ही, इनफैक्ट वन ऑफ द मोस्ट इंस्पायरिंग मोमेंट वॉज वेन, जब मेरे को प्रेसिडेंट ने विशिष्ट सेवा मेडल दिया गया। इससे क्या होता है, अवार्ड तो है ही, ये हमेशा मेरे नाम के साथ जुड़ जाता है
0: जी।
1: मैं अपने नाम को कर्नल KVS तंवर VSM लिख सकता हूँ, और जो एक ऐसी उपलब्धि है बहुत कम लोगों को वो मिलती है। इसकी मेरे को किस लिए मिला, मैं सेना भवन में जब आर्मी हेडक्वार्टर्स में पोस्टेड था तो मैंने कुछ काम किया देश के लिए कैपेबिलिटी डेवलपमेंट में, जिसकी वजह से मेरे को विशिष्ट सेवा मेडल मिला। और हमेशा मैं आभारी रहूँगा हमारे सीनियर्स का, मेरे जो सीनियर्स थे उस टाइम पे, ब्रिगेडियर होती थे जनरल राजू थे, ब्रिगेडियर मोंगा थे, जनरल मोहंती थे, जिन्होंने मेरे को गाइड किया और ये मेरे को विशिष्ट सेवा मेडल प्रदान हुआ।
0: वाह क्या बात है। वो तमाम स्टूडेंट्स, वो तमाम छात्र छात्राएं, आज तो हम देखते हैं किस तरह से युवतियां भी आर्म्ड फोर्सेस में परमानेंट कमीशन मिल रहा है, और ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। तो क्या संदेश देना चाहते हैं आप
1: आज की युवा को? मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि सेना जैसा माहौल, सेना जैसा लाइफ, सेना जैसा करियर आपको नहीं मिल सकता। ये एक ऐसा करियर है जो सिर्फ ना सिर्फ आपकी किंतु आपके पूरे परिवार की जिंदगी बदल देगा
0: जी।
1: आपको एक ऐसे राह में ले जाएगा जहाँ पे हर चीज आपको नेक्स्ट लेवल की मिलेगी। तो सारी युवाओं और युवतियों से मैं ये बताता हूँ कि आर्मी एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। आसान नहीं है आर्मी में आना, बिल्कुल आसान नहीं है। आप मेहनत करें तो आप आर्मी में आएं और देश सेवा कैसी होती है आप सीखें।
0: जी हम दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि आज संदेश टू सोल्जर्स इस प्रोग्राम के माध्यम से आप उन सभी तक पहुँचे हैं जो कहीं ना कहीं या तो अपनी कहानी दोहरा रहे हैं आपको सुनने के बाद, बहुत सारे हमारे ऑफिसर्स सेवानिवृत्त हैं या अभी सर्विसेज में हैं।

0: या वो लोग जो चाहते हैं कि हम सेना में रहकर सेवाएं दें, देश के प्रति अपनी कर्तव्य निष्ठा को साबित करें, उनके लिए आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। बहुत सारे अनछुए पहलुओं को अपनी ज़िंदगी के यहाँ उजागर कर हमें कहीं ना कहीं सेनाओं से जोड़ दिया, देश प्रेम से जोड़ दिया। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं और यही कहना चाहते हैं कि बहुत सारे संदेश हम पहुँचे हैं और सभी ने आपको सलाम कहा है, आपके जज्बे को सलाम कहा है। सभी दोस्तों से हम माफ़ी मांगना चाहेंगे कि आप सभी के नाम हम ज़रूर नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन कर्नल तनवर को मैं आपके संदेश इस प्रोग्राम के बाद ज़रूर दिखाऊंगी। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। और एक बार हम पुनः धन्यवाद देना चाहते हैं हमारे आज के मेहमान कर्नल कुंवर वरुण सिंह तनवर जी का। बहुत बहुत धन्यवाद सर आकाशवाणी के स्टूडियो में आने के लिए और हम तक इन प्यारी प्यारी बातों को साझा करने के लिए।
1: थैंक यू सो मच।

0: Ashwani FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
1: 107.1 MHz पर यह है आकाशवाणी मुंबई का FM रेनबो चैनल. FM रेनबो का ये प्रसारण आप आकाशवाणी मुंबई के मीडियम वेव 1044 किलोहर्ट्ज के डिजिटल रिसीवर यानी DRM पर सुन सकते हैं. इसके अतिरिक्त आप अपने मोबाइल पर न्यूज़ ऑन एयर ऐप पर यह कार्यक्रम इस वक्त सुन सकते हैं. शाम के 5:02 हो चुके हैं. प्रस्तुत है कार्यक्रम लव यूज़.

इन दिनों शाम का इंतज़ार बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि भागदौड़ भरी हमारी ज़िंदगी में थोड़ी सी जब तपती हुई गर्मी आ जाती है तो ऐसे लगता है कि भाई ठंडक भरे दिन कब आएंगे। वैसे हमारे पास जो

0: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे।
1: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा? बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा?
0: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है, और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
4: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी। ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
3: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।

मौसम तो बहुत आते जाते हैं दोस्तों, लेकिन इस मौसम की आनी जानी रवानी के साथ हमारे दिल में जो बहुत सारे भाव उठते हैं, हमारे स्वभाव, हमारे विचार, इसमें जो अंतर आता है, इस पर भी बहुत बारीकी से ध्यान देना ज़रूरी होता है। क्योंकि कहा जाता है कि हमारे बाहरी बदलाव जो होते हैं, हमारे आसपास जो भी कुछ घटित होता है, उसका हमारे स्वभाव पर, हमारे मन पर, हमारे शरीर पर असर पड़ता ही है। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो बाहरी बदलाव का अपने ऊपर असर नहीं होने देते। हालांकि ये भी बहुत बड़ी कला है दोस्तों। और ऐसा ना होने देने से, अपने आप को बिल्कुल तटस्थ रखने से भी बहुत सारी मुश्किलें अपने आप आसान हो जाती हैं। लेकिन वो कहा जाता है ना कि आपकी सूरत आपकी सीरत का अंदाज़ा लगा ही देती है। आपकी सूरत पे वो सब कुछ दिख जाता है जो आपके अंदर चल रहा होता है, सारे बदलाव। हालांकि बहुत सारे लोग इसे समझ पाते हैं, बहुत सारे नहीं समझ पाते। एक बार फिर से कहूंगी कि ये भी एक कला है। ऐसी बहुत सारी बारीकियां जिंदगी में होती हैं जो आपको जिंदगी के साथ बिल्कुल सूक्ष्म रूप से जोड़ देती हैं, जो हमें समझ में भी नहीं आता।

चेहरे की बात चली रही है इन नगमों के ज़रिए, तो आजकल आपको ऐसे नहीं लगता कि चेहरे पे चेहरा है हमारे? क्योंकि हमारा जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी का चेहरा है, शायद फिर वो घर के अंदर, चार दीवारी के अंदर, अपने अपनों के बीच का जो चेहरा है वो चेहरा, और घर की दहलीज के बाहर वाला चेहरा, इसमें बहुत अंतर है। दिन ब दिन ये अंतर बढ़ता ही जा रहा है। और एक हमारा चेहरा है, सोशल मीडिया वाला चेहरा। हाँ, लोग अपनी आइडेंटिटी, या फिर हम ये कह सकते हैं कि चेहरा जो आपकी आइडेंटिटी होती है, आपकी पहचान होती है, उसे अलग अलग रूप में लोगों के सामने, समाज के सामने पेश करते हैं, और फिर इसी से आपकी ज़िंदगी कैसी है ये चाशनी परखने का काम दुनिया करती है। आप अपने आप को जिस तरह से प्रेजेंट करते हैं, आपका चेहरा वही दिखाता है। चाहे फिर वो आपकी घर की दहलीज के बाहर वाला चेहरा हो, या फिर सोशल मीडिया

मीडिया पर जो आप चेहरा दिखाना चाहते हैं वो, कहीं ना कहीं ये सारी जो बातें हैं लोगों के जांच परख का विषय बन जाता है। अपने आंचल में झांक कर देखने के लिए वक्त किसी के पास नहीं है, लेकिन दूसरों के चेहरे पढ़ने के लिए सभी लालायित रहते हैं और हम भी अपनी छवि सुधारने में ही तो लगे रहते हैं।

0: सुनो ना।
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है? हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे।
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242।
0: ओ 870-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर।

कहते हैं आपका चेहरा आपका परिचय देता है, आपके व्यक्तित्व का, आपके स्वभाव का, और यही बात होती है इस चेहरे में। बहुत से लोग छुपा लेते हैं अपने परिचय को, एक नकली परिचय देने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्या यह जरूरी होता है? इतना जो आप अंदर है क्या वो बाहर हो सकता है? क्या इतना नकली परिचय देना जरूरी होता है? सवाल तो बहुत सारे हैं, लेकिन जवाब देने का काम चेहरा कर ही देता है। गाहे बगाहे हम ये सारी चीजों को कितनी ही छुपाने की कोशिश करें, ये जो कायनात है, ये जो नेचर है, ये अपना काम करती हैं। बारीक से बारीक, महीन से महीन रेखाएं जो आपके चेहरे पर हैं, वो सब कुछ बयां कर देती हैं। हाँ, बस आपको पढ़ना आना चाहिए।

0: Ashwani FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
1: 107.1 MHz पर यह है आकाशवाणी मुंबई का एफएम रेनबो चैनल. एफएम रेनबो का यह प्रसारण आप आकाशवाणी मुंबई के मीडियम वेव 1044 किलोहर्ट्ज के डिजिटल रिसीवर यानी डीआरएम पर सुन सकते हैं. इसके अतिरिक्त आप अपने मोबाइल पर न्यूज ऑन एयर ऐप पर यह कार्यक्रम इस वक्त सुन सकते हैं. शाम के 6:15 हो रहे हैं. प्रस्तुत है कार्यक्रम अंदाज़े बयां. सभी श्रोताओं को माया का प्यार भरा नमस्कार.

दोस्तों, शेरो शायरी, गीत, कविताएं, इसके प्रति जो हमारा खिंचाव है, हमारा आकर्षण है, हमारा प्रेम है, ये आज का नहीं, ये सदियों से चलता आ रहा है। राजे रजवाड़े लोग अपने महलों में ऐसे शब्दों के धनी लोगों का खास ख्याल रखा करते थे, जो बिल्कुल कम से कम शब्दों में उनका, उनके कारनामों का, उनकी प्रजा का, उनकी रियासत का बहुत भूरे भूरे शब्दों में प्रशंसात्मक कविताएं, शेरो शायरी लिखकर उन्हें रिझाया करते थे। तो कहीं ना कहीं ये जो मन को रिझाने वाला काम, ये जो बिल्कुल कम शब्दों वाला एक साहित्य प्रकार है ये करता है, तो ऐसे लगता है कि इतनी गहराई तक पहुंचने का सामर्थ्य शायद इसी साहित्य प्रकार में है। आप इसे गीत कह लीजिए, आप इसे कविता कह लीजिए, आप इसे गजल कह लीजिए, शेरो शायरी कह लीजिए, शब्दों का जो ये एक पूरा का पूरा ऐसे जंजाल, ऐसा रसायन तैयार हो जाता है जो दिल की गहराई को बस कुछ सेकंड्स में नाप लेता है। और जो भावनाएं हम अक्सर कहने में झिझकते हैं या फिर हमें वो कहनी आती ही नहीं, वो इतनी खूबसूरत अंदाज में बयां भी हो जाती हैं।

0: सुनो ना।
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है? हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगू।
1: मुझसे।
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
0: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।

0: सुनो ना।
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है? हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे।
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242।
0: ओ 870-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर।
2: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
0: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
2: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
0: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
2: बुकिंग है तो संपर्क करें 870-001-4242 पर।
0: 870-001-4242।
3: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
4: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी। ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा। हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे

जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी, बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।

6:47 हो रहे हैं दोस्तों, और आप सुन रहे हैं अंदाज़े बयां माया के साथ। दोस्तों, आप जानते ही हैं हमारा अगला कार्यक्रम होगा हम तुम, और इसमें आप अपनी फरमाइशें सुनते हैं। अगर इस प्रोग्राम में आपको शामिल होना है तो क्या करना होगा हम आपको बताते हैं। आपको बस एक व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज भेजना है, जो व्हाट्सएप नंबर अब हम आपको देने वाले हैं। आपको करना ये है कि आपको जो गीत सुनना है, आपकी जो फरमाइश है, उस गीत के बोल, फिल्म का नाम, आपका नाम, ये सारी जानकारी आपको हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करनी है। व्हाट्सएप नंबर है 8657661071, 8657661071। तो चलिए मैसेजेस करना शुरू कर दीजिए। वैसे हमारे जो रोज़ के श्रोता हैं उन्होंने मैसेज करना शुरू भी किया है, लेकिन जो हमसे नए सिरे से जुड़ रहे हैं उनके लिए हमारी एक ख़ास गुजारिश है कि आप भी हमारे साथ जुड़िए इन नंबर्स के ज़रिए और अपने पसंदीदा गीत सुनिए।

6:59 हो रहे हैं। अब से कुछ ही देर बाद आप समाचार सुनेंगे और तत्पश्चात आप सुनेंगे कार्यक्रम हम तुम। सुनते रहिए FM रेनबो।

0: Ashwani FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
1: 107.1 मेगाहर्ट्ज़ पर यह है आकाशवाणी मुंबई का एफएम रेनबो चैनल। एफएम रेनबो का ये प्रसारण आप आकाशवाणी मुंबई के मीडियम वेव 1044 किलोहर्ट्ज़ के डिजिटल रिसीवर पर सुन सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप अपने मोबाइल पर न्यूज़ ऑन एयर ऐप पर ये कार्यक्रम इस वक्त सुन सकते हैं। 7:11 हो रहे हैं। प्रस्तुत है आपका पसंदीदा कार्यक्रम हम तुम। एक बार फिर से सभी श्रोताओं को माया का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आप जानते ही हैं, ये आपकी पसंदीदा गीतों का कार्यक्रम है और इसमें आप सभी को शरीक होना, इसमें आपको भाग लेना पसंद जरूर होगा। तो चलिए, इसके लिए आपको क्या करना है हम आपको झटपट फटाफट बता दें। आपको करना ये है कि हम आपको जो व्हाट्सएप नंबर बताएंगे उस पर आपके पसंदीदा गीत के बोल, फिल्म का नाम, आपका नाम, यदि पॉसिबल हो तो आप कहाँ से हैं, ये भी जानकारी हम तक ज़रूर पहुँचाएँ। ये सारी जानकारी आप हमें मैसेज करें 8657661071 8657661071 इस व्हाट्सएप नंबर पर 8657661071 इस व्हाट्सएप नंबर पर जल्दी से आप ये जानकारी हम तक पहुँचाएं। चलिए, पहली फरमाइश हम लेते हैं। पहली जो फरमाइश है ज़ीरो फिल्म से है, अभय जोधपुरिया जोधपुरकर का गाया हुआ ये गीत सुनना चाहते हैं। वीणा सरकार बोरीवली से और मलकापुर से संजय पाटिल, उषा निवृत्ति और संजय चौहान।

बैतुल का बेहतरीन शानदार संगीत इस गीत को चार चांद लगा देता है ना। चलिए अगली जो फरमाइश हम तक पहुंची है वो वर्री से है। अशोक पाटिल और राजेश मोरे सुनना चाहते हैं आशा फिल्म से लता दीदी का गाया हुआ ये गीत।

दोस्तों, हम तुम कार्यक्रम में शरीक होने के लिए आपको क्या करना है, आइए एक बार फिर से आपको बता देते हैं। हम आपको व्हाट्सएप नंबर दे रहे हैं, उस पर आपके पसंदीदा गीत के बोल, फिल्म का नाम, आपका नाम, ये सारी जानकारी आप हमें व्हाट्सएप करें 8657661071071 इस नंबर पर, और जल्द से जल्द आप अपना मैसेज हम तक पहुंचा दीजिए। चलिए अगली फरमाइश की तरफ बढ़ते हैं।

अगली फरमाइश हम तक पहुंची है पुणे से और इंदौर से। पुणे से सुनील जी और इंदौर से अजय साखरे जी, आपकी कसम फिल्म से किशोर दा का गाया हुआ ये गीत सुनना चाहते हैं।

अगली फरमाइश श्रीधरन जी ने भेजी है हमें, रुदाली फिल्म से उन्हें ये गीत सुनना है।

0: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे।
1: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा? बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा?
0: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है, और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
4: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी।
3: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
4: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।

रुदाली फिल्म का बहुत ही खूबसूरत सा ये गीत था। चलिए अगली फरमाइश सुनते हैं। अमरावती से ये फरमाइश हम तक पहुंची है पंकज मोहड़ जी से। उन्हें सुनना है मिस्टर इंडिया फिल्म से ये गाना।

0: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
1: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी।
0: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
1: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
2: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।

0: निशुल्क कायदेशीर मदत मिळवण्यासाठी टेली लॉ ऍप किंवा www.tele-law.in या वेबसाईटवर किंवा टोल फ्री क्रमांक 1-4-4-5-4 वर संपर्क साधा.
1: अगली फरमाइश कार्यक्रम में लोफर फिल्म से हैं. मोहम्मद रफी का गाया हुआ ये गीत सुनना चाहते हैं फिरोज सिंगापुरिया जी.

दोस्तों आज आपने बहुत सारी फरमाइशें हम तक पहुंचाई, लेकिन आप जानते हैं एक घंटे का ही समय होता है और इसमें कितनी सारी फरमाइशें हम पूरी करें, लेकिन फिर भी जितनी हो सके फरमाइशें हमने पूरी करने की कोशिश की है। 7:50 हो रहे हैं, अगला कार्यक्रम होगा रॉक विद जॉक अभिषेक के साथ, वो आ चुके हैं स्टूडियो में, लेकिन मुझे अभी साइन ऑफ करना होगा, लेकिन अंतिम दो फरमाइशें हम आपकी ज़रूर पूरी किए देते हैं। इसके बाद वाली जो फरमाइश है अकोला से हमें भेजी है विजेंद्र घाटोल जी ने, राम तेरी गंगा फिल्म से लता मंगेशकर का गाया हुआ एक राधा एक मीरा ये गीत वो सुनना चाहते हैं। तत्पश्चात हम ले रहे हैं फरमाइश वसई से राम प्रजापति जी की, अर्पण फिल्म से अनवर का गाया हुआ मोहब्बत अब तिजारत बन गई है ये गीत वो सुनना चाहते हैं। तो ये अंतिम दो फरमाइश है आपकी हम पूरी किए देते हैं और इसी के साथ ही अब माया आपसे इजाज़त लेगी, जल्दी हमारी मुलाकात होगी, तब तक के लिए शुभरात्रि, नमस्कार।

0: the message I shared then at VivaTech 2021, where convention fails, innovation can help. India has been going through a rapid transformation that is powered by technology. From creating the world's largest digital identity system to the world's largest digital payment platforms, we are using technology at a massive scale for financial inclusion, education, telemedicine, agriculture, and more.
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रौद्योगिकी से तभी प्रगति हो सकती है जब उसका लाभ सभी तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि भारत का मानना है कि उथल पुथल भरे इस दौर में प्रौद्योगिकी का लाभ सभी को मिलना चाहिए।
0: AI must improve lives, widen access, drive growth and also help us sustain a healthy planet. Our participation as the AI country partner at VivaTech 2026 reflects this very vision. For India, AI means all inclusive.
1: प्रधानमंत्री ने वैश्विक नवोन्मेषकों से भारत के साथ मिलकर काम करने और ऐसी नई तकनीक विकसित करने का आह्वान किया जो सबके लिए लाभकारी हो। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर प्रधानमंत्री ने कहा कि यह समझौता व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी के आदान प्रदान और पर्यटन को बढ़ावा देगा।
0: 2026 is a special year for India and Europe. At the beginning of the year, we concluded the historic India-EU Free Trade Agreement. This agreement will expand our trade and investment, and it will open up many pathways for the exchange of talent, technology, and tourism.
1: इससे पहले श्री मोदी ने पेरिस में कई प्रमुख उद्योगपतियों से मुलाकात की। इस दौरान विनिर्माण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और समुद्री अवसंरचना पर चर्चा हुई। बैठक के बाद आकाशवाणी से बात करते हुए इन उद्यमियों ने भारत में बढ़ते अवसरों का उल्लेख किया। एक रिपोर्ट।
2: सेंट कोबा के चेयरमैन और सीईओ बेनवा बेजा ने कहा कि भारत एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए एक बड़े विनिर्माण और निर्यात केंद्र के रूप में उभर रहा है। मिस्त्राल एआई के सीईओ आर्थर मेंच ने कहा कि कंपनी भारतीय भाषाओं के लिए सहयोग बढ़ाने, एआई अनुसंधान साझेदारी का विस्तार करने और संप्रभु एआई पर गहरा सहयोग तलाशने की इच्छुक है। सीएमए सीजीएम के चेयरमैन और सीईओ रडाल्फ सादे ने कहा कि भारत हरित जहाज निर्माण के केंद्र के रूप में तेजी से विकसित हो रहा है। महेश सोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पेरिस, फ्रांस।
1: प्रधानमंत्री आज भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। इसके बाद श्री मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की सफल यात्रा के बाद स्वदेश रवाना होंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा की तैयारियों के आकलन के लिए आज उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया में ईमानदारी, पारदर्शिता और दक्षता के उच्च मानकों को बनाए रखने पर बल दिया। उन्होंने अधिकारियों को स्वतंत्र और निष्पक्ष पुनर्परीक्षा आयोजित करने के लिए सभी आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित करने और सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि 52 भारतीय संस्थान QS विश्वविद्यालय रैंकिंग 2027 में शामिल हुए हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली वैश्विक स्तर पर 118वें नंबर पर है। ये भारत का सर्वोच्च रैंक वाला संस्थान बना हुआ है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली, बम्बई और मद्रास विश्व के शीर्ष 200 विश्वविद्यालयों में शामिल हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रैंकिंग में 52 भारतीय संस्थानों के शामिल होने पर

0: प्रसन्नता व्यक्त की। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में कई समीक्षा बैठकों की अध्यक्षता की। इन बैठकों में सहकारी बैंकिंग, जैविक उत्पादों और सहकारी निर्यात को मजबूत करने के राष्ट्रीय प्रारूप की समीक्षा की गई। सहकारी बैंकिंग से संबंधित पहलुओं की समीक्षा के दौरान श्री शाह ने प्रौद्योगिकी अपनाने, साइबर सुरक्षा, डिजिटल भुगतान और बेहतर सेवा वितरण के माध्यम से सहकारी बैंकिंग क्षेत्र की प्रगति की समीक्षा की। गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भारत में अमरीका के सर्जियो गोर से मुलाकात की। इस दौरान आतंकवाद और मादक पदार्थों के खिलाफ दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने पर विस्तृत चर्चा हुई। गृहमंत्री ने कहा कि भारत वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इस अवसर पर आकाशवाणी समाचार विशेष श्रृंखला 12 साल विश्वास के, विकास के, जनकल्याण के प्रसारित कर रहा है। आज बात नक्सलवाद के उन्मूलन और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास के लिए सरकार के महत्वपूर्ण प्रयासों की।
1: नरेंद्र मोदी सरकार की सुरक्षा अभियान, नक्सलियों की फंडिंग पर रोक और प्रभावित इलाकों में तेज विकास कार्यों की संयुक्त रणनीति के चलते देश को नक्सलवाद और माओवादी आतंक से मुक्त करने में सफलता मिली है। पिछले कुछ वर्षों में कई बड़े सुरक्षा अभियानों ने माओवादी नेटवर्क को कमजोर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वर्ष 2022 में झारखंड के बूढ़ा पहाड़ क्षेत्र में ऑपरेशन ऑक्टोपस चलाया गया। इसी वर्ष फरवरी में ऑपरेशन डबल बुल के तहत झारखंड के गुमला, लोहरदगा और लातेहार जिलों को नक्सली प्रभाव से मुक्त कराया गया। ऑपरेशन स्टॉर्म के तहत झारखंड के सरायकेला, पश्चिम सिंहभूम और खूंटी जिलों में नक्सलियों के ठिकानों को निशाना बनाया गया। वर्ष 2025 में तेलंगाना छत्तीसगढ़ सीमा पर चलाए गए ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट ने बचे हुए नक्सली कैडर को बड़ा झटका दिया। बस्तर के निवासी ने सरकार के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि सरकार ने देश को नक्सलवाद से मुक्त करने का अपना वादा पूरा किया है।
2: तो उन्होंने जो प्रॉमिस किया वो पूरा करके दिखाया, तो मोदी सरकार को, अमित शाह जी को, विजय शर्मा जी को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ।
3: पर आजकल कोई डर का माहौल नहीं है, कोई भी बच्चे यहाँ पे फ्रीली अपना काम कर पाते हैं।
1: इन अभियानों के परिणाम भी स्पष्ट रूप से दिखाई दिए हैं। वर्ष 2024 में 217 माओवादी मारे गए, जबकि 2025 में यह संख्या बढ़कर 256 हो गई। इस दौरान कई बड़े नक्सली नेताओं का भी खात्मा हुआ, जिनमें हिडमा, कादरी सत्यनारायण रेड्डी, गणेश उइके और नक्सली महासचिव बसवराजू शामिल हैं। सुरक्षा अभियानों के साथ साथ नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों को भी तेजी से आगे बढ़ाया गया। झारखंड के गुमला जिले के रहने वाले टेम्बू उराव ने कहा कि जब से मोदी सरकार बनी है तब से नक्सलवाद धीरे धीरे खत्म हो गया और लोग शांति और सद्भाव के साथ रह रहे हैं।
4: हमारा क्षेत्र पूरी तरह से उग्रवाद के गिरफ्त में था, तो वहाँ अमन चैन एकदम नहीं था। हम लोग को दिन में भी निकलने के लिए डर लगता था। 2014 के बाद जब से मोदी सरकार बना है तब से धीरे धीरे करके अब उग्रवाद समाप्त हो गया है और आज हम लोग अमन चैन और बढ़िया से जीवन यापन कर रहे हैं।
1: नक्सलियों की फंडिंग रोकने में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने भी अहम भूमिका निभाई। इससे नक्सली संगठनों के संसाधनों और गतिविधियों पर बड़ा असर पड़ा। विशेष अवसंरचना योजना के तहत स्पेशल फोर्स, राज्य खुफिया शाखाओं और जिला पुलिस को मजबूत बनाने के लिए 1,761 करोड़ की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। इसके अलावा नक्सलवाद के खात्मे के लिए प्रभावित क्षेत्रों में 596 सुदृढ़ पुलिस थानों का निर्माण भी किया गया। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए AFCAT 2 of 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें afcat.edcil.co.in पर।
2: ये आकाशवाणी है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियान ने ईरान और अमेरिका के बीच नए समझौते को ऐतिहासिक दस्तावेज और सशक्त ईरान का संदेश बताया है। उन्होंने कहा कि शांति केवल आपसी सम्मान के माध्यम से ही

0: प्राप्त की जा सकती है। उन्होंने वैश्विक शांति के प्रति ईरान की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए गरिमा, स्वतंत्रता और क्षेत्रीय सहयोग को बनाए रखने का भी आश्वासन दिया। यूक्रेन ने रूस के एक तेल शोधन संयंत्र पर हमला किया। एक सप्ताह के अंदर दूसरी बार ऐसा हमला हुआ है। रूस के रोस्तोव क्षेत्र में भी अन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। रूस ने 550 से अधिक यूक्रेनी ड्रोन नष्ट किए। हमले के बाद मॉस्को के 4 हवाई अड्डों से उड़ानें रोक दी गईं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार 21 जून को कोलकाता में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मुख्य कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि कार्यक्रम के लिए 38,000 लोगों ने पंजीकरण करा लिया है। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने आज आकाशवाणी चेन्नई में पद्मश्री से अलंकृत डॉक्टर आर श्रीधर को सम्मानित किया। डॉक्टर मुरुगन ने कहा कि डॉक्टर श्रीधर ने अपने करियर के दौरान रेडियो प्रोग्रामिंग में असाधारण नवाचार किए। आकाशवाणी और दूरदर्शन के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने भी डॉक्टर श्रीधर को भारतीय प्रसारण में क्रांतिकारी व्यक्ति बताते हुए उनकी सराहना की। बम्बई शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज लगातार पांचवें दिन बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 254 अंक बढ़कर 77,410 पर और निफ्टी 82 अंक बढ़कर 24,168 पर दर्ज हुआ। मिजोरम की सत्तारूढ़ जोरम पीपल्स मूवमेंट ने आज राज्यसभा में अपना पहला प्रतिनिधित्व हासिल कर लिया। पार्टी नेता के लालत लुआर गकीमा ने राज्य की एकमात्र सीट पर जीत हासिल की। मीनाक्षी हुड्डा चीन में विश्व मुक्केबाजी कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। मीनाक्षी ने पोलैंड की नतालिया कुचेवेस्का को 5-0 से हराया। कल क्वार्टर फाइनल में 4 भारतीय मुक्केबाज खेलेंगे। वहीं ज्योति और जुगनू सेमीफाइनल में पहुंचकर भारत के लिए पदक पक्का कर चुकी हैं। उधर मकाऊ ओपन बैडमिंटन में अनमोल खारब और अस्मिता चलिहा महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। मौसम विभाग ने इस सप्ताह पूर्वोत्तर भारत और पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्र तथा सिक्किम के कई स्थानों पर मूसलाधार बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। बिहार, तमिलनाडु, पुदुचेरी और काराईकल में कल तक ऐसी ही स्थिति बने रहने की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, प्रौद्योगिकी में प्रगति तभी हो सकती है जब उसका लाभ सब तक पहुंचे। उन्होंने पेरिस में विवाटेक शिखर सम्मेलन में भारत के तेजी से हो रहे डिजिटल परिवर्तन में प्रौद्योगिकी के उपयोग का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने भारत में निवेश के अवसर और विस्तार योजनाओं पर फ्रांस के प्रमुख उद्योगपतियों के साथ चर्चा की। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की तैयारियों का आकलन करने के लिए उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियान ने ईरान और अमेरिका के बीच नए समझौते को ऐतिहासिक बताया। और चीन में विश्व मुक्केबाजी कप में मीनाक्षी हुड्डा क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। कल क्वार्टर फाइनल में 4 भारतीय मुक्केबाज खेलेंगे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी and I am Subhadra Ramachandran with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says technology can lead to progress only when it's democratized. Highlights use of technology in India's rapid digital transformation at VivaTech Summit in Paris. Prime Minister also holds discussions with leading French business leaders on investment opportunities and expansion plans in India. Education Minister Dharmendra Pradhan chairs high-level review meeting to assess preparations for NEET UG re-examination scheduled on Sunday. Iranian President Masoud Pezeshkian describes newly signed MOU between Iran and US as a historic document. Ukraine strikes a Moscow oil refinery for the second time within a week. And Meenakshi Hooda advances to quarterfinals of World Boxing Cup 2026 in China. 4 Indian boxers to be in quarterfinal action tomorrow. Prime Minister Narendra Modi today projected India as a global hub of innovation and technology while addressing the VivaTech 2026 summit in Paris. The Prime Minister said, technology can lead to progress only when it's democratized. Mr. Modi urged global innovators to work with India and deliver for all.
2: India believes that in this era of disruption, technology must deliver for all.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को नवाचार और प्रौद्योगिकी का वैश्विक केंद्र बताया है। फ्रांस के पेरिस में वीवाटेक 2026 सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत पिछले एक दशक में तेजी से परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़ रहा है, जो प्रौद्योगिकी से संचालित है। उन्होंने कहा कि भारत ने विश्व की सबसे बड़ी डिजिटल पहचान प्रणाली और विश्व का सबसे बड़ा डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म विकसित किया है।
1: The message I shared then at VivaTech 2021, where convention fails, innovation can help. India has been going through a rapid transformation that is powered by technology. From creating the world's largest digital identity system to the world's largest digital payment platforms. We are using technology at a massive scale for financial inclusion, education, telemedicine, agriculture and more.
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रौद्योगिकी से तभी प्रगति हो सकती है जब उसका लाभ सभी तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि भारत का मानना है कि उथल पुथल भरे इस दौर में प्रौद्योगिकी का लाभ सभी को मिलना चाहिए। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर प्रधानमंत्री ने कहा कि ये समझौता व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी आदान प्रदान और पर्यटन को बढ़ावा देगा। इससे पहले श्री मोदी ने पेरिस में कई प्रमुख उद्योगपतियों से मुलाकात की। इस दौरान विनिर्माण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और समुद्री अवसंरचना पर चर्चा हुई। बैठक के बाद आकाशवाणी से बात करते हुए इन उद्यमियों ने भारत में बढ़ते अवसरों का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पेरिस में भारतीय समुदाय के लोगों को भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत के प्रति भारतीय समुदाय का गहरा लगाव और भारत फ्रांस के मजबूत संबंधों में उनका योगदान प्रशंसनीय है। श्री मोदी ने कहा कि हर देश ऐसे सहयोगी तलाश रहा है जिस पर दीर्घकाल तक भरोसा किया जा सके। उन्होंने कहा कि ऐसे समय में भारत विश्व में एक विश्वसनीय साझेदार के तौर पर उभर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की सफल यात्रा के बाद स्वदेश रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सफल फ्रांस यात्रा के मुख्य नतीजों की जानकारी दी है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने पेरिस में मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा तीन मुख्य स्तंभों, व्यापार, प्रौद्योगिकी और क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पर केंद्रित रही। उन्होंने बताया कि भारत और फ्रांस ने मिलकर नीस में भारत इनोवेट्स पहल शुरू की है, जो भारतीय डीप टेक स्टार्टअप्स के लिए वैश्विक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा की तैयारियों के आकलन के लिए आज उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया में ईमानदारी, पारदर्शिता और दक्षता के उच्च मानकों को बनाए रखने पर बल दिया। इस बीच दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोशल मीडिया

मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम की उस याचिका पर आज अपना फैसला सुरक्षित रख लिया जिसमें नीट परीक्षा से पहले टेलीग्राम की सेवा फिलहाल रोकने के सरकार के फैसलों को चुनौती दी गई है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने ईरान और अमेरिका के बीच नए समझौते को ऐतिहासिक दस्तावेज और सशक्त ईरान का संदेश बताया है। उन्होंने कहा कि शांति केवल आपसी सम्मान के माध्यम से ही प्राप्त की जा सकती है। यूक्रेन ने रूस के एक तेल शोधन संयंत्र पर हमला किया है। एक सप्ताह के अंदर दूसरी बार ऐसा हमला हुआ है। रूस के रोस्तोव क्षेत्र में भी अन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। रूस ने 550 से अधिक यूक्रेनी ड्रोन नष्ट कर दिए। हमले के बाद मॉस्को के 4 हवाई अड्डों से उड़ानें रोक दी गईं। मीनाक्षी हुड्डा चीन में विश्व मुक्केबाजी कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। मीनाक्षी ने पोलैंड की नतालिया कुचेवस्का को 5-0 से हराया। कल क्वार्टर फाइनल में 4 भारतीय मुक्केबाज खेलेंगे। वहीं ज्योति और जुगनू सेमीफाइनल में पहुंचकर भारत के लिए पदक पक्का कर चुकी हैं। उधर मकाऊ ओपन बैडमिंटन में अनमोल खरब और अस्मिता चलिहा महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आकाशवाणी।
1: गुड इवनिंग, नमस्ते, सलाम, आदर्स। रात का ये पहलू भी अजीब होता है भाई। दिन भर हम दुनिया से बातें करते रहते हैं और रात होते ही दिल अपनी बात सुनने लगता है। कुछ आवाजें वक्त के साथ धीमी पड़ जाती हैं, मगर कुछ एहसास ऐसे होते हैं जो हर शाम नए लगते हैं। रात यूं ही दिल में तेरी खोई हुई याद आई, रात यूं दिल में खोई हुई तेरी याद आई, जैसे वीराने में चुपके से बाहर आई। मैं हूं ताहिर और आप सुन रहे हैं रंगे महफिल, आकाशवाणी एफएम रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर, दिल से दिल तक। आइए जनाब, इस रात को थोड़ा सा महसूस करते हैं कुछ गजलों के साथ, कुछ शेर व शायरी के साथ और कुछ उन बातों के साथ जो अक्सर दिल में ही रह जाती हैं। उसे बाहर निकालिए प्लीज़।

कभी कभी जनाब इंसान किसी कमी से ज्यादा उस सुकून को ढूंढता है जो उसकी मौजूदगी से मिला करता था। एक आवाज, एक आदत या एक छोटी सी फिक्र, यह सब चीजें वक्त के साथ खत्म नहीं होती, बस जिंदगी का गर्द उन पर जम जाता है और फिर किसी शाम

कोई गजल, कोई मिसरा या कोई तन्हा लम्हा सब कुछ फिर से रोशन कर देता है। दिल ही तो है न संग किश्त दर्द से भर ना आए तो क्यों, रोएंगे हम हजार बार कोई हमें सताए क्यों। शायद इसीलिए कुछ रिश्ते टूट कर भी दिल से अलग नहीं होते।

अजीब बात है जनाब, हम जिंदगी भर बहुत से लोगों से मिलते हैं, मगर कुछ लोग हमें जिंदगी से मिलवा देते हैं। उनके साथ गुजरने वाले लम्हे वक्त के हिसाब से छोटे होते हैं, मगर एहसासों के हिसाब से बहुत गहरे। और फिर एक वक्त आता है जब उनका जिक्र भी मुस्कुराहट लाता है और खामोशी भी। कहते हैं ना, हर बार कहता हूँ यही बात, अब के हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिलें, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिलें। मोहब्बत का शोर कम हो जाता है, मगर उसकी खुशबू देर

0: कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल,
3: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
2: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
4: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ HR दर्ज है, आपके बेटे ने ये कार्ड किया नहीं है,
5: ठीक है।
4: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो HR कटा था इनके नाम से, उसका जो खर्चा आ रहा है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
3: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
2: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
6: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
2: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
3: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
2: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
3: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
2: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
3: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
2: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
3: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।
7: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तेरे छी नजर में है जादू।
8: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
7: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
8: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
9: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग, गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
10: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
11: जी हाँ, आकाशवाणी FM रेनबो, दिल से दिल तक। और मैं हूं आपके साथ ताहिर। प्रोग्राम चल रहा है आपका अपना रंगे महफिल। रात का एक अपना ही अदब होता है, ये जल्द में कोई फैसला नहीं करती। दिन भर हम दुनिया के साथ रहते हैं मगर रात में हमें हमसे मिलवा देती है। कुछ अफसोस, कुछ ख्वाहिशें, कुछ अधूरे खत और कुछ दुआएं सब धीरे धीरे सामने आ बैठते हैं। और फिर लगता है कि इंसान की सबसे बड़ी दौलत उसके एहसास होते हैं। कहते ना हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। और शायद इसी कमी का नाम जिंदगी है।

कभी कभी किसी से शिकायत नहीं होती, बस एक सवाल रह जाता है कि अगर सब कुछ इतना खूबसूरत था तो फिर इतनी जल्दी क्यों निकल गया, गुजर गया। मगर वक्त का भी अपना एक मिजाज होता है, वो कोई किसी के लिए रुकता नहीं। इसीलिए समझदार लोग शिकायतें कम कर देते हैं और दुआएं ज्यादा देते हैं। मोहब्बत में दिखावे की दोस्ती ना मिला, मोहब्बत में दिखावे की दोस्ती ना मिला, अगर गले नहीं मिला तो हाथ भी ना मिला। और फिर दिल को तसल्ली हो जाती है कि जो मिला था वो भी किसी रहमत से कम नहीं था।

0: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
1: हिमालय की गोद से लेकर
2: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
1: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
2: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
1: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
2: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
1: तो सुनना ना भूलें
2: रेनबो डेस्टिनेशंस
1: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
3: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
4: जी हाँ, मैं हूं आपके साथ ताहिर। प्रोग्राम चल रहा है आपका अपना रंगे महफिल।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
2: जी हाँ, आकाशवाणी FM रेनबो, दिल से दिल तक। और मैं हूँ आपके साथ ताहिर, प्रोग्राम चल रहा है आपका अपना रंगे महफिल। आखिर में बात बस इतनी सी है कि हर आदमी के पास एक कहानी है जो वो सबको नहीं बताता। कुछ सफ़े आंसुओं के होते हैं, कुछ हंसी के, और कुछ उन लोगों के जिन्हें भूलना बहुत ही मुश्किल है, नामुमकिन है, मुमकिन ही नहीं। और फिर जब कोई गजल दिल के करीब से गुजरती है तो लगता है जैसे किसी ने हमारी खामोशी को अल्फाज दे दिए हों। रंज से गुजर कर इंसान तो मिट जाता है हर रंज, रंज से गुजर तो मिट जाता है हर रंज, मुश्किलें मुझ पर इतनी पड़ी कि आसान हो गई। शायद इसीलिए गजलें सुनी नहीं जाती, उसके साथ चला जाता है। बहुत कुछ कह रही है ये गजल।

जनाब, बहरहाल ये वो वक्त है जब मुझे कहना होता है कि खुदा हाफिज, शब खैर, लेकिन थोड़ा सा दिल अजीब हो जाता है क्योंकि आपसे बिछड़ना होता है और इसी वादे के साथ बिछड़ना होता है कि हाँ, बहुत जल्दी आपकी खिदमत में फिर हाजिर होऊंगा। जब तक ख्याल रखिए, ख़ास तौर पे उन लोगों का ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। टेक केयर, बाय बाय।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को नवाचार और प्रौद्योगिकी का वैश्विक केंद्र बताया है। फ्रांस के पेरिस में वीवाटेक 2026 सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत पिछले एक दशक में तेजी से परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़ रहा है, जो प्रौद्योगिकी से संचालित है। उन्होंने कहा कि भारत ने विश्व की सबसे बड़ी पहचान प्रणाली और विश्व का सबसे बड़ा डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म विकसित किया है।
1: The message I shared then at VivaTech 2021, where convention fails, innovation can help. India has been going through a rapid transformation that is powered by technology. From creating the world's largest digital identity system to the world's largest digital payment platforms. We are using technology at a massive scale for financial inclusion, education, telemedicine, agriculture and more.
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रौद्योगिकी से तभी प्रगति हो सकती है जब उसका लाभ सभी तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि भारत का मानना है कि उथल पुथल भरे इस दौर में प्रौद्योगिकी का लाभ सभी को मिलना चाहिए। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर प्रधानमंत्री ने कहा कि ये समझौता व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी आदान प्रदान और पर्यटन को बढ़ावा देगा। इससे पहले श्री मोदी ने पेरिस में कई प्रमुख उद्योगपतियों से मुलाकात की। इस दौरान विनिर्माण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और समुद्री अवसंरचना पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत न केवल भविष्योन्मुखी तैयारी कर रहा है, बल्कि नवाचार, प्रौद्योगिकी और लोकहित आधारित विकास के जरिए उसे सक्रिय रूप से संवार रहा है। श्री मोदी ने फ्रांस यात्रा के आखिरी कार्यक्रम पेरिस में बोंजूर मोदी आयोजन में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए भारत में पिछले 12 वर्षों में तेजी से हुए बदलावों का उल्लेख किया। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में भारत के सकल घरेलू उत्पाद, हवाई अड्डा नेटवर्क और विश्वविद्यालयों की संख्या दोगुनी हो गई है, जबकि मेट्रो कनेक्टिविटी 4 गुना बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था और मोबाइल फोन बनाने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। इससे पहले फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए हिंदी में प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद किया। बाद में प्रधानमंत्री स्वदेश रवाना हो गए। विदेश मंत्रालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सफल फ्रांस यात्रा के मुख्य नतीजों की जानकारी दी। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने पेरिस में मीडिया को बताया कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा 3 मुख्य स्तंभों, व्यापार, प्रौद्योगिकी और क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पर केंद्रित रही। उन्होंने बताया कि भारत और फ्रांस ने मिलकर नीस में भारत इनोवेट्स पहल शुरू की, जो भारतीय डीप टेक स्टार्टअप्स के लिए वैश्विक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा की तैयारियों के आकलन के लिए उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया में ईमानदारी, पारदर्शिता और दक्षता के उच्च मानकों को बनाए रखने पर बल दिया। इस बीच दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोशल मीडिया मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम की उस याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है, जिसमें नीट परीक्षा से पहले टेलीग्राम की सेवा फिलहाल रोकने के सरकार के फैसले को चुनौती दी गई है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने ईरान और अमेरिका के बीच नए समझौते को ऐतिहासिक दस्तावेज और सशक्त ईरान का संदेश बताया है। उन्होंने कहा कि शांति

केवल आपसी सम्मान के माध्यम से ही प्राप्त की जा सकती है। मीनाक्षी हुड्डा चीन में विश्व मुक्केबाजी कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। मीनाक्षी ने पोलैंड की नतालिया कुचेवस्का को 5-0 से हराया। आज क्वार्टर फाइनल में 4 भारतीय मुक्केबाज खेलेंगे। ज्योति और जुगनू सेमीफाइनल में पहुंचकर भारत के लिए पदक पक्का कर चुके हैं। मौसम विभाग ने इस सप्ताह पूर्वोत्तर भारत और पश्चिम बंगाल में तराई वाले क्षेत्र तथा सिक्किम के कई स्थानों पर मूसलाधार वर्षा का पूर्वानुमान लगाया है। बिहार, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैकाल में भी आज ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आकाशवाणी
1: 12:05 हुए हैं। बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम लेकर आया हूँ मैं एसएम शरीफ। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। और कार्यक्रम है जीरो आवर शो, तो आइए आनंद उठाते हैं इन प्यारे प्यारे गीतों का।

पर वाला मर्द टांगे वाला मैं हूँ मर्द टांगे वाला मुझे दुश्मन क्या मारेगा मेरा दोस्त ऊपर।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

0: किसी का इंतजार,
1: कौन है वो
0: जिससे मैं

मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल। आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।

0: साहब।
1: कौन? मैं?
0: जी हाँ, आप ही से कह रहा हूँ। यहाँ आएंगे आप? क्या नाम है आपका?
1: मेरा नाम सुनीता।
0: लवली नेम।
1: थैंक यू।
0: गाएंगे आप मेरे साथ?
1: ना, डर लगता है।
0: डरने की क्या बात है, मैं आपके साथ गाता हूँ।

अगर ये दोनों हमारे साथ गा सकते हैं तो आप सब क्यों नहीं गा सकते? रेडी रेडी रेडी रेडी यस 1 2 3 4 ला म्यूजिशियंस आप लोग मत बजाइए। रेडी 1 2 3 4 ला।

हो राधे श्याम की, जय हो सियाराम की, और जय हो बंबई धाम की। ई है

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को नवाचार और प्रौद्योगिकी का वैश्विक केंद्र बताया है। फ्रांस के पेरिस में वीवाटेक 2026 सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत पिछले एक दशक में तेजी से परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़ रहा है जो प्रौद्योगिकी से संचालित है। उन्होंने कहा कि भारत ने विश्व की सबसे बड़ी डिजिटल पहचान प्रणाली और विश्व का सबसे बड़ा डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म विकसित किया है।
1: The message I shared then at VivaTech 2021, where convention fails, innovation can help. India has been going through a rapid transformation that is powered by technology. From creating the world's largest digital identity system to the world's largest digital payment platforms. We are using technology at a massive scale for financial inclusion, education, telemedicine, agriculture and more.
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रौद्योगिकी से तभी प्रगति हो सकती है जब उसका लाभ सभी तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि भारत का मानना है कि उथल पुथल भरे इस दौर में प्रौद्योगिकी का लाभ सभी को मिलना चाहिए। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर प्रधानमंत्री ने कहा कि यह समझौता व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी आदान प्रदान और पर्यटन को बढ़ावा देगा। इससे पहले श्री मोदी ने पेरिस में कई प्रमुख उद्योगपतियों से मुलाकात की। इस दौरान विनिर्माण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और समुद्री अवसंरचना पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत न केवल भविष्योन्मुखी तैयारी कर रहा है बल्कि नवाचार, प्रौद्योगिकी और लोकहित आधारित विकास के जरिए उसे सक्रिय रूप से संवार रहा है। श्री मोदी ने फ्रांस यात्रा के आखिरी कार्यक्रम पेरिस में बोंजूर मोदी आयोजन में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए भारत में पिछले 12 वर्षों में तेजी से हुए बदलावों का उल्लेख किया। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में भारत के सकल घरेलू उत्पाद, हवाई अड्डा नेटवर्क और विश्वविद्यालयों की संख्या दोगुनी हो गई है जबकि मेट्रो कनेक्टिविटी 4 गुना बढ़ी है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अब तक 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। इससे पहले फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए हिंदी में प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद दिया। प्रधानमंत्री स्वदेश रवाना हो गए हैं। विदेश मंत्रालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सफल फ्रांस यात्रा के मुख्य नतीजों की जानकारी दी है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने पेरिस में मीडिया से कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा 3 मुख्य स्तंभों, व्यापार, प्रौद्योगिकी और क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पर केंद्रित रही। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा की तैयारियों के आकलन के लिए उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया में ईमानदारी, पारदर्शिता और दक्षता के उच्च मानकों को बनाए रखने पर बल दिया। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने ईरान और अमेरिका के बीच नए समझौते को ऐतिहासिक दस्तावेज और सशक्त ईरान का संदेश बताया है। उन्होंने कहा कि शांति केवल आपसी सम्मान के माध्यम से ही प्राप्त की जा सकती है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि युद्ध समाप्त करने के समझौते के तहत अमेरिकी नौसेना ने ईरान के बंदरगाहों पर दर्जन से अधिक जहाजों को आवागमन की अनुमति दे दी है और वहां से नाकेबंदी हटा ली है। श्री वेंस ने व्हाइट हाउस प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि अब हॉर्मूज जल डमरू मध्य से तेल की अधिक आवाजाही हो रही है। उन्होंने कहा कि ईरान समझौते पर बातचीत के लिए उनकी स्विट्जरलैंड जाने की योजना है। मीनाक्षी हुड्डा चीन में विश्व मुक्केबाजी कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। मीनाक्षी ने पोलैंड की नतालिया कुचेस्का को 5-0 से हराया। आज क्वार्टर फाइनल में 4 भारतीय मुक्केबाज खेलेंगे, वहीं ज्योति और जुगनू सेमीफाइनल में पहुंचकर भारत के लिए पदक पक्का कर चुके हैं। उधर मकाऊ ओपन बैडमिंटन में अनमोल खरब और अस्मिता चलिहा महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आकाशवाणी।
1: 1:05 और 35 सेकंड हुए हैं। शुरू करते हैं प्रोग्राम सुहानी रात।

इसीलिए तो कहता हूं यही तो था एक हीरो जिसके आगे मैं जीरो। बाकी

0: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
2: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
3: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
4: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को नवाचार और प्रौद्योगिकी का वैश्विक केंद्र बताया है। फ्रांस के पेरिस में वीवाटेक 2026 सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत पिछले एक दशक में तेजी से परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़ रहा है, जो प्रौद्योगिकी से संचालित है। उन्होंने कहा कि भारत ने विश्व की सबसे बड़ी डिजिटल पहचान प्रणाली और विश्व का सबसे बड़ा डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म विकसित किया है।
1: The message I shared then at VivaTech 2021, where convention fails, innovation can help. India has been going through a rapid transformation that is powered by technology. From creating the world's largest digital identity system to the world's largest digital payment platforms. We are using technology at a massive scale for financial inclusion, education, telemedicine, agriculture and more.
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रौद्योगिकी से तभी प्रगति हो सकती है जब उसका लाभ सभी तक पहुंचे। इससे पहले श्री मोदी ने पेरिस में कई प्रमुख उद्योगपतियों से मुलाकात कर विनिर्माण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और समुद्री अवसंरचना पर चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत न केवल भविष्योन्मुखी तैयारी कर रहा है, बल्कि नवाचार, प्रौद्योगिकी और लोकहित आधारित विकास के जरिए उसे सक्रिय रूप से संवार रहा है। श्री मोदी ने फ्रांस यात्रा के आखिरी कार्यक्रम पेरिस में बोंजूर मोदी आयोजन में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए भारत में पिछले 12 वर्षों में तेजी से हुए बदलावों का उल्लेख किया। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में भारत के सकल घरेलू उत्पाद, हवाई अड्डा नेटवर्क और विश्वविद्यालयों की संख्या दोगुनी हो गई है, जबकि मेट्रो कनेक्टिविटी 4 गुना बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अब तक 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। प्रधानमंत्री फ्रांस और स्लोवाकिया की सफल यात्रा के बाद स्वदेश रवाना हो गए हैं। विदेश मंत्रालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सफल फ्रांस यात्रा के मुख्य नतीजों की जानकारी दी। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने पेरिस में मीडिया को बताया कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा 3 मुख्य स्तंभों, व्यापार, प्रौद्योगिकी और क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पर केंद्रित रही। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा की तैयारियों के आकलन के लिए उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया में ईमानदारी, पारदर्शिता और दक्षता के उच्च मानकों को बनाए रखने पर बल दिया। इस बीच दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोशल मीडिया मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम की उस याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है, जिसमें नीट परीक्षा से पहले टेलीग्राम की सेवा फिलहाल रोकने के सरकार के फैसले को चुनौती दी गई है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा सचिव संतोष कुमार सारंगी ने कहा है कि सुदृढ़ नीतिगत ढांचे और सरकार की नवोन्मेषी पहल से भारत विश्व के प्रमुख नवीकरणीय ऊर्जा देशों में से एक बन गया है। नई दिल्ली में 10वीं हरित और सतत विकास साझेदारी परिचर्चा श्रृंखला में नवीकरणीय ऊर्जा के जरिए ऊर्जा सुरक्षा पर अपने संबोधन में श्री सारंगी ने ये बात कही। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि युद्ध समाप्त करने के समझौते के तहत अमेरिकी नौसेना ने ईरान के बंदरगाहों पर दर्जन से अधिक जहाजों को पारगमन की अनुमति दे दी है और वहां से नाकाबंदी हटा ली है। श्री वेंस ने व्हाइट हाउस प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि अब हॉर्मूज जल डमरू मध्य से तेल की अधिक आवाजाही हो रही है। उन्होंने कहा कि ईरान समझौते पर बातचीत के लिए उनके स्विट्जरलैंड जाने की योजना है। उनसे उम्मीद की जा रही है कि वो ईरान के साथ शांति समझौते लागू करने में बातचीत का नेतृत्व करेंगे। अमेरिका के अटलांटा स्टेडियम में फीफा विश्व कप 2026 के ग्रुप ए के मैच में चेकिया और दक्षिण अफ्रीका का मुकाबला 1-1 से बराबरी पर रहा। इससे दोनों टीमों के नॉकआउट स्टेज में पहुंचने की उम्मीद है। इसके बाद अमेरिका के लॉस एंजलिस स्टेडियम में ग्रुप बी के मैच में भारतीय समयानुसार रात 12:30 से स्विट्जरलैंड का मुकाबला बोस्निया हर्जेगोविना से होगा। उधर चीन के ग्वांगडोंग में विश्व टीम स्नूकर चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बनाते हुए भारत ने मौजूदा चैंपियन हांगकांग चीन को 3-1 से हरा दिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

पुराने गाने नए पुराने नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

0: खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
2: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल,
3: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
2: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
4: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ एफआईआर दर्ज है, आपके बेटे ने ये कांड किया नहीं है।
5: ठीक है,
4: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो एफआईआर कटा था इनके नाम से, उसका जो खर्चा हर है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
3: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
2: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
6: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
2: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
3: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
2: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
3: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
2: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
3: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
2: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
3: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।
7: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग। सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

0: होगा हाय हाय।
1: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए। यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।

0: राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्ष

बीमारियों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 26 जून तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को नवाचार और प्रौद्योगिकी का वैश्विक केंद्र बताया है। फ्रांस के पेरिस में वीवाटेक 2026 सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत पिछले एक दशक में तेजी से परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़ रहा है, जो प्रौद्योगिकी से संचालित है। उन्होंने कहा कि भारत ने विश्व की सबसे बड़ी डिजिटल पहचान प्रणाली और विश्व का सबसे बड़ा डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म विकसित किया है।
1: The message I shared then at VivaTech 2021, where convention fails, innovation can help. India has been going through a rapid transformation that is powered by technology. From creating the world's largest digital identity system to the world's largest digital payment platforms. We are using technology at a massive scale for financial inclusion, education, telemedicine, agriculture and more.
0: इससे पहले श्री मोदी ने पेरिस में कई प्रमुख उद्योगपतियों से मुलाकात की। इस दौरान विनिर्माण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और समुद्री अवसंरचना पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत न केवल भविष्योन्मुखी तैयारी कर रहा है, बल्कि नवाचार, प्रौद्योगिकी और लोकहित आधारित विकास के जरिए उसे सक्रिय रूप से संवार रहा है। श्री मोदी ने फ्रांस यात्रा के आखिरी कार्यक्रम

पेरिस में बोंजूर मोदी आयोजन में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए भारत में पिछले 12 वर्षों में तेजी से हुए बदलावों का उल्लेख किया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने प्रधानमंत्री मोदी को हिंदी में एक विदाई वीडियो पोस्ट भेजा, जिसमें उन्होंने श्री मोदी को प्रिय मित्र बताते हुए कहा कि फ्रांस आपसे प्यार करता है। फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने देश की यात्रा के लिए धन्यवाद दिया और इसे बेहद सफल बताया। उन्होंने फरवरी में उनसे दोबारा मिलने की उम्मीद भी जताई। श्री मैक्रों ने कहा कि फ्रांस उनसे प्यार करता है। प्रधानमंत्री स्लोवाकिया और फ्रांस की सफल यात्रा के बाद स्वदेश रवाना हो गए हैं। इस बीच विदेश मंत्रालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सफल फ्रांस यात्रा के मुख्य नतीजों की जानकारी दी। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने पेरिस में मीडिया को बताया कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा 3 मुख्य स्तंभों व्यापार, प्रौद्योगिकी और क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पर केंद्रित रही। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा की तैयारियों के आकलन के लिए उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया में ईमानदारी, पारदर्शिता और दक्षता के उच्च मानकों को बनाए रखने पर बल दिया। इस बीच दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोशल मीडिया मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम की उस याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है, जिसमें नीट परीक्षा से पहले टेलीग्राम की सेवा फिलहाल रोकने के सरकार के फैसले को चुनौती दी गई है। सरकारी ई मार्केट प्लेस ने नई दिल्ली में कॉमन सर्विस सेंटर ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार इस साझेदारी का उद्देश्य देश भर में विशेष रूप से ग्रामीण और अल्प सुविधा वाले इलाकों में सरकारी खरीद अवसरों तक पहुँच बढ़ाना है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 4 राज्यों में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर दाल और तिलहन की बड़े पैमाने पर खरीद को मंजूरी दी है। मंत्रालय ने कहा कि तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में मूल्य समर्थन योजना के तहत खरीद की जाएगी। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि युद्ध समाप्त करने के समझौते के तहत अमेरिकी नौसेना ने ईरान के बंदरगाहों पर दर्जन से अधिक जहाजों को पारगमन की अनुमति दे दी है और वहां से नाकेबंदी हटा ली है। श्री वेंस ने व्हाइट हाउस प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि अब हॉर्मुज जल डमरू मध्य से तेल की अधिक आवाजाही हो रही है। उन्होंने कहा कि ईरान समझौते पर बातचीत के लिए उनकी स्विट्जरलैंड जाने की योजना है। उनसे उम्मीद की जा रही है कि वो ईरान के साथ शांति समझौते लागू करने में बातचीत का नेतृत्व करेंगे। अमेरिका के अटलांटा स्टेडियम में फीफा विश्व कप 2026 के ग्रुप ए के मैच में चेकिया और दक्षिण अफ्रीका का मुकाबला 1-1 से बराबरी पर रहा। इससे दोनों टीमों के नॉकआउट स्टेज में पहुंचने की उम्मीद बनी हुई है। उधर चीन के ग्वांगडोंग में विश्व टीम स्नूकर चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बनाते हुए भारत ने मौजूदा चैंपियन हांगकांग को हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।

पहले तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

0: के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
1: आज की रात मजा,
0: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
2: म्यूजिक मस्ती।
3: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
4: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
2: म्यूजिक मस्ती।
5: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी,

0: कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 29 मार्च सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 29 मार्च सुबह 11 बजे मन की बात। मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक,

ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 29 मार्च सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 29 मार्च सुबह 11 बजे मन की बात।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को नवाचार और प्रौद्योगिकी का वैश्विक केंद्र बताया है। फ्रांस के पेरिस में वीवाटेक 2026 सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत पिछले एक दशक में तेजी से परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़ रहा है जो प्रौद्योगिकी से संचालित है। उन्होंने कहा कि भारत ने विश्व की सबसे बड़ी डिजिटल पहचान प्रणाली और विश्व का सबसे बड़ा डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म विकसित किया है।
1: The message I shared then at VivaTech 2021, where convention fails, innovation can help. India has been going through a rapid transformation that is powered by technology. From creating the world's largest digital identity system to the world's largest digital payment platforms. We are using technology at a massive scale for financial inclusion, education, telemedicine, agriculture and more.
0: इससे पहले श्री मोदी ने पेरिस में कई प्रमुख उद्योगपतियों से मुलाकात की। इस दौरान विनिर्माण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और समुद्री अवसंरचना पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि भारत न केवल भविष्योन्मुखी तैयारी कर रहा है बल्कि नवाचार, प्रौद्योगिकी और लोकहित आधारित विकास के जरिए उसे सक्रिय रूप से संवार रहा है। श्री मोदी ने फ्रांस यात्रा के आखिरी कार्यक्रम में पेरिस में बोंजूर मोदी आयोजन में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए भारत में पिछले 12 वर्षों में तेजी से हुए बदलावों का उल्लेख किया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हिंदी में एक विदाई वीडियो पोस्ट भेजा, जिसमें उन्होंने श्री मोदी को प्रिय मित्र बताते हुए कहा कि फ्रांस उनसे प्यार करता है। फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने देश की यात्रा के लिए धन्यवाद दिया और इसे बेहद सफल बताया। उन्होंने फरवरी में श्री मोदी से दोबारा मिलने की उम्मीद भी जताई। प्रधानमंत्री स्लोवाकिया और फ्रांस की सफल यात्रा के बाद स्वदेश रवाना हो गए हैं। इस बीच विदेश मंत्रालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस यात्रा के मुख्य नतीजों की जानकारी दी। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने पेरिस में

मीडिया को बताया कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा 3 मुख्य स्तंभों व्यापार, प्रौद्योगिकी और क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पर केंद्रित रही। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा की तैयारियों के आकलन के लिए उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया में ईमानदारी, पारदर्शिता और दक्षता के उच्च मानकों को बनाए रखने पर बल दिया। इस बीच दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोशल मीडिया मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम की उस याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है जिसमें नीट परीक्षा से पहले टेलीग्राम की सेवा फिलहाल रोकने के सरकार के फैसले को चुनौती दी गई है। सरकारी ई मार्केट प्लेस ने नई दिल्ली में कॉमन सर्विस सेंटर ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के अनुसार इसका उद्देश्य देश भर में विशेष रूप से ग्रामीण और अल्प सुविधा वाले इलाकों में सरकारी खरीद अवसरों तक पहुंच बढ़ाना है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा 4 राज्यों में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर दाल और तिलहन की बड़े पैमाने पर खरीद को मंजूरी दी। मंत्रालय ने कहा कि तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत खरीद की जाएगी। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि युद्ध समाप्त करने के समझौते के अंतर्गत अमेरिकी नौसेना ने ईरान के बंदरगाहों पर दर्जन से अधिक जहाजों को पारगमन की अनुमति दे दी है और वहां से नाकाबंदी हटा ली है। श्री वेंस ने व्हाइट हाउस प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि अब हॉर्मूज जल डमरू मध्य से तेल की अधिक आवाजाही हो रही है। उन्होंने कहा कि ईरान समझौते पर बातचीत के लिए उनकी स्विट्जरलैंड जाने की योजना है। उनसे उम्मीद की जा रही है कि वे ईरान के साथ शांति समझौता लागू करने में बातचीत का नेतृत्व करेंगे। मौसम विभाग ने इस सप्ताह पूर्वोत्तर भारत और पश्चिम बंगाल में तराई वाले क्षेत्रों तथा सिक्किम के कई स्थानों पर मूसलाधार वर्षा का पूर्वानुमान लगाया है। बिहार, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल में भी आज ऐसी ही स्थिति बने रहने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल। आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।

आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।
2: तो पार्टी शुरू हुई है।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
3: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
4: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
5: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।